कैसे शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं, जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने, जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: ओशो, जिनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और रहस्यवादी थे। उन्होंने ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और सक्रिय ध्यान, जिसे कहा जाता है एक्टिव मेडिटेशन, उस पर जोर दिया। वे पारंपरिक धर्मों और रूढ़ियों के आलोचक थे और लोगों को आत्म जागरूकता, वर्तमान में जीने और निर्भीक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। ओशो के बारे में कुछ खास बातें। उनका प्रारंभिक जीवन। जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुछ वाड़ा गांव में हुआ था। नाम, उन्हें आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश और अंततः ओशो के नाम से जाना गया। शिक्षा और पेशा, उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और जबलपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहे। दर्शन, ओशो ने जीवन को उत्सव की तरह जीने, पुरानी परंपराओं को छोड़ने और स्व अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित किया। वे ओशो निसर्गा और ओशो मेडिटेशन रिसोर्ट जैसे ध्यान केंद्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान विधियां, उन्होंने आधुनिक मनुष्यों के लिए डायनेमिक ध्यान यानी डायनेमिक मेडिटेशन जैसी सक्रिय ध्यान विधियां विकसित की, जो तनाव से मुक्ति में मदद करती हैं। साहित्य, उनके प्रवचनों को हजारों किताबों में संकलित किया गया है, जो हिंदी में भी व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, जैसे ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति और किताबें जो बदल सकती हैं जीवन। ये है ओशो के बारे में, भगवान रजनीश के बारे में संक्षिप्त परिचय। आइए अब सुनते हैं भगवान रजनीश को, अर्थात ओशो को। Why do complications arise in human life? अर्थात मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं? इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं आप क्या कहते हैं।
1: भगवान, मैं आपको वर्षों से सुन रहा हूं, लंबे अरसे से मैं आपके पास हूं। मैंने समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य, पड़ोसी परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कहीं कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा, और उनके बावजूद आप मेरी दृष्टि में और मेरे हृदय में सदा सर्वदा एक और अखंड बने रहे। इस पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। मेरे पास दो ढंग से हो सकते हो, एक तो विचार से, बुद्धि से, और एक हृदय से और भाव से। बुद्धि और विचार से अगर मेरे पास हो तो बड़ी अड़चन होगी, रोज रोज विरोधी वक्तव्य होंगे, रोज रोज तुम्हें सुलझाना पड़ेगा, फिर भी तुम सुलझा ना पाओगे। बुद्धि कभी कुछ सुलझा ही नहीं पाती। जहां सीधी सीधी बात हो वहां भी बुद्धि उलझा लेती, तो मेरी बातें तो बड़ी उलझी। जहां सब साफ सुथरा हो वहां भी बुद्धि समस्याएं खड़ी कर लेती। तो मैं तो उन रास्तों की बात कर रहा हूं जो बड़े धुंधलके से भरे। एक ही रास्ते की बात हो तो भी बुद्धि विरोध खोज लेती। ये तो अनंत रास्तों की बातें, विरोध ही विरोध मिलेगा। ऐसा मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है जिसका हजार बार खंडन न किया हो। तो यदि बुद्धि से मेरे पास हो तो दो ही उपाय हैं, या तो तुम पागल हो जाओगे या बुद्धि को छोड़ दोगे, या भाग जाओगे। बुद्धि को बचानी है तो मुझे छोड़ना पड़े, मुझे बचाना है तो बुद्धि छोड़नी पड़े। और कोई सौदा और कोई समझौता नहीं हो सकता। इसलिए बहुत से बुद्धिवादी मेरे पास आते हैं, हट जाते, उनको अपनी बुद्धि ज्यादा मूल्यवान मालूम होती है, वो उनका निर्णय, उन्हें मैं बहुत बुद्धिमान नहीं कहता, क्योंकि वे उसी बुद्धि को पकड़ रहे हैं जिस बुद्धि से कुछ भी नहीं पाया। इधर मैंने एक मौका दिया था निर्बुद्धि होने का, एक द्वार खोला था, अनजान अपरिचित, हिम्मत होती और दो कदम चल लेते तो कुछ पा जाते, कोई झलक मिलती, कोई जीवन का स्वाद उतरता। लेकिन घबरा के उन्होंने अपनी बुद्धि की पोटली बांध ली, भाग खड़े हुए, उसी को बचा लिया जिसके सहारे कुछ भी नहीं पाया था। इसलिए मैं उन्हें बहुत बुद्धिमान नहीं कहता। जो सच में बुद्धिमान है उन्हें मेरी बातों में विरोधाभास दिखाई पड़ेंगे, तो भी मेरी बातों का रस विरोधाभासों के बावजूद उनके हृदय को आंदोलित करता रहेगा। एक ना एक दिन हिम्मत करके वे अंधेरे में मेरे साथ कदम उठा के देखेंगे, उसी दिन उनके भीतर क्रांति हो जाएगी, उनकी चेतना की धारा बुद्धि से छिटक के हृदय के मार्ग पर बहने लगेगी, वही एकमात्र क्रांति है। तो जो बुद्धि से मेरे पास आए हैं, या तो रुकना है तो बुद्धि खोनी पड़ेगी, वही मूल्य चुकाना पड़ेगा। अपनी बुद्धि बचानी है तो मुझे खोना पड़ेगा, फिर तुम्हारी मर्जी। दूसरा जो वर्ग है, जो हृदय के कारण मेरे पास आया है, जो मुझे सुनकर नहीं, मुझे सोचकर नहीं, मुझे देखकर, मुझे अनुभव कर मेरे पास आया है, जिसने धीरे धीरे मेरे साथ एक प्रेम का नाता बनाया है, वो नाता बौद्धिक नहीं है। उस नाते में मैं क्या कहता हूं कुछ लेना देना नहीं, मेरी मान्यताएं क्या हैं उनका कोई विचार नहीं, मैं क्या हूं वही मूल्यवान है। उनके ऊपर में कितने ही विरोधी वक्तव्य देता चला जाऊं कोई अंतर न पड़ेगा। उन्होंने अपने भीतर से जो मेरा साथ जोड़ा है वो अविरोध का है, हृदय का है। बुद्धि सोचती है कौन सी बात ठीक कौन सी बात गलत, बुद्धि सोचती है कौन सी बात किस बात के विपरीत पड़ रही है, बुद्धि सोचती है कल मैंने क्या कहा था आज मैं क्या कह रहा हूं, बुद्धि हिसाब रखती है। हृदय तो क्षण क्षण जीता है, अतीत को जोड़ के नहीं चलता। मैंने कल क्या कहा था उससे प्रयोजन नहीं, मैं कल क्या था उससे प्रयोजन, और जो मैं कल था वही मैं आज हूं। मेरे वक्तव्य बदलते जाएं, मेरे शब्द बदलते जाएं, मेरा शून्य वही का वही है। कभी मैंने तुमसे मंदिर में जाके प्रार्थना करने को कहा है, कभी सब मूर्तियों को छोड़कर त्याग कर मस्जिद में नमाज पढ़ने को कहा है, कभी भगवान के रस में डूबकर नाचने को कहा है, मदमस्त होने को कहा है, कभी भगवान है ही नहीं सब सहारे छोड़ देने को, आत्मखोज के लिए कहा। स्वभावतः ये वक्तव्य विरोधी है, लेकिन इन सब विरोधों के भीतर मैं हूं। जिसने तुमसे पूजा के लिए कहा था उसी ने तुमसे पूजा छोड़ने को कहा है, और जिसलिए तुमसे पूजा करने को कहा था उसी लिए तुमको पूजा छोड़ने को कहा है। मैं वही हूं और मेरा प्रयोजन वही है। अगर तुमने प्रेम से मुझसे संबंध जोड़ा तो तुम देख पाओगे, तुम्हें यह स्पष्ट होगा, तब तुम जन्मों जन्मों मेरे साथ रहो और तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न ना उठेगा। ये शुभ है, ये महिमापूर्ण है। प्रेम ने कभी कोई प्रश्न जाना ही नहीं। हाँ, कभी जिज्ञासा उठ सकती है, जिज्ञासा बड़ी और बात है, इस फर्क को भी ख्याल में ले लेना चाहिए। प्रश्न तो उठता है तुम्हारी जानकारी से, तुम कुछ जानते हो उससे प्रश्न खड़ा होता है। जिज्ञासा उठती है अज्ञान से, तुम नहीं जानते इसलिए प्रश्न खड़ा होता है। तुमने वेद पढ़ा, फिर मैंने कुछ कहा, और अगर तुमने जो वेद में पढ़ा है उसके विपरीत पढ़ा तो प्रश्न उठेगा। तुमने गीता पढ़ी और मैंने कुछ कहा और तुम्हारी पढ़ी गई गीता से मेल न खाया तो प्रश्न उठेगा। प्रश्न तुम्हारे ज्ञान से उठता है, तुम्हारी सूचना से, जानकारी से उठता है। प्रश्न का केवल इतना अर्थ है कि तुम्हारा ज्ञान डगमगाया, तुम उसे स्थिर करना चाहते हो, तुम बेचैनी में पड़ गए, असुरक्षित हो गए, सब साफ सुथरा मालूम होता था, भ्रम खड़ा हो गया, मैंने कुछ कहा उसने तुम्हें डमाडोल किया, तुम स्थिर होना चाहते हो, तुम प्रश्न पूछते हो इस पार या उस पार। या तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही गलत सिद्ध कर दूं ताकि तुम मुझे ठीक मान लो, और या मैं गलत सिद्ध हो जाऊं ताकि तुम अपनी ठीक को ठीक माने चले जाओ। प्रश्न तुम्हारे ज्ञान में बाधा पड़ने से उत्पन्न होता है, जिज्ञासा अज्ञान से पैदा होती। छोटा बच्चा पूछता है तब जिज्ञासा है, उसे कुछ पता नहीं, वो पूछता है संसार को किसने बनाया। एक हिंदू पूछता है संसार को किसने बनाया, वो जान के ही पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि मैं तो मानता हूं कि ईश्वर ने बनाया, तुम भी मानते हो या नहीं, किसने बनाया संसार को। उसके प्रश्न के पीछे जानकारी खड़ी है। एक छोटा बच्चा पूछता है किसने बनाया, उसके प्रश्न के पीछे कोई जानकारी नहीं है, विराट जिज्ञासा है। वो कुछ मान के नहीं पूछ रहा है, इसलिए उसके पूछने में एक निर्दोष भाव है, वो जानना चाहता है इसलिए पूछ रहा है, तुम जानते ही हो इसलिए पूछते हो। तो तुम जब भी पूछते हो तुम्हारा प्रश्न एक तरह का विवाद है। जिन्होंने मुझसे प्रेम किया है उनके प्रश्न तो नहीं उठेंगे, जिज्ञासाएं होंगी। जिज्ञासा सत्य की खोज पर बड़ी जरूरी है। प्रश्न विवाद करना हो, शास्त्रार्थ करना हो तो काम के, सत्य को खोजना हो तो बाधाएं। पूछा है, वर्षों से आपको सुन रहा हूं, लंबे अरसे से आपके पास हूं, इससे कोई फर्क ना पड़ेगा, तुम जितनी ज्यादा देर मेरे पास रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे। ये कुछ प्रेम ऐसा है कि बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं, जो घट जाए वो भी कोई प्रेम। ये चांद कुछ ऐसा है कि बढ़ता ही चला जाता है, पूर्णिमा कभी आती नहीं, बस आती मालूम होती। प्रेम के रास्ते की यही खूबी है, पांव बढ़ते लक्ष्य उनके साथ बढ़ता, पांव बढ़ते लक्ष्य उनके साथ बढ़ता, और पल को भी नहीं यह क्रम ठहरता। पांव मंजिल पर नहीं पड़ता किसी का, प्यार से प्रिय जी नहीं भरता किसी का, जिससे जी भर जाए वो प्रेम नहीं, जिससे जी भरे ही ना वही प्रेम है, भर भर के ना भरे। बार बार तुम लगो कि अब लबालब हुए, अब लबालब हुए, जब झांको तब पाओ कि अभी और जगह रह गई, अभी और भरना है। मंजिल सदा पास आती लगती है, हाथ बढ़ाया मिल जाएगी, पर पांव मंजिल पर कभी नहीं पड़ता। तुम जितनी ज्यादा देर मेरे पास रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे। समय सिकुड़ता जाएगा, प्रेम के सामने समय छोटा है। समय कैसे बीत जाता है प्रेम की घड़ी में पता नहीं चलता। तुमने कभी ख्याल किया, तुम प्रेमी के पास बैठे हो, घंटों बीत जाते हैं, ऐसा लगता है पल ही बीते, और तुम किसी दुश्मन के पास बैठे हो, पल बीतते हैं और ऐसा लगता है घड़ी मानो ठहर गई, घंटों बीत गए। दुख में समय लंबा हो जाता है, सुख में समय छोटा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं नरक अनंत है, दुख में समय लंबा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं स्वर्ग क्षणभंगुर है, सुख में समय छोटा हो जाता है, आया नहीं गया नहीं। और आनंद में तो समय परिपूर्ण शून्य हो जाता है, इसलिए आनंद को कालातीत कहा है। फिर से तुम सोचना कितने समय तुम मेरे पास रहे, बहुत थोड़ा मालूम पड़ेगा। अगर गौर से देखोगे तो शायद तिरोहित ही हो जाएगा कि रहे ही कहां, अभी आए थे, क्षण भी नहीं बीता, या क्षण कहना भी ठीक नहीं, कुछ बीतता नहीं मालूम पड़ता, कुछ ठहरा हुआ मालूम पड़ता है। इसलिए तुम जितनी ज्यादा देर रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे कम रहे कम रहे। ये जल कुछ ऐसा है कि पीने से प्यास बढ़ती, जिस प्रेम से प्यास बुझ जाए वो प्रेम नहीं, जिस प्रेम से प्यास अनंत होकर जलने लगे, प्रखर होकर जलने लगे, वही प्रेम प्रेम है। और वही प्रेम प्रार्थना बनेगा, और वही प्रेम तुम्हें एक दिन परमात्मा तक ले जाएगा। प्यास जब ऐसी हो जाए कि तुम मिट ही जाओ और प्यास ही बचे, बस प्यास बचे, तुम ना बचो, एक व्याकुलता बचे, एक विरह बचे, एक उत्तप्त अभीप्सा बचे, तुम खो ही जाओ, प्यासा बचे ही ना, क्योंकि प्यासे के कारण भी प्यास पूरी नहीं हो पाती। कुछ शक्ति प्यासे को मिलती, कुछ प्यास को मिलती, बट जाती। जब प्यास ही प्यास होती है और प्यासे के पास अपने को बचाने की शक्ति भी नहीं बचती, तभी प्यास प्रार्थना हो जाती, तभी प्यास परमात्मा हो जाती। यहां तुम्हें मैं प्यास ही सिखा रहा हूं, यहां तुम्हें मैं इस बात के लिए तैयार कर रहा हूं ताकि तुम अनंत प्यास के मालिक हो जाओ। भरने की जल्दी थोड़ा सोचो, साधारण प्यास को आदमी मिटा लेना चाहता है क्योंकि प्यास से पीड़ित है, परमात्मा की प्यास को मिटा थोड़ी लेना चाहता है क्योंकि प्यास से पीड़ित थोड़ी है। इसलिए नारद कहते हैं विरहा आसक्ति, विरह में भी आसक्ति हो जाती, रस आने लगता है प्यास में भी। अगर तुम ठीक से समझो तो ऐसा कहने दो मुझे कि प्यास के कारण थोड़ी भक्त परमात्मा को मांगता है, परमात्मा को मांगता है ताकि प्यास बढ़ती जाए। परमात्मा प्यास से गौण हो जाए, भक्ति भगवान से महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि जब तक भक्ति साधन है तब तक तो तुम छुटकारा चाहोगे कि जल्दी पूरा हो, रास्ता पूरा हो, मंजिल आए। जब भक्ति साध्य हो जाती, यहां तुम्हें मैं ऐसी ही प्यास की तरफ ले चला हूं। तो कितना समय तुम रहे ये बात बड़ी सोच लेने जैसी है, ज्यादा समय रहे नहीं। ये प्रश्न पूछा है आनंद त्रिवेदी ने, माना बहुत वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं अभी क्षण भी कहां बीते, अभी अभी आए थे, अभी बैठे ही हो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई। और तुम विचारोगे तो ऐसा ही पाओगे, अगर ज्यादा देर हो गई तो उठने का वक्त करीब आ गया, जब ज्यादा देर होने लगी तो आदमी उठने की तैयारी करने लगता है। तुम और भी बैठे रहना चाहते हो, तुम रुके ही रहना चाहते हो। जब तक उठने की आकांक्षा खड़ी ना हो जाए, जब तक यहां से दूर जाने की आकांक्षा ना हो जाए, तब तक कहां देर हुई। अभी तुम उबे नहीं, बुद्धि जल्दी उब जाती। बुद्धि बड़ी छिछली है, उसमें कोई गहराई नहीं। शोरगुल बहुत है जैसा उथली नदियों में होता है, हृदय कभी उबता नहीं, बड़ा गहरा है, पता भी नहीं चलता कि बह रहा है कि नहीं बह रहा है। धार बड़ी धीमी सरकती। पूछा है मैंने समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य, परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कभी कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा। सुबह सौभाग्यशाली हो, बड़ा मंगल सूचक है। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होता सभी को, दुर्भाग्य। जिसको होता है आनंदित हो। इसका अर्थ हुआ कि एक बड़ी गहरी उपलब्धि तुम्हें हो रही, जो वक्तव्यों से नहीं डिगाई जा सकती। मैं क्या कहता हूं इसकी तुम्हें अब चिंता नहीं है। तुम्हारे सामने मैं क्या हूं यह प्रकट होने लगा। मैं कौन किन शब्दों का उपयोग करता हूं बहुत फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे शब्दों में झांक के मेरे शून्य को देखने लगे। मैं परमात्मा के संबंध में कुछ कहूं, परमात्मा के खिलाफ कहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों के पार मुझे खड़ा हुआ अनुभव कर लेते हो। तुम मेरे गीत की धुन को पहचानने लगे। मैं किस भाषा में गाता हूं कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम्हें भाषा समझ में आती है नहीं आती कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम मेरे गीत की धुन से राजी होने लगे, तुम्हारी लयबद्धता बंधने लगी। नफल सफी न मुल्ला से गरज है मुझको, यह दिल की मौत वो अंदेशा और नजर का फसाद। पंडित है, मौलवी है, दार्शनिक है, विचारक है, उससे क्या लेना देना, क्योंकि यहां तो मरने की कला सिखाई जा रही और वो तो सिर्फ दृष्टि मत विचार का उपद्रव है। पंडित तो केवल शब्दों का जाल है। नफल सफी न मुल्ला से गरज है मुझको, यह दिल की मौत, धर्म तो दिल की मौत है, यहां तो मिटना है वो अंदेशा और नजर का फसाद, और वहां तो केवल दृष्टिकोण नजरिए के झगड़े। यहां तुम्हें कोई झगड़ा थोड़ी सिखा रहा हूं, यहां तो झगड़ने वाले को कैसे विसर्जित कर दो यही सिखा रहा हूं। यहां झगड़ा करने वाला कैसे विसर्जित हो जाए, अहंकार कैसे डूब जाए, बस उतनी ही बात है। और इसलिए तो सब चिकित्साओं की बात करता हूं, जिससे हो जाए चलेगा। चिकित्सा से मेरा मोह नहीं, इसे तुम समझ लो। तुम्हारी बीमारी मिटनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी मिटाने की उतनी चिंता नहीं, चिकित्सा से मोह है। मेरे एक मित्र हैं, वो होम्योपैथ, होम्योपैथी के दीवाने, एलोपैथी के दुश्मन। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि इस घर में बीमार होना मुश्किल है, क्योंकि बीमार हुए कि होम्योपैथी, कोई ठीक होता नहीं दिखाई पड़ता, मगर इनकी जिद है, और एलोपैथी डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते। तो अपने पति से यह कहना भी संभव नहीं कि सिर में दर्द है या बुखार है, यह भी चोरी छिपे छिपाना पड़ता है, नहीं तो होम्योपैथी शुरू। मरीज से मतलब नहीं है, सिद्धांत कुछ है। जो नेचुरोपैथी के दीवाने, उन्हें कोई फिक्र नहीं। मेरे एक रिश्तेदार, उनकी पत्नी मर गई, नेचुरोपैथी में पूरे समय में मौजूद था जब ये घटना घटी। उनको कई बार समझाया कि तुम इस पत्नी को मारे डाल रहे हो, उपवास, वो कमजोर बीमार, उसको वो उपवास करवा रहे। सो मैंने कहा उपवास कभी ठीक भी हो सकता है लेकिन इसकी हालत खराब है। पर वो बोले कि हालत इसीलिए खराब है कि शरीर में विषाक्त द्रव्य हो गए, टॉक्सिक, उनको निकालना पड़ेगा, उपवास से ही निकल सकते हैं। और एलोपैथी की दवा तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि उसमें तो और जहर है। सिद्धांत मजबूत, पत्नी सूखती गई। इधर मैं उनसे कहता भी कि पत्नी सूखती जा रही है, हालत उसकी खराब होती जा रही है, पर वो कहते कि जरा देखो तो उसके चेहरे पे कैसी कांति, वो पीली पड़ रही, वो उसको कांति कहते। ऐसा ही तो साधु संन्यासियों के पास लोग जुड़े रहते, उनका चेहरा पीला पड़ता जाता है और भक्त कहते हैं कैसा स्वर्ण जैसा तपश्चर्या प्रकट हो रही। दूसरा देखेगा तो उनको बीमार पाएगा, इलाज की जरूरत है। भक्त देखता तो वो कहता कैसा शुद्ध कुंदन जैसा चेहरा निकला आ रहा है, स्वर्ण प्रकट हो रहा है। नजरों में सिद्धांत छाए हो तो पीतल सोना मालूम होता है। मैंने उनसे कहा ये पत्नी मर जाएगी, न केवल उसका शरीर कमजोर हुआ, उसकी नींद भी खो गई, क्योंकि भोजन की थोड़ी मात्रा नींद के लिए जरूरी है। जब शरीर में कुछ पचाने को ना हो तो शरीर को सोने की जरूरत नहीं रह जाती। जब नींद खो गई, मैंने उनसे कहा इसकी नींद खो गई, वो कहने लगे कि ये तो हो जाता है जब आदमी शांत हो जाता है, तो ऐसा तो गीता में ही कहा है कृष्ण ने, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयम। ये पत्नी संयम को उपलब्ध हो रही, उनको समझाना मुश्किल था। फिर पत्नी पागल भी हुई मगर वो अपनी बकवास जारी रखे। पत्नी मर भी गई लेकिन सवाल सिद्धांत का था। ध्यान रखना ऐसा ही धर्मों के जगत में चलता है। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है कि परमात्मा मिले या ना। अगर तुम मुसलमान हो तो कुरान के आश्रय ही मिलना चाहिए, कुरान ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर तुम हिंदू हो तो गीता के सहारे ही मिलना चाहिए, गीता ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर परमात्मा तुमसे कहता हो कि आज मैं कुरान के द्वारा मिलने को तैयार हूं तो तुम कहोगे हम मिलने को तैयार नहीं, हम तो गीता के सहारे ही आएंगे। कहते हैं तुलसीदास कृष्ण के मंदिर में गए वृंदावन तो उन्होंने कहा कि झुकूंगा नहीं, जब तक धनुष्वाण हाथ ना लोगे। कृष्ण की मूर्ति थी बांसुरी लिए, अब तुलसीदास झुक सकते कहीं कृष्ण की मूर्ति के सामने बांसुरी लिए? वो तो धनुर्धारी राम के भक्त है। जब तक धनुष्वाण हाथ ना लोगे झुकूंगा नहीं, ये बात कैसी हुई? परमात्मा से कोई प्रयोजन नहीं है, तुम परमात्मा को भी अपने अनुशासन में रखना चाहते हो। तुम्हारे ढंग से आए तो झुकोगे, इसका अर्थ हुआ तुम अपने ढंग के लिए झुकोगे, परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। तुम परमात्मा से कवायद करवाने को उत्सुक हो। ये कैसा अहंकार, नहीं बुद्धि विवादी है, झगड़ेल है। यहां मैं सभी रास्तों की बातें कर रहा हूं क्योंकि मैं कहता हूं चलो गीता से न मिले छोड़ो भी, गीता से क्या लेना देना है। आम खाने से मतलब, गुठलियां गिनने से क्या प्रयोजन? गीता से नहीं मिले जाने दो, धम्मपद से ही चलो, धम्मपद से खोज ले। अगर होम्योपैथी काम ना आई तो एलोपैथी सही, एलोपैथी काम ना आई तो नेचुरोपैथी सही। पैथी से बंधने की जरूरत क्या है? जो पैथी से बंध गया वो तो रोगी से भी महारोगी है। एक तो बीमारी पकड़े और अब चिकित्सा ने भी पकड़ा। सभी रास्तों से लोग पहुंचे। मैं तुमसे सभी रास्तों की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम सभी रास्तों पर चलो, मैं कहता हूं जब तुम्हें जो रास्ता जम जाए तुम उस पर चल पड़ना। जिनके लिए तब तक न जमा होगा उनके लिए मैं आगे बोलता चला जाऊंगा। इसलिए तुम्हें मेरे वक्तव्यों में विरोध दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैं इतने विरोधी लोगों पर बोल रहा हूं, उनकी अभिव्यक्तियां इतनी भिन्न हैं। कहां बुद्ध, कहां क्राइस्ट, कहां कृष्ण, कहां महावीर, कहां पतंजलि, कहां तिलोपा, कहां शिव का विज्ञान भैरव, कहां लाओसु का ताओ ते किंग। इतने भिन्न लोग हैं, इतनी भिन्न सदियां, इतनी भिन्न अभिव्यक्तियां, लेकिन मेरी सारी चेष्टा तुम्हें बताने की यह है कि सबके भीतर एक की तरफ ही इशारे हैं, अंगुलियां अलग अलग, चांद एक है। तो जब मैं लाओसु की उंगली पकड़ के उठाऊंगा चांद की तरफ, तो स्वभावतः वह उंगली वैसी ही नहीं होगी जैसी बुद्ध की उंगली होगी, हो ही नहीं सकती। बुद्ध की उंगली बुद्ध की उंगली है, लाओसु की उंगली लाओसु की उंगली है। तुम अगर गौर से मुझे देखते रहे तो तुम धीरे धीरे पाओगे कि उंगलियों का प्रयोजन ही नहीं है। उंगलियां किस तरफ उठाई जा रही हैं, चांद की तरफ, उस तरफ देखो, उंगलियों को भूलो। अगर तुमने चांद देखा तो मेरे वक्तव्यों में तुम्हें एक धारा बहती हुई प्रवाहित मालूम होगी। अगर उंगलियां देखी तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, तो मेरे वक्तव्य तुम्हें अलग अलग मालूम होंगे। चांद को देखना हो तो तुम्हें मुझे बड़ी प्रेम की नजर से देखना होगा। विवाद की नजर लेके तुम आए तो शब्द दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि विवाद शब्द को भी पकड़ ले तो बहुत, शब्द भी छूट जाता है। विवादी का मन इतना आतुर होता है विवाद के लिए कि वो शब्दों को भी नहीं पकड़ पाता है। उनको पकड़ लेता है जिनको विवाद के काम ला सकता है, उनको छोड़ देता है जो उसके काम के नहीं। जिनसे विवाद खड़ा हो सकता है उनको पकड़ लेता है, जिनसे खड़ा नहीं हो सकता उनको भूल ही जाता है। लेकिन अगर तुमने प्रेम से मुझे सुना, जो कि जीवन को देखने का अलग ही अनूठा ही ढंग है, अगर तुमने प्रेम से मुझे सुना तो तुम मेरे सारे विरोधों में एक ही संगीत को प्रवाहित होते हुए देखोगे। नदियां चाहे पूरब की तरफ जा रही हों चाहे पश्चिम की तरफ, सब सागर की तरफ जा रही हों। कुछ नजर आता नहीं उसके तस्वर के सिवा, हसरते दीदार ने आंखों को अंधा कर दिया। प्रेम के लिए जो आंख है, बुद्धि के लिए वही अंधापन मालूम होता है। इसलिए बुद्धिमान सदा प्रेम को अंधा कहते रहे। तुम प्रेमी से पूछो, प्रेमी बुद्धिमानों को अंधा मानता है, क्योंकि प्रेमी कुछ ऐसा देख लेता है जो बुद्धि देख ही नहीं पाती। कल एक युवा सन्यासी ने मुझसे पूछा कि जब से ध्यान कर रहा हूं तब से कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, अनुभव आती हैं, कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैंने कल्पना तो नहीं कर ली। फूल ज्यादा रंगीन दिखाई पड़ते हैं, कहीं मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूं। वृक्ष ज्यादा हरे मालूम पड़ते हैं, ताजे और नहाए मालूम पड़ते हैं, कहीं मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वृक्ष तो ये वही है, न इन्होंने कोई स्नान किया है न कोई ताजगी आ गई। उस युवक की चिंता स्वाभाविक है, भीतर मन साफ हो रहा है तो बाहर भी चीजें साफ होने लगी। मैंने कहा घबराना मत, अगर डर गए और ऐसा सोच लिया और मान ली बुद्धि की बात की ये तो कल्पना का जाल है, तुमने सपने देखने शुरू कर दिए, तो जो द्वार खुलता था, जो पर्दा हटता था, रुक जाएगा। ये तो बुद्धि ने सदा ही कहा है। एक कवि को फूल में उतना दिखाई पड़ता है जितना किसी को दिखाई नहीं पड़ता। एक छोटे बच्चे को सागर के तट पर कंकड़ पत्थर में सीपी शंख में इतना दिखाई पड़ता है जितना किसी को दिखाई नहीं पड़ता। कंकड़ पत्थर भर लेता है खीसे में, जो भी रंगीन मिला। माँ बाप कहे चले जाते हैं कि फेंको, बोझ हुआ जा रहा है, ये घर ले जाके क्या करोगे। बच्चा छोड़ता भी है तो भी आंख में आंसू आ जाते। ये जो बड़े बूढ़े हैं अगर हीरे जवाहरात होते तो ये भी भर लेते। अभी इनको ये पता ही नहीं रहा, ये भूल ही गए भाषा कि इस बच्चे को अभी कंकड़ पत्थरों में भी हीरे दिखाई पड़ते हैं। अभी हर रंगीन पत्थर कोहिनूर है, अभी इसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी, अभी साफ है। अभी इसे सीपी शंख में खजाने दिखाई पड़ते हैं। अभी इसकी बुद्धि मंद नहीं हुई, अभी प्रतिभा ताजी ताजी है, अभी अभी परमात्मा के घर से आया है, अभी नजर साफ है, अभी धूल नहीं जमी, अभी अनुभव का कचरा इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन जल्दी ही बड़े बूढ़े इसे समझा देंगे कि कंकड़ पत्थर हैं, छोड़ो, और दूसरे कंकड़ पत्थरों की दौड़ पर लगा देंगे जिनमें उनको मूल्य दिखाई पड़ता है। जब तुम फिर से प्रेम में पड़ते हो तो फिर तुम्हें बच्चे की आंख मिलती, जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो तुम्हें कवि की आंख उपलब्ध होती, तुम्हें रहस्यवादी संत की आंख उपलब्ध होती। तो अगर तुम मेरे प्रेम में हो तो ही मेरे पास भी हो, ध्यान रखना, अन्यथा पास आके भी कोई पास आ पाता है। शारीरिक निकटता किसी को पास थोड़ी लाती, एक आत्मिक निकटता। फिर तुम हजारों मील दूर भी रहो तो भी पास हो, विचार बीच में ना हो तो तुम पास हो, विचार बीच में हो तो तुम पास हो के भी दूर हो, और विचार बीच में ना हो तो प्रेम बहता है। विचार पत्थर की तरह रोके हुए है प्रेम को। जहां प्रेम बहता है वहां तुम्हें कुछ चीजें दिखाई पड़ेंगी जो प्रेम से खाली आंखों को दिखाई नहीं पड़ेंगी, और प्रेम से खाली आंखें तुम्हें अंधा कहेंगी। तुम उससे बेचैन मत होना, उनके लिए ये वक्तव्य स्वाभाविक है। बुद्धिमान तुम्हें पागल कहेंगे, सदा से उन्होंने कहा है। जब बुद्ध के पास लोग आके हजारों की संख्या में संन्यास्त होने लगे तो लोगों ने कहा पागल हो गए, इस आदमी ने लोगों को पागल किया, ये क्या है, सम्मोहित हो गए। जब महावीर के पास लोग आके संन्यास्त हुए और उन्होंने जीवन का नया ढंग लिया, नई चाल सीखी, तो लोगों ने फिर कहा कि पागल हुए। ये संसार सदा से ही, जो भीड़ का रास्ता है उससे अन्यथा जाने वालों को पागल कहता रहा है। अगर तुम में हिम्मत हो मेरे साथ चलने की तो तुम्हें यह भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि लोग जब पागल कहें तो हंस लेना, और जब लोग पागल कहें तो क्रोध मत करना, स्वाभाविक है। वे तुम्हें पागल नहीं कह रहे हैं, वे ये कह रहे हैं कि अगर तुम ठीक हो तो फिर हम पागल हैं क्या। वो सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे हैं, तुम उन पर नाराज मत होना। अगर तुम नाराज हुए तो तुम उनके विचार को मजबूत कर दोगे कि निश्चित ही तुम पागल हो गए हो। तुम नाराज मत होना, तुम हंसना, तुम उन्हें विभूचन में डाल देना, तुम मुस्कुराना, तुम कहना कि ठीक कहते हो, पागल हो गए हैं लेकिन पहले से भले हो गए हैं और पहले से ज्यादा मजे में हो गए हैं, मगर पागल हो गए हैं ये सच है। तुम्हारे पागलपन को उनके प्रति करुणा बनने देना, क्योंकि वे परेशान हैं अपने पागलपन से, वे भी चाहते हैं कि छूट निकले, कहीं कोई द्वार दरवाजा मिले, वे कारागृह में बंद हैं। अगर तुम्हें आनंदित देखा, शांत देखा, तो तुम उन्हें भी खींच लाओगे। अगर तुम क्रोधित हुए, अगर तुम अपनी आत्मरक्षा करने लगे, तुमने कहा कि मैं पागल नहीं, अगर तुम विवाद में पड़े तो तुम उनके लिए द्वार बंद कर दोगे। यही तो वे चाहते थे कि तुम विवाद में उतर आओ। तुम मुस्कुराना, तुम उन्हें आशीर्वाद दे देना, उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करना, एक फूल उनको भेंट कराना और लौट आना। तुम कोई विवाद मत करना, तो तुम उनके लिए भी रास्ता खुला रखोगे। आज नहीं कल वे भी आ सकते हैं, उनकी भी संभावना उतनी ही महान है जितनी तुम्हारी। समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कहीं कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा, और उनके बावजूद आप मेरी दृष्टि में हृदय में सदा सर्वदा एक और अखंड बने रहे। उन विरोधी वक्तव्यों के बावजूद अगर तुम्हारे हृदय में बना रहा तो ही बने रहने में कुछ सार है। अगर मैं तुम्हें तर्कयुक्त लगूं, तुम्हारे बंधे बंधाए तर्क की सीमा में बंधा हुआ लगूं, फिर तुम मुझसे राजी हो जाओ तो वो दोस्ती कुछ बहुत गहरी नहीं, वो केवल विचार का नाता है। वो नाता कभी भी टूट सकता है, मेरे विचार बदल जाएं या तुम्हारे बदल जाएं, वो टूट जाएगा। और विचार तो रोज बदलते रहते हैं, विचार का कोई भरोसा? विचार पे भरोसा तो ऐसे है जैसे कुछ न किसी ने सागर की लहरों पर भवन बनाने की आकांक्षा की। विचार तो बड़े चंचल है। मन तो मौसम सा चंचल है, सबका होकर भी न किसी का। अभी सुबह का, अभी शाम का, अभी रुदन का, अभी हंसी का। मन तो मौसम सा चंचल है। मन के सहारे अगर तुम मेरे साथ रहे तो ज्यादा देर चलना ना होगा, ये दोस्ती थोड़ी देर की रहेगी। रास्ते पर दो राहगीर मिल गए, फिर मेरा रास्ता अलग हो गया, फिर तुम्हारा रास्ता अलग हो गया। मिले थोड़ी दूर को साथ चल लिए, फिर बिछड़ गए। प्रेम ऐसी कुछ बुनियाद है कि शाश्वत हो सकता है, मृत्यु भी उसे मिटाती नहीं। जीवन तो उसे डगमगा ही नहीं सकता, मौत भी उसे नहीं डगमगा पाती। बुद्ध की मृत्यु करीब आई, उन्होंने घोषणा कर दी कि आज वे विदा हो जाएंगे शरीर से। आनंद बहुत रोने चीखने लगा, लेकिन वो चकित हुआ कि बुद्ध का एक जो दूसरा शिष्य सुभूति एक वृक्ष के नीचे शांत बैठा है। आनंद ने उससे कहा, तुम्हें खबर नहीं मिली, किसी ने बताया नहीं, भगवान आज देह छोड़ देंगे। तुम रो नहीं रहे, तुम होश में हो, तुम्हारी आंखें गीली नहीं, फिर कभी मिलन ना होगा, फिर कभी उनके ये सद्वचन सुनने को ना मिलेंगे, फिर कौन सिखाएगा ये सद्धर्म? सांस तक खोया जाता है। सुभूति ने कहा, जिस शास्ता से मेरा संबंध है उसके खोने का कोई उपाय नहीं, जिससे मेरा संबंध है उसकी मौत नहीं हो सकती। वो फिक्र मैंने पहले ही कर ली है आनंद, तूने कुछ गलत से संबंध बना लिया। विचार से मेरा कुछ लेना देना नहीं, मेरा संबंध गहरा है विचार से। हम साथ ही हैं, अब हम अलग नहीं हो सकते, अलग होने का कोई उपाय नहीं। आनंद ने बुद्ध को आके कहा, बुद्ध ने कहा, सुभूति ठीक कहता है आनंद। आनंद ने कहा, मैं 40 वर्ष आपके पास रहा और मैं आपके पास ना हो पाया, क्या बाधा है? बुद्ध ने कहा, तू ज्यादा सोच विचार करता है, तेरा मुझसे संबंध विचार का है, तू अभी भी ध्यान में मुझसे न जुड़ा। ये ध्यान बुद्ध का शब्द है प्रेम के लिए, कहो ध्यान कहो प्रेम।
0: अभी आप सुन रहे थे ओशो की विचार, विषय था व्हाई डू कॉम्प्लिकेशंस अराइज इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं। आशा करता हूँ इन विचारों को बहुत ही ध्यान से आपने सुना होगा। ओशो कहते हैं अतीत से मुक्ति, अर्थात हर कोई अपने भीतर किसी दर्द, स्मृति या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। जब अतीत का बोझ गिरता है तभी वर्तमान हल्का हो जाता है। जीवित बुद्ध, अर्थात जीवित बुद्ध हमारे बस में नहीं होते, उनके साथ तो अगर मैत्री बनानी हो तो तुम्हें उनके बस में होना पड़ता है। स्वतंत्रता, अर्थात फ्रीडम। तुम जो भी अर्थ निकालना चाहो निकाल सकते हो, अर्थ तुम्हारे होंगे। ओशो के विचारों को आज भी ध्यान, आत्मविकास और जीवन के रहस्यों को समझने के लिए प्रासंगिक माना जाता है। ऐसे विचारों को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
6: सुनो शारदा।
7: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल। जी हाँ, आज स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड एक गेस्ट मेरे साथ जुड़ रही है। तो चलिए मैं उनका तारुफ आपको कराना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेता। मेरे साथ जुड़ रही है मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2017 का खिताब आपको मिला है और इम्प्रेस यूनिवर्स 2018 और उसके बाद 2019 में मिसेज यूनिवर्स का खिताब आपको मिला है और आप पेशे से डॉक्टर चेतना अग्रवाल नाम है मैम का। और तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है।
8: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर।
7: कैसे हैं और कैसा फील कर रहे हैं स्टूडियो में आकर?
8: ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच शारदा यूनिवर्सिटी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा अनुभव रह रहा है ये और बहुत मजा आ रहा है। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल।
7: मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहता हूँ, कैसे शुरुआत रही पेशे से? आप MBBS डॉक्टर हैं, एनेस्थियोलॉजिस्ट, करेक्ट बोला मैंने आपके, आई थिंक, और उसके बाद ये फील्ड, इन दोनों को किस तरीके से आपने बैलेंस करके रखा है?
8: देखिए, ताज हमने, हर लड़की का शौक होता है कि उसके सर पे एक ताज सजे
7: जी,
8: और मेरा भी ऐसा ही ख्वाब था। हम लोग जब भी टीवी पर मिस वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड देखते थे, मिस यूनिवर्स, मिसेस यूनिवर्स देखते थे, तो अपना भी मन करता था कि कभी कभी ऐसा मौका मिले कि ये ताज हमारे सर पर भी चमके। तो यही एक ख्वाहिश थी, यही एक तमन्ना थी, लेकिन शुरू में ये नसीब नहीं हुआ। पर हाँ, जब मौका मिला तो मौका हमने हाथ से जाने नहीं दिया। और जैसे ही पहला मौका मिला 2017 में मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2017, जो कि उदयपुर में हुआ था, राजस्थान में, तो वहां पर मुझे मिसेस गुजरात का टाइटल मिला था एंड मिसेस इंटेलिजेंट का सब टाइटल मिला था
7: जी।
8: फिर बात करते हैं 2018 की, तो एम्प्रेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया था। उसमें भी मैं सिटी एम्प्रेस, स्टेट एम्प्रेस रही थी, कंट्री फाइनलिस्ट रही थी और वुमेन ऑफ ऑनर अवार्ड भी मुझे मिला गया था गोवा में। और फिर 2019 में मिसेस यूनिवर्स, जो मिसेस कैटेगरी में सबसे ऊंचा
7: खिताब
8: है, बोलते हैं, वो हुआ था चाइना में, ग्वांगजू में
7: जी।
8: तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया था एज मिसेस यूनिवर्स मिडिल एशिया 2019।

0: सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरी यानी गगन के साथ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर चेतना अग्रवाल हैं, साथ ही साथ कई खिताब इनके नाम है, जैसे कि 2017 में मिसेज इंडिया यूनिवर्स का खिताब आपके नाम है, 2018 में एम्प्रेस यूनिवर्स का खिताब आपके नाम है और वहीं 2019 में मिसेज यूनिवर्स का खिताब भी आपके सर है, सर माथे है। ये जो ख्वाब आपने देखा बचपन का ही ख्वाब था या जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपका ख्वाब परवान चढ़ता गया?
1: बचपन से ही ख्वाहिश थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे बढ़ती गई ये ख्वाहिश। पर मिस कैटेगरी में कभी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, तो मिसेस कैटेगरी में मैंने अपना ये सपना सच किया।
0: ओ ग्रेट ग्रेट, उसके पीछे कितनी मेहनत रही होगी डॉक्टर?
1: मेहनत इसमें काफी रहती है, लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं

0: स्टेज पे आके बस हम ताज जीत लेते हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें हमारी पूरी ग्रूमिंग होती है, हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है, हमको हमारे बात करने का तरीका सीखना पड़ता है, हम कैसे वॉक करते हैं, हमारी रैंप वॉक ट्रेनिंग होती है, क्वेश्चन आंसर राउंड्स की ट्रेनिंग होती है, हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सबके सामने उसकी भी ट्रेनिंग होती है। तो काफी ट्रेनिंग रहती है। फिर हमारा टैलेंट राउंड होता है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, चाहे हमको डांस करना है या कोई भी हमको प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए भी तैयारी होती है। तो काफी इसमें जाता
1: मेहनत है,
0: बहुत मेहनत लगती है। और हमको एक प्रेजेंटेशन भी करना होता है, जैसे मिसेस यूनिवर्स 2019 में डोमेस्टिक वायलेंस पे हमने एक प्रेजेंटेशन किया था, जिसमें मैंने डिजिटल आर्ट पेंटिंग्स के जरिए अपना पूरा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया था डोमेस्टिक वायलेंस पे। तो इसमें काफी हमको तैयारी करनी पड़ती है।
1: जी जी जी। ये जो तैयारी है, ये तैयारी कौन कराता है? आपको खुद से ही तैयारी करनी पड़ती है या आप जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ की टीम आपको तैयार करती है?
0: कंपटीशन की टीम भी हमको तैयार करती है। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस लिए जाते हैं हमारे वहाँ पे। पर कॉम्पिटिशन में जाने से पहले, पेजेंट में जाने से पहले हमको खुद की तैयारी करनी पड़ती है टू बी प्रेजेंटेबल इन दी कॉम्पिटिशन।
1: ग्रेट। मैं सॉरी प्लीज कंटिन्यू करिए।
0: तो हमारे जो भी हम ट्रेनर्स यहाँ पे लेते हैं, ग्रूमर्स होते हैं हमारे, तो उनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं। प्लस अगर जो हमारे टैलेंट राउंड का जैसे मैंने बात की थी, तो उसके लिए भी हम तैयारी करके ही जाते हैं यहाँ से।
1: ओ ग्रेट।
0: प्लस हमारे डिजाइनर्स होते हैं जो हमें ड्रेसेस डिजाइन करते हैं।
1: ओके। डॉक्टर, जहन में ये भी सवाल आता है कि मैं समझता हूँ कि कोई एक ऐसे इलाके से आ रहा या आ रही है, अपने सपने को साकार करना चाहता है या चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल दिमाग में एक ये बात भी आ जाती है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। एक बात होती ही होती है। तो इस मामले में, या यूं कहें कि खुलकर आप बताएं कि वो अपने सपने को कैसे साकार कर सकता है, वो कैसे आपकी तरह कोई मिस इंडिया बन सकता है या मिस इंडिया का जो खिताब है उसके सर माथे जा सकता है।
0: ये अच्छी बात है। एक्चुअली आजकल के जो पेजेंट्स हैं वो बहुत ओपन अप हो गए हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बात कर सके तो आपको खिताब मिलेगा। आप अपनी लैंग्वेज, मातृभाषा जो भी है आपकी, उसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर राउंड दे सकते हैं। वो आपके सब जवाबों को एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांसलेटर्स भी होते हैं जो आपकी भाषा को इंग्लिश में या हिंदी में जो ज्यूरी समझ सके उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें बोल सकते हैं। और दूसरा है कि ट्रेनिंग तो हम सबको लेके ही जानी पड़ती है।
1: जी जी।
0: और वहाँ पे भी वो हमको ट्रेनिंग बहुत अच्छे से देते हैं।
1: क्या कोई रुपए पैसे की अगर हम बात करें तो क्या कोई रुपया पैसा भी आगे चल के खर्च करना पड़ता है?
0: हाँ जी, इसमें रुपया पैसा तो खर्च करना पड़ता है, क्योंकि आपकी ड्रेसेस होती हैं, आपके जो ट्रेनर्स होते हैं, आप जब पेजेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपका पूरा ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, तो हमको पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं। कुछ लोगों को स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है अपने अलग की, पर हाँ इसमें थोड़ा खर्चा तो रहता ही है। आपकी तैयारी होनी चाहिए।
1: क्या बात है। यानी कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए, अपने आप को बेहतर बनाकर रखिए, चाहे वो वॉकिंग की बात हो, टॉकिंग की बात हो, और जिस तरीके से डॉक्टर चेतना अग्रवाल हमें बता रही हैं कि इन बारीकियों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे खास बात यह कि इन्होंने एक सपना देखा और सपने को इन्होंने साकार किया। अब वो चाहे वो मिसेज यूनिवर्स का खिताब क्यों ना हो, लेकिन वो खिताब बचपन से दिल दिमाग में कहीं घूम रहा था कि ये सपने को मुझे साकार करना है। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। कोशिश करते जाइए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती। डॉक्टर चेतना अग्रवाल, आप पेशे से एनेस्थियोलॉजिस्ट, जिसे हम कहते हैं कि बेहोश करने वाली डॉक्टर है। आप इतनी खूबसूरत हैं कि अभी भी हम बेहोश हो ही रहे बिना इंजेक्शन के, दवा के। तो इसके बारे में मैं आपसे जानूंगा जरूर, मगर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो आप गाना चाहती हूँ, गुनगुनाना चाहती हूँ, हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ?
0: ए दिल है मुश्किल।
1: क्या बात है। सो ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ब्यूटीफुल लिसनर्स, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन आपके साथ।

0: है दिल है मुश्किल फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। मैं हूं गगन आपके साथ और मेरे साथ बड़ी ही खूबसूरत डॉक्टर जुड़ी हुई है और क्या कहूं मैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर आपसे बात हो रही थी कि आप बेहोशी की डॉक्टर हैं, आपको देख के तो मुझे लगता है कि मरीज वैसे ही बेहोश हो जाते होंगे। ये मेरी तरफ से आपको एक कॉम्प्लीमेंट है।
1: थैंक यू।
0: ये जो डॉक्टरी का फील्ड है आपका और आप इस फील्ड में भी काम कर ही रहे हैं, तो ये जो बैलेंस है किस तरीके से आप इसका तालमेल बैठा पाते हैं?
1: बैलेंस करना, यस इट इज थोड़ा मुश्किल चीज होती है हमारे लिए, लेकिन जब दिल में ख्वाब होता है, कुछ पाने की तमन्ना होती है, तो अपने आप हम आपस में टाइम सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको परिवार को भी देखना होता है, हमको बच्चों को भी देखना होता है, प्रोफेशन को भी देखना होता है और अपने ख्वाबों को भी सच करना होता है।
0: Excellent.
1: तो सब कहीं ना कहीं जैसे भी होता है हम टाइम सेट करके सब मैनेज करते रहते हैं।
0: वेरी गुड। यानी कि कहीं ना कहीं लिसनर्स अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो राहें वो खुद ब खुद बनती चली जाती हैं, बस एक बार छोटा सा कोशिश करिए, प्रयास करिए और जो आप चाह रहे हैं वो होता चला जाएगा। आप कई सारे कंपटीशन में आपने फाइट भी किया, जैसे कि आप उसके
1: आपने जो ये बोला उसके बारे में मैं बोलना
0: चाहूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज।
1: मेरा एक मोटो जो हम बोलते हैं वो ये है, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू। यानी जब आपको मिले मौका तो आप उसी समय अपनी मंजिल के रास्ते पर चल सकते हैं।
0: क्या बात है, इस बात को यूं कह सकते हैं, जब भी मिले मौका मार दो चौका। बहुत खूब बहुत खूब। और आम भाषा में डॉक्टर कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। ये जरूरी है कि ख्वाबों को जिंदा रखना जरूरी है, उनको मरने मत दीजिए। आप एक जीता जागता उदाहरण है समाज के लिए, युवाओं के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर मंजिल आपको मिल ही जाएगी। कई सारे कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था उसके आप विनर भी रही हैं। एज ए जूरी जब आप जाती हैं तो क्या क्या खूबी आप जो पार्टिसिपेंट वहां पर हैं क्या देखती हैं?
1: ज्यूरी बनके भी जाने का मौका मुझे मिला है कई पैटर्न्स में, तो वहाँ पे हम सबको बेसिकली उनकी पर्सनालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन की फिजिकल ब्यूटी या कैसे वो बोल कैसे रहे हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो कैसे बात करते हैं, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनका वॉकिंग स्टाइल कैसा है, उनका टैलेंट राउंड कैसा है, उन्होंने इंटरव्यू कैसा दिया है, ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोसेस में वो कैसे रहे हमारे साथ, कितना अच्छा उन्होंने सहकार दिया, कितना अच्छा ट्रेन किया अपने आप को। तो सब कुछ हम इकट्ठा देख के ही हम पार्टिसिपेंट्स को जज करते हैं।
0: वेरी गुड। मुझे लगता है कि इस बात से जो हमारे लिसनर हैं, इन बातों को सुनना या समझना उनके लिए बहुत जरूरी है। फाइनली एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिस पर्पस से आप यहाँ आई हुई हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस कैंपस के बारे में क्या कहना चाहेंगे और फाइनली एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे यूथ को?
1: मैं ला ग्लोबल फाउंडेशन की ऑनर्ड एम्बेसडर रही हूँ 2020 से, जब ये कोविड हुआ था, शुरू हुआ था उसके जस्ट पहले ही मैं इनकी ऑनर्ड एम्बेसडर बनी हूँ। और मुझे कहकर बेहद खुशी हो रही है कि जो मतलब कोविड टाइम्स में भी जब हम सोचते थे कुछ नहीं हो सकता है, तब भी ला ग्लोबल फाउंडेशन ने इतनी सारी ऑनलाइन मीटिंग्स की हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स की हैं जो यूएन के रिलेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेशन में होती हैं, एंड काफी आगे तक इस फाउंडेशन को लेके गए हैं और इंटरनेशनल स्पीकर्स उनके पास आए हैं जिसके साथ में हम मीटिंग करते थे ऑनलाइन, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये थ्रू आउट। और उनके साथ हमने ब्रेस्ट अवेयरनेस का यहाँ पे एक पेजेंट किया था, क्राउन ग्लोबल पेजेंट अवार्ड्स किए थे अभी दिल्ली में, तो उसमें भी एज अ ग्रूमर मैं आई थी, एज रैंप वॉक कोरियोग्राफर भी आई थी, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सफर रहा है उनके साथ। और मैं इंडियन रिसोसिटेशन काउंसिल की जो ISA हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, और हमारे मैं अपनी सिटी की सेक्रेटरी हूँ ISA वर्धा, और हमारे जो नेशनल फोरम्स हैं ISA आर्ट एंड लिटरेचर क्लब, ISA कल्चरल क्लब एंड ISA विजिल, उसकी भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ।
0: ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक छोटा सा संदेश हमारे यूथ के लिए, हमारी उन गर्ल्स के लिए जो आपकी तरह इस खिताब को जीतना चाहती हैं, मिस यूनिवर्स का, मिसेज यूनिवर्स का या मिस इंडिया का?
1: जी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ अपने ख्वाबों को हमेशा जिंदा रखिए, चाहे जिंदगी आपको किसी भी मोड़ पे लेके जाए, कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, लेकिन अपने ख्वाबों को प्लीज बुझने मत दें, उनको हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि कब आपको मौका मिलेगा उन ख्वाबों को सच करने का ये आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन ख्वाब सच जरूर होते हैं, मैंने खुद ने देखे हैं, इसलिए आप भी देखेंगे जरूर जिंदगी में कभी ना कभी, डेफिनेटली।
0: चलिए, मैं भी ख्वाब देखता रहता हूँ और इंशाल्लाह आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि मेरे भी जो ख्वाब हैं, जो सपना है, वो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन जरूर साकार होगा। सो डॉक्टर चेतना अग्रवाल, आपसे बात करके, आपसे मिलकर मुझे वाकई बेहद खुशी हुई, बहुत एनर्जी मिली है। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने भी एक ख्वाब देखा है कि वो सपना जरूर साकार होगा, आपकी बातों से मुझे भी अपने आप में ऐसे लगने लगा है। सो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें बहुत सारा समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई, इस बात के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: धन्यवाद आपका भी। एंड शारदा यूनिवर्सिटी के लिए मैं कहूंगी कि मैंने बहुत पहले से मैं टीवी और न्यूज़पेपर में इनके एड्स देखती थी, और आज पहली बार जिंदगी में मौका मिला है इस यूनिवर्सिटी में आने का, और इतना बड़ा यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सब बहुत सपोर्टिव है, ओवरऑल टीम सपोर्ट बहुत ही अच्छा है।
0: अच्छा एक्सपीरियंस रहा अच्छा। मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ग्रेट ग्रेट, नाइस नाइस,
1: इतना कंफर्टेबल फील करके करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: ये बात आपने बहुत अच्छी कही, ये होना बहुत जरूरी है ताकि हम जो बातें वो खुलकर बात कर पाए।
1: बिल्कुल।
0: और आप जब जज होते हैं तो मैं समझता हूँ जो प्रतिभागी आपके सामने, अगर वो माहौल क्रिएट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक नया बंदा या बंदी है वो डर जाएगा, घबरा जाएगा।
1: बिल्कुल भी।
0: तो डॉक्टर, आपसे बात करके वाकई बेहद खुशी हुई, मेरी तरफ से आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो सुनते, थैक यू मैम। ये प्रोग्राम कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। एक्शन।

0: जो कहते हैं सच ये भी कहते हैं कि जान है तो जहान है ना। और जब जान की बात आती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और जब हेल्थ का जिक्र होता है तो सच बात ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर की याद आती है कि डॉक्टर हमसे जुड़ेंगे, डॉक्टर हमें गाइड करेंगे कि हम क्या करें और क्या ना करें। निश्चित तौर पर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हेल्थ के संबंध में किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और जब आपको पता चले कि डॉक्टर वाकई बहुत इंटेलिजेंट हैं, खूबसूरत हैं, और साइड बाय साइड वो अपना एक जो प्रोफेशन है उसको भी कैरी कर रहे हैं, चाहे वो मॉडलिंग की बात हो या लो ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर जो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, यूं कह सकते हैं कि एक संपूर्ण पैकेज है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्राची वी रायजादा। सो डॉक्टर प्राची, आपका सुरुशादा 90.8 एफएम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: अभी दो और लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत रही, बहुत अच्छी रही। आपके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस फाउंडेशन के, बहुत खुश मिजाज लोग हैं आप, और आपके चेहरे पर मुस्कान है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो ये जो मुस्कान का राज क्या है, किस तरीके से लोग आपसे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और चूंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, और किस तरीके से उसका जो दर्द है एक मरीज का वो फुर्र हो जाता है, दूर हो जाता है।
1: सर ये तो अभी तो मुझे लगता है हम अंदर से इतना ज्यादा खुश हैं, हेल्दी हैं और ब्लेस्ड हैं, इसीलिए हर समय हम खुश रहते हैं बेसिकली।
0: okay.
1: और हर मोमेंट को जीते हैं।
0: रियली नाइस, रियली नाइस। तो आपकी जो पैदाइश है वो कहाँ से है, और किस तरीके से आपने अपने आप को इस फील्ड के लिए तैयार किया है, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप यहाँ आई हैं शारदा यूनिवर्सिटी में कैंपस में?
1: सर बेसिकली नेटिव मेरा है वाराणसी, बट क्योंकि मेरे डैड गवर्नमेंट जॉब में थे तो मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप पंजाब में हुआ है
0: जी।
1: स्कूलिंग, एजुकेशन एक्सपीरियंस, एवरीथिंग सब वहीं से होने के बाद यहाँ शादी हुई मेरी, तो मैं इधर आ गई। उसके बाद मैं अपने बेसिकली मेरा प्रोफेशन एचआर प्रोफेशन से हूँ मैं सिंस लास्ट 15 इयर्स, और इसके अलावा यहाँ आने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि मेरे को लगता था जब तक फिट नहीं रहेंगे, क्योंकि बेसिकली मैंने जो चीज अपने कॉर्पोरेट में नोटिस किया है वो ये है कि इतना प्रेशर है प्राइवेट जॉब्स में, इतना प्रेशर है, किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक रख सके। अगर हम इसको बैलेंस करके चलते हैं तो जो स्माइल की बात आप कर रहे हैं वो आराम से हो सकती है। सो मैंने उसके लिए टाइम निकाला। मैं मॉर्निंग 4 o'clock उठती हूँ डेली, मेडिटेशन
0: कुमार को फॉलो करती हूँ। ग्रेट, गुड जॉब डॉक्टर जी।
1: और मेडिटेशन करती हूँ डेली।
0: एक्सीलेंट।
1: और उसके बाद मैं रनिंग और साइकिलिंग के लिए अपने टाइम निकालती हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि आपने सुबह की बात बता दी कि पांव फटने से पहले जाते हैं, लेकिन आप सोते कितने?

0: बजे?
1: सर मैं 9:30 अपने बेड पे चली जाती। जी जी जी, और मैंने अपनी बेटी को भी इतना डिसिप्लिन रखा है। लोग कहते हैं बच्चों के साथ हम सो नहीं पाते, वो जागते रहते हैं, बट नहीं, शी इज वेरी डिसिप्लिन, वो भी हमारे साथ सो जाती है।
0: माँ पर कहीं है।
1: सर अगर ऐसा नहीं करें तो मॉर्निंग 4:00 नहीं हो पाता।
0: डॉक्टर मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आपने जो हमारे बड़े बुजुर्गों का सिद्धांत रहा है कि समय से सोना समय से उठना, यही वजह है कि उनकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहती थी। मैंने खुद से ऑब्जर्वेशन जो मेरा है वो ये है कि अगर आप नींद खो रहे हैं तो जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून आप खो रहे हैं। तो उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आपने तो अपने आप को बैलेंस किया कि 9 बजे आप सो जाते हैं और 4 बजे खटिया छोड़ देते हैं, खटिया नहीं होगा सॉरी बैग छोड़ देते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग लेट आवर्स में सोते हैं या जल्दी जग जाते हैं, नींद कम लेते हैं?
1: सर ये करने का रीजन ही एक है, क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा कि कॉर्पोरेट में मैं देख रही हूँ इतना प्रेशर है लोगों से नहीं हो पाता है। एक टाइम था मैंने भी ये सारी चीजें फॉलो करनी शुरू कर दी थी कि 1-1 बजे तक हम ऑफिस का काम लेके रात को बैठे हैं, मॉर्निंग में नहीं हो पाता था। बट मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस पे अगर हम फोकस्ड हैं, हमारा मेंटल लेवल स्टेबल है, तो हम सब चीजें कर सकते हैं। रात को ये जागना और स्पेसिफिक मोबाइल के साथ ये सब चीजों से अगर वो दूर रहेंगे और अपनी खुशी और हेल्थ दोनों मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से, तो ये करना चाहिए एक बार वो प्रैक्टिस करके। क्योंकि हमारे पास इंटर्न्स आते हैं, उनको भी बोलते हैं कि अगर आप लोग हमें ऑनलाइन दिखते हैं इतने बजे के बाद तो आपको वो पनिशमेंट मिलेगी नेक्स्ट डे। तो हम उनको भी कोशिश करते हैं कि वो मोटिवेटेड रहे उस फील्ड में।
0: यानी कि आपकी खूबसूरती का जो राज है वो टाइम से सोना, टाइम से खाना, अपने आप को बैलेंस डाइट जो आप लेते हैं, जिसकी वजह से आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा है। क्या कहना चाहते हैं जो नींद कम लेते हैं, जो दिक्कत परेशानी में घिरे हुए हैं, जो अवसाद से ग्रसित है, किस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन कर रखें, किस तरीके से जिंदगी को वो खुशनुमा बनाकर रखें? एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से उनके लिए।
1: सर मुझे यही लगता है कि उनको जितना वो परेशान है, परेशानियों के बारे में सोच सोच के नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। एटलीस्ट उनको 21 डेज, एक सिंपल ट्रिक जो मैं फॉलो करती हूँ, अगर मैं बहुत कभी परेशान होती हूँ, मैं सारी नेगेटिव थॉट्स राइट करती हूँ एक नोटबुक पे, फिर उसको फाड़ देती हूँ और बर्न कर देती हूँ बस, और उसको डस्टबिन में ले जाकर फेंक देती हूँ। और आपको भी आप फील करेंगे कि आप लाइट फील कर रहे हैं। मेडिटेशन का रोल तो एक अलग होता ही, आप पॉजिटिव रहते हैं, बट ये करने से नेगेटिविटी जो उस टाइम पे जो आपको खाए जा रही है वो आपकी थॉट निकल गई आपके माइंड से, तो आप नेक्स्ट पल कुछ और अच्छा जो आपको अच्छा लगता है वो करके देखिए। गाना गाना है, डांस करना है, कुछ भी कर सकते हैं।
0: डॉक्टर प्राची, जब गाने का जिक्र हो ही गया तो बातों बातों में कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के आसपास रहता हो, जब आपको लगता है कि मैं स्ट्रेस से गुजर रही हूँ, ये गाना गाना चाहती हूँ, गुनगुनाना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं अपने लिसनर्स को भी सुनाना चाहती हूँ।
1: सर स्ट्रेस तो टच वुड नहीं है मेरी लाइफ में, बट फिर भी अगर कभी अगर किसी को परेशानी है तो सिर्फ 2 लाइन्स
0: जी प्लीज।

0: खुदा बड़ा है।
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं। और लिसनर्स, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर प्राची आपसे बात कर रही हैं, इन बातों को गांठ बांध लीजिए। जिंदगी वाकई बहुत बहुत बहुत खूबसूरत है। और अक्सर मैं भी खुद लाइनों को यहाँ जिक्र करता रहता हूँ कि ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। डॉक्टर, अदरवाइज तो लोग ऐसे होते हैं कि टेंशन लेने का नहीं देने का। मेरा खुद का मानना ये कि ना आपको टेंशन लीजिए, ना किसी को दीजिए। जिंदगी को खूबसूरत बनाकर रखिए और अच्छे अच्छे लोगों से मिलते रहिए। और आके वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे लोगों से मेरी आज मुलाकात हुई है, अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। और इस बात के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई होप जब भी आपसे मुलाकात होगी, इधर कैंपस में आना होगा, तो जरूर आप हमारे रेडियो आएगा, जरूर हम आपसे फिर बात करेंगे।
0: थैंक यू सो मच सर, इतनी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू।
1: लिसनर्स, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार से मोहब्बत से गुजारते चले जाइए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। टाटा बाय एंड टेक केयर।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: बरसात के मौसम में छोटे बच्चों में दस्त की समस्या आम बात है,
1: जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो घबराएं नहीं, हर दस्त के बाद बच्चों को ORS का घोल देते रहें।
0: साथ ही साथ 14 दिन तक लगातार जिंक की गोली देनी है।
1: अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम है तो उसे आधी गोली माँ के दूध में घोल कर देनी है।
0: और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो पानी के साथ 1 गोली रोजाना देनी है।
1: ध्यान रहे, दस्त रुक जाने के बाद भी जिंक की गोली 14 दिन तक देनी ही है।
0: ORS और जिंक की गोली आपको आशा दीदी या फिर नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। और हाँ, ध्यान रहे, स्तनपान जारी रखना है और खाने के लिए सुपाच्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी इत्यादि दे सकते हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता लें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेन के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती है। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800 111 6666 पर संपर्क करें।

0: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। नमस्कार, 29 मिनट हो चुके हैं, 31 तारीख है। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। भाई, ग्रेटर नोएडा में आज अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने और आसमान में बादल छाए रहने के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की भी संभावना है। नमी की अगर मैं बात करूं, यानी कि ह्यूमिडिटी, हवा में नमी 80% से अधिक रहने के कारण उमस बनी रह सकती है। और ये सच बात है कि जब बारिश हो जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बारिश के बाद हम देखते हैं कि उमस ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहीं तबीयत खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। और हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव रहते हैं आपके साथ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सबका दिन शुभमय गुजरे, सब सुरक्षित घर से निकले, सुरक्षित अपने ऑफिस, सुरक्षित अपने घर पहुंचे। कल की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर कल से सावन का महीना शुरू हो चुका है। और सावन को आने दो, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, झूले पड़ गए अमुआ की डाल पे, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे लोक संगीत है, लोक गीत है, जिसकी वजह से सावन के महीने में वो प्रचलित हैं, सुने जाते हैं। इस सावन की आप सभी को बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दौर शुरू होता है कांवड़ का, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
1: अरुण एंड इक्का रिक्रिएटेड, तनिष्क बागची, लिरिक्स शब्बीर अहमद, ऑल ऑन टिप्स ऑफिशियल। सो लेट्स एंजॉय इट, ऑल योर सुरुशादा 90.8 FM।

जाने हैं कहां, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो संग बाय लकी अली, कंपोजर्स माइकी मैकक्लेरी और सूरज कुलवडी, लिरिसिस्ट कौसर मुनीर। तू जाने हैं कहां, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: जाने हैं कहां, ये गाना लकी अली की आवाज में। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। 9:38 हो चुके हैं, 31 तारीख है, यानी कि महीने की आज है आखिरी तारीख। वक्त आसिम फिसलता चला जाता है और कब तारीख बदल जाए, कैलेंडर बदल जाए, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन हमें पता चलता है जब आपकी जेब पर कहते ना तो थोड़ा वजन पड़ता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक तारीख से नियम कायदे कानून बदलते हुए नजर आते हैं। LPG पर हम सबकी निगाहें रहती हैं, बैंक के सिस्टम पर निगाहें रहती हैं, रेलवे टिकट्स पर निगाहें रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में अभी हाल फिलहाल में मैंने बहुत सारी अपडेट्स दी हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आपको लगता है कि गूगल करना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि एक बार आप सर्च इंजन पर जाकर मालूम हासिल कर सकते हैं कि क्या क्या खास होने जा रहा है। चलिए, खास बात यह कि मौसम बदल रहा है।
1: अब वो गाना सुनाऊ मौसम पे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो नहीं जाओगे।
0: अब
1: गाशे सुनाओ गाशे।
0: ये अंताक्षरी नहीं चल रही, और ना ही अंतरे या मुखरे को बीच में लाना, यानी कि कोई शब्द बीच में आए या शुरुआत में आए। हम मुद्दे की बात पर आते हैं।
1: देखो बेटा, ऐसे क्योंकि पहली बात का वजन कम हो जाता है। बोलो, पहली वाली बात भी मुद्दे की थी, दूसरी वाली बात भी मुद्दे की है। बोलो अब क्या बोल रहे हो।
0: हाँ, मैं ये कह रहा था कि मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त में मानसून बहुत ज्यादा प्रचंड होगा और कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है, और गुजरात में सेना को स्टैंड बाय पर रखा गया। और आने वाले समय में यूँ कहें कि अभी हाल फिलहाल की दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, तो दिल्ली में यमुना का जो जल स्तर है, जो वाटर लेवल है, उसके बढ़ने से बैराज के गेट खोल दिए गए। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी है। ऐसे मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जब जल भराव होता है तो हमें सड़क या गड्ढे या सीवर के ढक्कन नजर नहीं आते, क्योंकि हमेशा सीवर के ढक्कन खुले होते हैं। नाला ओवरफ्लो होता है तो सड़क पर पानी बह रहा होता है, और हम यानी कि शासन प्रशासन आम जन तभी जागते हैं जब घटना दुर्घटना हमारे सामने होती है। ब्यूटिफुल ट्रैक, गहरा हुआ। अगर वक्त रहते हुए हम सुधर जाएं, संभल जाएं, तो घटना दुर्घटना से अपने आप को बचा सकते हैं। धुरंधर फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक, अरिजीत सिंह की आवाज, सिर्फ सुरुशारदा 90.8 FM पर। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर पहुंचे, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन, सिर्फ सुरुशारदा 90.8 FM पर।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सिर्फ गाने का आनंद उठाएं, शब्दों पर न जाएं, क्योंकि सावन झूम झूम के गरज बरज के साथ बरस रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 48 मिनट हो चुके, 31 तारीख है, यानी कि 31 जुलाई दिन, आज आखिरी जुलाई का आखिरी तारीख। कल से एक अलग कैलेंडर, यानी कि एक पेज को हम पलटेंगे और एक नई तारीख हमारे सामने होगी। और कल से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जहां परिवर्तन आपको नजर आएगा, चाहे वो रेल की टिकट हो, तत्काल टिकट हो, बैंक में या LPG गैस सिलेंडर। इसके बारे में अगर आप अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स जो आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि जब आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को समझने को मिलेंगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में LPG पर दाम कुछ स्थिर थे, कुछ घटे बढ़े थे, लेकिन अब क्या होगा ये तो अभी मैंने जो पढ़ा उसके हिसाब से मैं बात कर पा रहा हूं। लेकिन आने वाले समय में ही हमें खास पता चलेगा कि रेट घटे हैं या बढ़े हैं। खैर, ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये कि जब जिंदगी में एक सक्सेस स्टोरी हमारे सामने आती है कि किसी सफल व्यक्ति के पीछे कितनी मेहनत है, उसके पीछे क्या कहानी है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप और हम मोटिवेट होते हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के वीमेंस डिस्कस थ्रो फाइनल में भारत की सीमा काली रामना ने पदक नहीं जीता, एक हौसले को जीता है, एक समाज में एक उदाहरण सेट किया है और कठिन दौर के बाद उनको ये तोहफा मिला है। और 27 वर्षीय वो हैं एथलीट ने, खबरें यहाँ तक की हैं कि एक नन्हे मुन्ने को, बच्चे को जन्म देने के बाद उन्होंने, यानी कि सिर्फ 11 महीने के बाद ही अपने आप को वो इस फील्ड में बड़ी मेहनत की, उसके बाद उस पर वर्क किया गया, अपनी मेहनत के साथ साथ वो आगे बढ़ी और इस तरीके से डिस्कस थ्रो फाइनल में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस बात के लिए लख लख बधाइयाँ, बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाहिर सी बात है कि जब मैं स्टोरी को पढ़ रहा था तो सुनने में ये भी आया कि फिजिकल एजुकेशन में वो PhD भी कर रही हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी इस फील्ड में वो कोच भी रहे हैं इनके। तो लख लख बधाई, बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं हुआ करती। कहते ये भी हैं कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, जब आप ठान लेते हैं तो उसके साथ एक स्ट्रैटेजी होती है, रणनीति के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका सपना एक ना एक दिन साकार जरूर होता है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: तुम्हारा टाइम चल रहा है. अबैंडन बैंक राइट नाउ.
1: नो सर, वी डोंट अबैंडन माय टैंक. माय कार इज स्टिल वर्किंग. आई गेट दीस बास्टर्ड्स.

0: सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि पाकिस्तानी फौज के लिए भी एक मिसाल है सर।
1: अगला परमवीर चक्र हमारे रेजिमेंट में, मैं लेकर आऊंगा।
2: चलती है सांसें जिसकी, हर शख्स वो जिंदा है, जिसके जीने का मकसद हो वही तो बंदा है।
1: सर लड़ाई होने वाली है।

0: हम फौजी हैं, जस्ट फॉलो ऑर्डर्स।
1: और तो उसे भी मिला था अब जाने के लिए कमबख्त माना गया। अब लड़ता रहा।
2: एक मिनट, एक इंच पीछे नहीं हटेगा।
3: सामने से
4: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:55 हो चुके हैं, 31 तारीख है। हमारे आसपास के खास उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ, क्रिकेट के आप दीवाने तो आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के लिए वेन्यू का ऐलान कर दिया है और 12 शहरों में ये मुकाबले होने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे विश्व कप 2027 के लिए मेजबान शहरों और स्टेडियमों की जो आधिकारिक घोषणा है वो हमारे सामने कर दी है। और ये जो टूर्नामेंट है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है और 24 साल बाद वनडे विश्व कप की जो मेजबानी है फिर से अफ्रीकी महाद्वीप को मिली है। लख लख बधाइयां।
5: हाँ, मेहमान नवाजी करने का मौका मिलेगा मेजबान को।
4: हाँ बिल्कुल।
5: ये उर्दू के जो अल्फाज हैं कैसे सीखे?
4: ट्यूशन, मुझसे ट्यूशन ले लो,
5: फ्री में लेंगे।
4: चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या खास है। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
5: हाँ, जैसे आज गगन का तिथि के अनुसार जन्मदिन है। बेटा गगन, सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।
4: सच बात है, आज मेरा जन्मदिन है तो मेरे को बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं बहादुर की तरफ से। और आप भी मुझे दे सकते हैं 120-40-60-205 पर कॉल कर या फेसबुक के माध्यम से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन और किस किस हस्ती का बर्थडे है? कियारा आडवाणी का आज बर्थडे है, मुंशी प्रेमचंद जी का आज बर्थडे है, मुमताज जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है उनका बर्थडे है, मास्टर सलीम सिंगर है इनका आज जन्मदिन है। और आज खास दिन यह है कि विश्व रेंजर दिवस यानी कि वर्ल्ड रेंजर डे है, जो जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने वाले पार्क रेंजरों के योगदान को सम्मानित करने के लिए आज दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है। तो उनको हम सैल्यूट करते हैं। वक्त का इशारा मैं होता हूं अनुराध वगैरह। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। टेंशन लेने की जरूरत न, किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। जिंदगी बहुत खूबसूरती से प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। सुनिएगा सुबह 10 बजे एक विशेष कार्यक्रम रेडियो ओपीडी के माध्यम से, स्मार्ट के सहयोग से हेल्थ का विशेष कार्यक्रम कंटिन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिएक्शन ऑफ, है ना, ये विशेष कार्यक्रम है ऑफ मेडिसिन। ये विशेष कार्यक्रम सुबह 10 बजे सिर्फ सुरुषादा 90.8 FM पर। नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: पिछले कार्यक्रम में हमने टीबी के इलाज के बारे में विस्तार से बात की थी। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है। सरकार मुफ्त दवाइयां देती हैं और यहां तक कि दवा प्रतिरोधी यानी एमडीआर टीबी का भी इलाज उपलब्ध है। लेकिन आज हम उस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, आगे की बातें करेंगे, क्योंकि सच कहें तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने की नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने की होती है। बहुत सारे मरीज इलाज शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलोअप जांच नहीं करवाते, कहीं बाहर काम पर चले जाते हैं, या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं। और यही छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इलाज को बीच में न रोकने की, दवाओं के संभावित रिएक्शन की, अगर दवाओं से परेशानी हो तो क्या करना चाहिए, निश्चय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद कैसे करती हैं, और परिवार तथा समुदाय का सहयोग कितना जरूरी है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी स्वास्थ्य साथी टीकन देवी जी। स्वागत है टीकन भाभी, यानी कि लोग इनको टीकन भाभी कहते हैं और सम्मान के रूप में टीकन देवी कहते हैं, तो दोनों में कॉमन टीकन तो है। तो टीकन देवी भाभी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजी जी, सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आरजी जी, पिछले कार्यक्रम के बाद मुझे कुछ लोगों ने फोन किए, अधिकांश लोगों ने एक ही बात कही, हमें पता है कि टीबी का इलाज होता है, लेकिन इतने महीने तक दवाई लगातार लेना आसान नहीं होता। और सच कहूँ, यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इलाज पूरा करना उससे भी ज्यादा जरूरी।
0: बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनाएं जो इस विषय को समझने में मदद करे, तो श्रोताओं को बात और अच्छी तरह से समझ में आएगी।
1: बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहूंगी जो कुछ साल पहले की है। पास के एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक बच्चा था जिसका नाम रवि था। रवि को लगातार बुखार रहता, वजन कम हो रहा था, खांसी भी लंबे समय से बनी हुई थी। जांच हुई तो पता चला टीबी है। परिवार घबरा गया, लेकिन डॉक्टरों ने समझाया कि चिंता की बात नहीं है। इलाज शुरू हो गया। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालत सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख लौटने लगी, घर वालों को लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन 1.5 महीने बाद एक नई समस्या शुरू हुई। उसके शरीर पर लाल चकते निकलने लगे, उसे उल्टियां महसूस होने लगी, और तो और उसे उल्टियां आने भी लगी। माता पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी, दवा बंद कर दो, दवा के नुकसान हो रहे हैं। लेकिन संयोग से उस समय उसके पिता ने हमारे इसी कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई का पूरा एपिसोड सुना था, जिसमें कहा गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को बताना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से दवा को बंद नहीं करना है। उन्होंने वही किया। अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल ले गए, डॉक्टरों ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यक बदलाव किए और कुछ अलग जांच भी किए। कुछ दिनों बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई। आज रवि पूरी तरह से स्वस्थ है। सोचिए ना राज्य बाबू, अगर उसके माता पिता डर कर दवा बंद कर देते तो बीमारी दोबारा गंभीर रूप ले लेती। यानी समस्या दवा में नहीं है, बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होने वाली प्रॉब्लम यहाँ बड़ी दिखाई पड़ती है।
0: बिल्कुल सही कहा दोस्तों। इस कहानी का सार यही है कि समय पर दवा जरूर लीजिए, लापरवाही मत बरतिए, और खुद पर और खुदा पर यानी कि ईश्वर पर, परमात्मा पर विश्वास रखिए कि एक दिन आप जरूर स्वस्थ होंगे। तो ये कहानी सचमुच बहुत बड़ी सीख देती है दोस्तों। यानी दवा के दौरान कोई परेशानी हो जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुरंत स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क करना है। लेकिन भाभी, सबसे पहले यही बताइए कि इलाज की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट, इतनी महत्व

0: महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
1: देखिए आरजी जी, टीबी का जीवाणु बहुत चालाक होता है। जब मरीज दवा शुरू करता है तो कुछ ही हफ्तों में खांसी कम होने लगती है, बुखार कम होने लगता है, शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। और यहीं पर कई लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन वास्तव में उस समय शरीर के अंदर मौजूद सभी जीवाणु समाप्त नहीं हुए होते हैं। लक्षण कम जरूर हो जाते हैं, बीमारी का पूरी तरीके से खात्मा नहीं होता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों अलग अलग बातें हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम बार बार कहता है, डॉक्टर जितने समय तक दवा लेने को कहें उतने समय तक नियमित रूप से दवा लेनी जरूरी है। ये याद रखिए, आराम महसूस होना इलाज की सफलता का संकेत हो सकता है, लेकिन इलाज पूरा होने का प्रमाण बिल्कुल नहीं।
0: भाई बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, लेकिन व्यवहार में अक्सर देखा गया है कि लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों?
1: कारण कई हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब वे ठीक हो चुके हैं, कुछ लोग रोज दवा लेने से ऊब जाते हैं, कुछ लोगों को काम पर जाना होता है तो फॉलो अप नहीं हो पाता, कुछ लोग दूसरे राज्य और दूसरे शहर में काम करने चले जाते हैं तो भी दवा के हल्के दुष्प्रभावों से वो डर भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग समाज के डर और शर्म की वजह से भी इलाज को छुपाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार इन चुनौतियों को समझते हुए कई व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई हैं, जिसमें मरीज को बीच में जो उसका इलाज चल रहा है वो बिल्कुल भी ना टूटे और उसे पूरी तरह टीबी से निजात मिले।
0: यही तो मैं पूछना चाहता था कि अगर कोई मरीज इलाज के दौरान गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है तब क्या होगा? क्या उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: हाँ।
1: ये बात खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत जरूरी है, जहां लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे जिले राज्य जाते हैं। आरजे जी, सरकार ने ट्रांसफर आउट की एक व्यवस्था बनाई है। अगर मरीज अपने स्वास्थ्य कर्मी या टीबी टीम को जानकारी देता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड निक्षय प्रणाली पर अपडेट हो जाता है और नए स्थान पर भी वही इलाज जारी रखा जा सकता है। यानी केवल स्थान बदलने के कारण दवा बंद करने की जरूरत नहीं है। जहां जाएं वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़े और इलाज जारी रखिए।
0: बिल्कुल सही कहा कि जहां जाएं वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़िए और इलाज जारी रखिए। आपने निश्चय का नाम लिया, बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में सुना होगा लेकिन विस्तार से शायद नहीं जानते होंगे। मैं आपसे समझना चाहता हूँ निश्चय के बारे में।
1: निश्चय वास्तव में टीवी मरीजों के लिए सबसे जरूरी व्यवस्था है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड, इलाज की प्रगति, फॉलो अप, सहायता और निगरानी की जाती है। इसके जरिए डॉक्टर ये देख सकता है कि मरीज की जो इलाज का अपडेशन है वो कहां तक पहुंचा है। अगर किसी मरीज को फॉलो अप जांच अभी बाकी है तो उसे याद दिलाया जा सकता है। अगर मरीज कहीं चला गया है तो उसका इलाज नए स्थान के साथ उसे जोड़ा जा सकता है। व्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की सहायता भी सुनिश्चित की गई है। यानी निक्षय केवल एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं है बल्कि इलाज की निरंतरता बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण साधन है।
0: तो दोस्तों अब बात करते हैं दवाओं से होने वाली प्रतिक्रियाओं की, यानी साइड इफेक्ट्स या रिएक्शन, क्योंकि यही वो विषय है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं।
1: और डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। आरजे जी, जैसे ही किसी को पता चलता है कि टीबी की दवाएं कई महीनों तक चलेंगी तो उनके मन में एक चिंता रहती है, कहीं दवा से कोई परेशानी तो नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि अधिकांश टीबी मरीज बिना किसी गंभीर समस्या के अपना पूरा इलाज सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कुछ दुष्प्रभाव या प्रतिक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान रिएक्शंस महसूस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, किसी को शुरुआत में मतली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, किसी का पेट भारी लग सकता है या जलन महसूस हो सकती है, कुछ लोगों को भूख थोड़ी कम लग सकती है, कई बार त्वचा पर खुजली या लाल चकते भी दिखाई दे सकते हैं, कुछ मरीज कमजोरी थकान या चक्कर की बात आने की भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुनपना महसूस होना, सुनने की क्षमता में बदलाव आना या व्यवहार और मानसिक स्थिति में कोई असामान्य परिवर्तन महसूस होना। ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी, दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं है कि इलाज असफल हो रहा है, ना कि इसका मतलब ये है कि मरीज अपने मन से दवा लेना बंद कर दे। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यही होती है। कई बार लोग किसी पड़ोसी रिश्तेदार अधूरी जानकारी के आधार पर दवा छोड़ देते हैं, जबकि यह कदम सही नहीं है। उन्हें तुरंत स्वास्थ्य कर्मी, आशा बहन, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को इसकी जानकारी देनी चाहिए। याद रखिए, इन सभी रिएक्शंस का इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर जांच करेंगे, सलाह देंगे और जरूरी हुआ तो इलाज में उचित बदलाव भी करेंगे। लेकिन अगर मरीज बिना बताए दवा बंद कर देता है तो बीमारी फिर से सक्रिय हो जाएगी और इलाज मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेरा ये संदेश है, दुष्प्रभाव छिपाए मत, घबराए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल लेना बंद मत करिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफल इलाज की कुंजी है।
0: देखिए साहब, टीकन देवी ने अर्थात हमारी टीकन भाभी ने बहुत डिटेल में विस्तार से बता दिया। आखिर के शब्दों को, आखिर की लाइनों को फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, दुष्प्रभाव छिपाइए मत, घबराइए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल मत रोकिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफल इलाज की कुंजी है। यानी दवा से परेशानी हो तो पहला कदम दवा छोड़ना नहीं बल्कि डॉक्टर से बात करना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि हर शिकायत गंभीर नहीं होती, कुछ दुष्प्रभाव अस्थाई होते हैं, कुछ का इलाज किया जा सकता है, कुछ मामलों में डॉक्टर दवा की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन यह निर्णय केवल डॉक्टर को ही लेना चाहिए, मरीजों को नहीं। याद रखिए, जल्दी जानकारी देना इलाज बचाता है, जबकि चुप रहना इलाज को खतरे में डाल सकता है।
0: बिल्कुल सही बात। इस बात को यूं ले सकते हैं कि अगर आपने डॉक्टर को सही समय पर बता दिया तो इलाज से आप बच सकते हैं, और जबकि आप चुप रह गए तो इलाज को खतरे में डाल सकते हैं। फॉलोअप जांचों की भी बात होती है टीकन देवी। कई लोग सोचते हैं कि दवा मिल गई तो अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: यही तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इलाज केवल दवा खाने का नाम नहीं है, नियमित उसकी जांच, उसकी निगरानी होना बेहद जरूरी है। डॉक्टर जब फॉलोअप जांच के लिए बुलाएं तो जरूर जाएं। अगर बलगम का नमूना मांगे तो जरूर देना चाहिए, अगर कोई जांच लिखी जाए तो उसे जरूर कराना चाहिए। जांचों से पता चलता है कि दवा कैसा काम कर रही है और कैसा नहीं, कहीं अतिरिक्त सहायता की जरूरत तो नहीं है। यदि कोई समस्या है तो उसे टाइम से पकड़ा जा सकता है।
0: बिल्कुल भाभी, आपने पिछली बार MDR TB का जिक्र किया था, उसके संदर्भ में इलाज की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी खास है, इसके बारे में भी बताइए भाई।
1: बिल्कुल, MDR TB यानी दवा प्रतिरोधी TB में यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामले में इलाज अपेक्षाकृत जटिल हो जाता है, दवाएं अधिक हो जाती हैं, निगरानी ज्यादा की जाती है और फॉलोअप भी अधिक होता है। लेकिन श्रोताओं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि MDR TB का मतलब इलाज असंभव नहीं है। आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी, नए उपचार की टेक्नोलॉजी के कारण मरीजों के ठीक होने की जो संभावना है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। 2014 से लेकर 2024 तक पहुंचने में जो टीबी की वजह से आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी और कई उपचार टेक्नोलॉजी के कारण मरीजों को ठीक होने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, बस शर्त एक ही है कि इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए।
0: और परिवार की भूमिका, कई बार मरीज अकेला पड़ जाता है, ये सब क्या है?
1: परिवार की भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार भी मानती है कि टीबी का इलाज केवल मरीज नहीं करता, पूरा परिवार करता है। घर का कोई भी फैमिली मेंबर उसे दवाओं के बारे में याद दिला सकता है, फॉलोअप के साथ उसके साथ जा सकता है, लक्षणों पर नजर रखता है, मानसिक सहारा देता है और सबसे जरूरी बात, मरीज को यह महसूस कराता है कि वो अकेला नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा असर एक सहारा देने वाला शब्द होता है।
0: और पोषण, इसके बारे में भी जानना या बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि रिकवरी में भोजन की बड़ी भूमिका होती है, इसके बारे में बताइए प्लीज।
1: बिल्कुल, दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन शरीर को ताकत भोजन देता है। इसीलिए सरकार निक्षय पोषण योजना जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से ये सहायता उपलब्ध कराती है। मरीज को नियमित भोजन लेना बेहद जरूरी है, जिसके अंदर दालें, अंडे, दूध, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां और पौष्टिक चीजें लेनी चाहिए, जो कि शरीर को रिकवरी में मदद करते हैं।
0: वाकई आपने बहुत अच्छी बात बताई, यानी कि खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, लापरवाही नहीं बरतिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि आज की चर्चा को कुछ मुख्य संदेशों में समेटना हो तो आप क्या कहेंगे, यानी कि वो सार क्या होगा?
1: बिल्कुल, मैं ये सार 8 बातों को याद दिलाने से करूंगी। पहली, टीबी की दवा अपने मन से बंद ना करें। दूसरी, बेहतर महसूस होने पर इलाज पूरा हो गया ये उसका संकेत नहीं है। तीसरा, दवा में कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। चौथा, फॉलोअप और जांच इलाज का सबसे जरूरी पार्ट है। पांचवा, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो स्वास्थ्य टीम को बताकर इलाज अपडेट कराएं। छठा, निक्षय और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इलाज की निरंतरता में मदद करती है। सातवीं, परिवार और उपचार सहयोगी मरीज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आठवीं, MDR टीबी भी इलाज योग्य है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से कार्यक्रम से जुड़ा रहे।
0: बहुत सुंदर बात आपने कही टीका देवी, और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, अगर रवि के माता पिता उस दिन डरकर दवा बंद कर देते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समझ, यही जागरूकता और यही सतर्कता हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए। साथियों, याद रखिए, टीबी का इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि धैर्य, नियमितता, परिवार के सहयोग और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रहने से सफल होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर लेते हैं सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ गई,
0: दवा चले नियमित हर दिन
1: तभी मिटेगा टीबी का चिन्ह।
0: परेशानी हो तो बात बताएं,
1: अपने मन से दवा ना छुड़ाएं।
0: क्या बात है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सच बात तो ये है कि सेहत सही तो लाभ कई। ये विशेष कार्यक्रम स्मार्ट के सहयोग से हमने सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से आप तक पहुंचाया। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये विशेष कार्यक्रम बहुत बहुत बहुत पसंद आया होगा। निश्चित तौर पर इस जानकारी से आप लाभ उठाएंगे, अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाएंगे और 120 जो कि हमारे शहर का STD कोड है आपको लगाना ना भूलेगा। नंबर जब आप डायल करें 120-40-60-205 इसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। वक्त का इशारा, हम होते हैं 9:11। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मुझे गगन को दीजिए अनुमति और मेरे साथ जुड़ी रही टीकन देवी के रूप में खुशबू जी। तो खुशबू अख्तर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आरजे बाबू।
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: आप सुन रहे सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक मुहिम चला रहे हैं, स्वास्थ्य जन जागरूकता की मुहिम है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और इसी मुहिम के अंतर्गत आज हमारे साथ में हैं शिल्पा अरोड़ा जी, आप सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं और आज हम आपसे जानेंगे टीबी के बारे में। तो इसके क्या कुछ लक्षण हैं और क्या कारण है?
1: टीबी के लक्षण हैं, लगातार अगर 2 हफ्ते से आपको खांसी आ रही है, खांसी के साथ बलगम आ रहा है और बलगम में खून भी आ सकता है, लगातार बुखार होना, खांसी का होना, वजन का कम होना, भूख ना लगना, रात में पसीना आ जाना, ये सब टीबी के लक्षण होते हैं।
0: तो ये तो हो गए लक्षण। अगर इस तरह के लक्षण किसी को भी महसूस होते हैं या दिखाई देते हैं, परिवार में रहते हैं या कहीं अन्य जगह रहते हैं, तो सबसे पहले क्या उनको स्टेप लेना चाहिए?
1: सबसे पहले आके उनको बिस्रक के सरकारी अस्पताल में बलगम की जांच करानी चाहिए। बलगम की जांच से पता चल जाएगा कि आपको कौन सी वाली टीबी है।
0: तो अगर हम बिस्रक की बात करें तो यहाँ पर जो टीबी जांच की कौन कौन सी सुविधा है, कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है?
1: यहाँ पे ट्रूनेट हो जाती है, बलगम की सारी टेस्टिंग जितने भी तरीके की है सब हो जाती है।
0: अब बात करते हैं कि मान लीजिए टेस्ट में पुष्टि हो जाती है, हम फेफड़ों की टीबी की खासकर बात कर रहे हैं, तो क्या फिर उसका उपचार होता है, कैसे शुरुआत होती है?
1: उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे ही पता लगता है कि इस पेशेंट को पल्मोनरी टीबी है, जैसे कि फैलने वाली टीबी जिसको हम बोलते हैं, तो सबसे पहले तो पेशेंट को मास्क लगाना चाहिए। जैसे ही आपको पता लगता है कि भाई आपको टीबी है तो मास्क का यूज़ करें। दूसरा, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, 168 डेज उनका ट्रीटमेंट चलता है, हर 2-2 महीने बाद उनकी टेस्टिंग होती है कि टीबी कितनी ठीक हो रही है। उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी मेडिसिंस दी जाती हैं बचाव के लिए, जिससे कि ये टीबी उनमें ना फैले। 6 साल से छोटे बच्चों की अलग मेडिसिंस चलती है, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों की अलग मेडिसिन चलती है, 14 से जितने एडल्ट्स हैं उनकी अलग मेडिसिंस चलती है, जितने भी उस पेशेंट के साथ मेंबर रहते हैं सबको बचाव की दवाई दी जाती है।
0: और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को लगता है कि अब तो मैं ठीक हूँ, 1 महीना दवा खाई उसने और फिर बीच में उसने छोड़ दी दवा, तो क्या उसका ज़्यादा नुकसान हो सकता है?
1: हाँ, बहुत नुकसान हो जाता है। अगर पेशेंट बीच में दवाई छोड़ देता है, प्रॉपरली नहीं लेता, तो नेक्स्ट टाइम जब उसको टीबी होती है वो बिगड़ा हुआ रूप लेके आती है, जिसको हम बिगड़ी हुई टीबी का नाम लें, उसको MDR टीबी हम लोग बोलते हैं, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनको भी टीबी हुई है, अगर आप उसको समय से आप इलाज लेंगे, प्रॉपर इलाज पूरा कोर्स करेंगे, तो आप ठीक हो जाएंगे और आपको बिगड़ी हुई टीबी नहीं होगी। परिवार को तो अगर आपको बचाना है तो मास्क लगा के रखें, दूसरा अच्छे से कपड़े पहने, ठंड नहीं लगनी चाहिए ज़्यादा, गर्म पानी का यूज़ करें, हेल्दी डाइट लें, हरे पत्तेदार सब्जियाँ खाएं।
0: चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि जिनको टीबी है वो तो है ही गई, लेकिन बहुत बार हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, जो व्यक्ति को टीबी नहीं है पता नहीं, वहाँ पर कोई हो सकता है कि और टीबी का व्यक्ति हो, तो ऐसे में अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है?
1: मास्क लगा के आप मास्क का यूज़ करें अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जा रहे हैं। और सबसे पहली बात, अपना स्टैमिना अच्छा रखें, खाली पेट ना ज़्यादा रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, अपना हेल्दी डाइट लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
5: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
4: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
5: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
4: दुल्हन सुंदर ही नहीं समझदार भी है।
6: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
9: सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ रण विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
6: राम राम, दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत कल्याण लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि आपको समसामयिक जानकारी मिलती रहे और सरकार की जो योजना है आपके लिए, हमारे ग्रामीण बहन भाइयों के लिए, उनका वो लाभ उठा पाए। और लाभ तभी मिलेगा जब आपको इन योजनाओं के बारे में जानकारी होगी। तो किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात करेंगे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी कि वीवीजी रामजी ग्रामीण मिशन की। ये केंद्र सरकार की एक नई पहल है जो मुख्य रूप से मनरेगा का आधुनिक और उन्नत रूप है। किसान मित्रों, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसके साथ ही पारदर्शी भुगतान और स्थायी आजीविका प्रदान करना भी इसी योजना का मुख्य उद्देश्य है। देश के सभी गांव गरीबों और किसानों के चहुमुखी विकास और जरूरतमंदों को ग्राम स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए ही केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी कि वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। हर हाथ को काम मुहैया कराने के लिए इस अधिनियम में अब एक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। मनरेगा अधिनियम में रोजगार की यह गारंटी मात्र 100 दिन थी। वीवीजी रामजी योजना देश के सभी गांवों की तस्वीर बदल देगी। ये गरीबों, खेतीहार, मजदूरों, किसानों सभी के लिए बेहद लाभकारी है। इस योजना से गांव के विकास को मजबूती मिलेगी। किसान मित्रों, पहले आपको कृषि से जुड़े कामों के लिए श्रमिक ही नहीं मिलते थे, पर वीवीजी रामजी योजना में कृषि के व्यस्ततम समय, विशेषकर बुआई और कटाई के समय, पर्याप्त मात्रा में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। इस योजना में यदि किसी ग्रामीण परिवार को उसके मांग करने के बावजूद तय समय सीमा के भीतर काम नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार तय की गई दरों और शर्तों के अनुसार संबंधित मांगकर्ता के परिवार को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए भी बाध्य होगी। इसी तरह काम पूरा कर लेने के बाद भी यदि किसी कारणवश मजदूर को उसकी निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है तो मुआवजे के तहत उसे विलंबित मजदूरी के रूप में अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही वीवीजी रामजी मिशन की। और आइए अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना।
1: हम देश के वीर किसान खेत में।
2: सही बात है, बिल्कुल।

चंद भाई सही है फौजी भाई, हमें आराम का सोना नहीं मिलता, लेकिन हमको भी नहीं मिलता फौजी भाई, कभी कभी तो बॉर्डर पर

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि जो हमारे किसान बहन भाई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके खेती करते हैं तो वो ज्यादा लाभ कमाते हैं। तो हम बात खेती में तकनीक की कर रहे हैं, तो आजकल एक तकनीक का इस्तेमाल भी हमारे किसान बहन भाई खूब कर रहे हैं, यानी कि ग्रीन हाउस खेती कर रहे हैं, जो एक ऐसी तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से किसान भाई मौसमी और गैर मौसमी फसलों की खेती 12 महीने लगातार कर सकते हैं। ये तकनीक फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ साथ बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक है। किसान मित्रों, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने के कई फायदे होते हैं। इनमें सब्जियां सर्दियों के मौसम में पाले और गर्मियों में तेज धूप से सुरक्षित रहती हैं। इससे मौसम और कीट रोग जनित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस तकनीक से खेती करके फसलों को आवारा पशुओं से भी बचाया जा सकता है और ग्रीन हाउस में सब्जियों के लिए अनुकूल मौसम रहने से इनके खराब होने का खतरा भी नहीं के बराबर रहता है। इससे किसानों को फसल खराब हो जाने की वजह से होने वाला आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ता है। तो किसान मित्र, आप भी पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के माध्यम से खेती करके नुकसान से बच सकते हैं और खेती से फायदा उठा सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं रविंद्र खालौर और किस्सा रहेगा द्रौपदी चीर हरण का।

किसान मित्रों, अभी आप रागनी सुन रहे थे। कलाकार थे रविंद्र खालोर और किस्सा था द्रौपदी चीर हरण का। किसान मित्रों, आप सभी चाहते हैं कि आपके खेत से अच्छा फसल उत्पादन हो, लेकिन उसके लिए खेत की मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। किसान मित्रों, पौधे के विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अधिक पैदावार और लाभ लेने के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना भी आवश्यक है। अब उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग कैसे किया जाए, तो इसके लिए तो मिट्टी की जांच की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो अंदाजे से तो हमारे किसान भाई कभी कोई खाद लगा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, वो भी लगा रहे हैं, जरूरत है वो भी लगा रहे हैं, लेकिन मिट्टी में सही मात्रा में खाद पहुंचे, सही पोषक तत्व पहुंचे और वो भी निश्चित मात्रा में, तो इसका पता तो लगेगा मिट्टी की जांच कराने के बाद। तो इसके लिए आप अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं और उसी के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन करें ताकि आपको अच्छी पैदावार मिले और गुणवत्तापूर्ण पैदावार मिले। किसान मित्रों, मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होती है तो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, तो खेती से बेहतर पैदावार और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना बहुत जरूरी है। और साथ ही मिट्टी की जांच से पता चल जाता है कि भूमि में किस पोषक तत्व की कमी है और किसकी अधिकता है। तो किसान मित्रों, आप भी अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और उसके अनुसार ही पोषक तत्वों का प्रबंधन करें ताकि आपको अपने खेत से अच्छा और बेहतर उत्पादन मिल सके। और अब किसान मित्रों, कार्यक्रम के आखिर में आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं सुनील चौहान।

सुनील चौहान द्वारा गाए गए इसी उपदेश के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: अरे भैया रामू।
1: हाँ भैया श्यामू।
0: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
1: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
0: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6000 रुपए में हो रही है।
1: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
2: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं, हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: तो सत्यवान के प्राणा के बदले यमराज ने 3 वचन दे दिए और 3 वचनों में शावर 3 है। अंधे मात पिता की आंखें और उनका राज वापस। दूसरे वचन में अपना भाई मांग लिया और तीसरे वचन में ये वरदान मांगा कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। तीनों वचनों के लिए यमराज ने कह दिया ऐसा ही होगा, लेकिन दोस्तों फिर पीछे चल देती है। महाराज, जब तुम मेरे प्राणनाथ के प्राण ले जा रहे हो तो मैं पुत्रवती भला कैसे हो सकती हूँ। दोस्तों प्राण वापिस कर देते हैं। यमराज हार गए सतीवीर के आगे और आज सत्यवान जीवित सावित्री के साथ वापिस जा रहे थे। कैसे सत्यवान उसकी बढ़ाई करते

ये प्रोग्राम जिसमें गायक कोशिंदर, वार्ताकार महाशर्षि पाल और संगीत दादा ऋषाल, हारमोनियम मास्टर हंसराज जी,

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: 10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया मुक्त भारत।
1: सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हिंदुस्तान की परंपरा यही रही है कि हिंदुस्तान में नारियों को पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन जब कहीं कहीं कोई घटना घट जाती है जहां नारी का अपमान होता है तो दिल बहुत दुखित होता है। सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं और बातें करते रहेंगे। यूं कहें कि कुछ खास बिंदुओं को हमने उठाया है और उस विषय पर हम बातें करेंगे, जैसे बेटियां हैं तो वंश है, प्रजनन अधिकार, इसके अंतर्गत बातें आती हैं भ्रूण हत्या, लिंगानुपात, बेटे होने पर उत्सव और रिवाज, दूसरा विषय बालिका या वधू, इसके अंतर्गत बात आती है बचपन का हनन, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, तीसरा विषय खतना, धर्म नहीं दर्द, इसके अंतर्गत बातें सामने आती हैं बाल उम्र में शारीरिक दर्द, रिवाज और विश्वास, कानूनी सलाह, पितृ सत्ता, असमान व्यवहार, असमान दीक्षा, बातें होंगी भेदभाव और समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, एक ऐसा विषय है माँ मुझे बाहर जाना है, इसके अंतर्गत बातें आती हैं कि घर और आस पड़ोस के दायरे, घर या घर के बाहर सवालिया सुरक्षा, विषय ये भी है कच्ची उम्र की शिक्षा यानी बदलती शारीरिक संरचना और किशोरावस्था में अपराधी मानसिकता से बचने हेतु सीखने योग्य बातें, कैसे बचे मनचलों से, बातें होंगी इंटरनेट का जाल, अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, ब्लैकमेल, रिश्तेदारों द्वारा छेड़खानी और चुप्पी, ये बातें होंगी कैसे बचे मनचलों के अंतर्गत, दहेज प्रथा या हत्या, इसके अंतर्गत बात सामने आती है दहेज प्रथा के दुष्परिणाम, सामाजिक हैसियत का दिखावा, अगला विषय मेरी पत्नी मेरा अधिकार यानी वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार, ये कुछ ऐसे विषय है, कुछ ऐसी थीम है जिसके अंतर्गत हम बातें आपके सामने लेकर आएंगे एक रिसर्च के माध्यम से। सुनो शारदा 90.8 FM ने हाथ मिलाया है रेडियो अमेठी के साथ और रेडियो अमेठी ने हाथ मिलाया है हमारे साथ यानी सुनो शारदा 90.8 FM के साथ एक समझौते के तहत एक दूसरे के कार्यक्रम हम यहां से प्रसारित कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम वो अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं। तो रेडियो एमिटी का धन्यवाद करते हुए आइए सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये खास कार्यक्रम।

खास कार्यक्रम हिंसा को नो, जिसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न जैसी कुरीतियों को समाज से दूर हटाना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। रेडियो एमजी 107.8 एफएम से मैं बोल रही हूँ श्रेया, और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंसा को नो। तो अपने आज के एपिसोड में हम बात करेंगे महिलाओं के अधिकारों के बारे में, लेकिन मैं आपको उससे पहले कुछ बताना चाहती हूँ। हमारा जो समाज है उसमें कुछ लोगों के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, मतलब शादी के बाद क्या होता है, कुछ हस्बैंड्स अपनी वाइफ पे शक करते हैं, रोक टोक करते हैं, उनका फोन चेक किया जाता है, बाहर आने जाने पर रोक लगा दी जाती है। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है। ऐसा मैंने एक लेडी के इंटरव्यू में सुना, मैं उनका इंटरव्यू ही ले रही थी हिंसा को नो के रेडियो शो के लिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार या छेड़छाड़ हुई है, काफी समय बीत जाने के बावजूद पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है। हमारे समाज में ऐसा भी देखा गया है कि ऑफिस में अक्सर ये ऐसा होता है कि महिलाओं को कम सैलरी मिलती है पुरुषों के मुकाबले, जबकि दोनों ने बराबर काम किया होता है। तो आज मैं इसीलिए महिलाओं के अधिकार बारे में बात करना चाहूंगी, ताकि उन्हें पता चले कि कौन से अधिकार हैं उनके पास में और इसके प्रति वो जागरूक हों। समानता का अधिकार, ये कानून सुनिश्चित करता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान जैसे किसी भी कारण से किसी से भेदभाव नहीं किया जाए। निजी स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार का मतलब है किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत कारावास या अन्य रूप से शारीरिक नियंत्रण से आजादी है, मतलब फिजिकल कंट्रोल कोई भी पर्सन किसी पे नहीं कर सकता, घर से बाहर आने जाने पे रोक टोक नहीं लगा सकता। महिलाओं को बोलने और खुद को एक्सप्रेस करने की पूरी आजादी है, पूरी फ्रीडम है, वो भारत के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकती हैं, उनको भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने और बसने की स्वतंत्रता है, किसी भी प्रकार का बिजनेस कर सकती हैं, ये अधिकार है महिलाओं के पास। पीड़ित और गवाहों के अधिकार के बारे में भी जान लेते हैं। बलात्कार एक आपराधिक दुर्व्यवहार है, इसलिए बलात्कार पीड़ित और गवाहों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। भय से सुरक्षा का अधिकार, संपत्ति और रोजगार की सुरक्षा का अधिकार, सम्मान और संवेदनशीलता से व्यवहार किए जाने का अधिकार, सलाहकार पाने का अधिकार आदि। भारत में जब भी महिला अकेली पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराने जाती है, तो उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर लिखे जाने का खतरा रहता है। कई ऐसे मामले भी देखे गए हैं जिनमें उसे अपमान झेलना पड़ा और शिकायत को दर्ज करने से मना कर दिया गया। एक महिला होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपको भी

0: फैसला दिया है कि बलात्कार या छेड़छाड़ की घटना होने और शिकायत दर्ज करने के बीच काफी वक्त बीत जाने के बाद भी एक महिला अपने खिलाफ यौन अपराध का मामला दर्ज करा सकती है। हर व्यस्क लड़की व हर महिला को कामकाज के बदले वेतन यानी सैलरी मिलने का अधिकार पुरुषों के बराबर है, ये महिला को पता होना चाहिए। अगर बात सैलरी की हो या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर किसी लेडी की डिलीवरी हुई है और वो ऑफिस में वर्क करती है तो डिलीवरी के 6 महीने तक महिला के वेतन यानी सैलरी में कोई कटौती नहीं की जा सकती और वो फिर से काम शुरू कर सकती है। काम पर हुए यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार आपको यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है। अगर हम बात करें राजनीतिक अधिकार की, शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है। अगर हम बात करें राजनीतिक अधिकार की तो हर महिला को ये हक है कि वो पार्टिसिपेट करे और वोट दे, यानी प्रत्येक महिला व व्यस्क लड़की को चुनाव की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भागीदारी करने और वोट देने का अधिकार प्राप्त है। वो जब चाहे जैसे इलेक्शन आते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती है और वोट दे सकती है, ये राइट है उसका, उसका पूरा अधिकार है। रात में गिरफ्तार ना होने का अधिकार, एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार, किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया यानी मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि किसी मामले में अगर कोई आरोपी महिला है तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर होता है वो किसी महिला या लेडी की प्रेजेंस में किया जाना चाहिए, वो महिला वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। संपत्ति पर अधिकार, जी हाँ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है। तो ये कुछ महिलाओं के अधिकार थे जो मैंने आप सबको बताए। मैं चाहती थी कि ये महिलाओं को पता रहे ताकि मुसीबत आने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। तो चलिए वक्त हो चला है एक छोटे से ड्रामा का, सुनाते हैं आपको एक ड्रामा।
1: तो दोस्तों चलिए आपको सुनाते हैं एक बहुत ही रोचक रेडियो ड्रामा जिसका नाम है बहू हो या बेटी, बेटी हो या बेटा, सबके अधिकार समान हैं। ये कहानी है अनुराधा की और उसके हक की, और इस लड़ाई में उसका साथ दिया उसकी सास ने, क्योंकि वो जानती हैं कि बेटा हो या बेटी, बहू हो या बेटी, सब समान हैं। अरे बहू अनुराधा, एक कप चाय तो ले आना। सुबह से 3 बार कह चुकी हूँ लेकिन एक कप चाय ना मिली मुझे।
2: जी माँ जी, ले आती हूँ माँ जी।
3: अनुराधा कहाँ हो, मेरा टिफिन तो लेकर आना।
2: जी जी ले आई, आपका टिफिन भी लाती हूँ।
3: जल्दी टिफिन लेकर आओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है।
2: बस 2 मिनट दे दीजिए, मैं टिफिन ला ही रही हूँ।
3: तुमसे कोई काम ठीक से तो होता नहीं है।
2: मुझे माफ कर दीजिए, आज देर हो गया थोड़ा सा।
3: अपनी माफी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए टिफिन आज, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ ऑफिस। हर बार का यही ड्रामा है, पता नहीं क्या करती रहती हो पूरा दिन।
1: ये सब सुन करके अनुराधा रोने लगती है और मोहित वो तो मजे से अपने ऑफिस चला जाता है और बोलता है,
3: आज ऑफिस में इतना सारा जरूरी काम है, इसको टाइम पे खत्म करना पड़ेगा मुझे।
4: मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम है क्या?
3: अरे तुमसे भी ज्यादा जरूरी कोई काम हो सकता है क्या?
4: अच्छा तो मतलब मैं तुम्हारी बीवी अनुराधा से भी ज्यादा जरूरी हूँ?
3: अरे क्या अनुराधा अनुराधा लगा रखा है, ये नाम सुन सुनकर मैं पक गया हूँ। अनुराधा
4: तो उसे डिवोर्स दे दो ना।
3: हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे लगता है कि अब उसे डिवोर्स देना ही पड़ेगा।
4: पर डिवोर्स के बाद तो तुम्हें उसे कुछ पैसे देने होंगे ना, ताकि वो अपना गुजारा कर सके।
3: अरे तुम्हें पता तो है वो कैसी है, वो तलाक के बाद कुछ गुजारा भत्ता मांगेगी ही नहीं, उसे इन सब चीजों का नहीं पता है, इतनी नॉलेज नहीं है उसे इन सब चीजों की। तुम चिंता मत करो, मुझे

0: कुछ नहीं देना पड़ेगा, वो चुपचाप पेपर्स पे साइन कर देगी।
1: पायल और मोहित डिवोर्स की बातें कर ही रहे होते हैं कि पीछे से अनुराधा, जो कि टिफिन देने के लिए आई होती है, सारी बात सुन लेती है और घर जाकर अपनी सास से सब कुछ बताती है। शाम को जब मोहित घर आता है तो उससे उसकी माँ बोलती है,
2: मोहित ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम मेरी बेटी जैसी बहू को तलाक दे रहे हो?
0: हाँ माँ, मेरे ऑफिस में एक लड़की है पायल, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, अनुराधा को डिवोर्स देना चाहता हूँ और इसमें आपको मेरा साथ देना चाहिए, आखिर मैं आपका बेटा हूँ।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, तू मेरा बेटा है, लेकिन मेरी बहू जिसने दिन रात मेरी सेवा की है, जब मैं बीमारी में थी तो दिन रात एक वही थी जो मेरे पास रहती थी, और तू ऑफिस के बहाने पायल से मिलने जाता था। तुम्हें तो अपना बेटा कहते हुए भी आज मुझे शर्म आती है, अब तुम मेरे बेटे नहीं हो, मुझे सिर्फ एक ही बेटी है अनुराधा, समझे? इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम उसके ऊपर मानसिक हिंसा करोगे, उससे उसका हक छीनोगे और मैं तुम्हारा इसमें साथ दूंगी, समझे? और अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। अनुराधा तुम अभी वकील से बात करो, उसको बुलाओ और डिवोर्स पेपर पे अभी के अभी साइन करो। अनुराधा जिसे अपनी शादीशुदा जिंदगी के टूटने का दुख तो था, लेकिन खुशी थी कि इन सब के बीच में उसकी सास उसके साथ एक दीवार के जैसे खड़ी थी। उसकी सास गांव की प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करती है और बाकी सारी प्रॉपर्टी अपनी बहू अनुराधा के नाम। मोहित हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है और इस बात को 5 साल बीत जाते हैं। इस दौरान अनुराधा ने खुद को संभाला और इसमें उसका साथ दिया उसकी सास ने। आज अनुराधा अपने घर और ऑफिस दोनों को बखूबी संभाल रही है, अपनी सास की भी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। और फिर एक दिन अनुराधा की नंद मीरा उसके घर आती है और अपनी माँ से बातचीत करती है। मीरा बोलती है,
3: काश भैया भी यहाँ पर होते तो कितना अच्छा होता, उनके साथ अच्छा नहीं हुआ।
1: मीरा तुझे पता है ना, तेरे भाई ने अनुराधा के साथ क्या किया, तू तो एक औरत है, तुझे तो ये बात समझ में आती होगी कि उसने तेरी भाभी को धोखा दिया है। शादी होने के बावजूद मोहित किसी पायल नाम की लड़की से प्यार करता था और हमेशा अनुराधा को उसने दबा के रखा, उसको मानसिक प्रताड़ना देता रहा, ऑफिस से आके अनुराधा पर चिल्लाता था, तुझे तो पता है कि मैंने भी ये सब कुछ सहा है, तेरे पिता ने जो मेरे साथ किया वो मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू या बेटी के साथ हो, तेरे पापा ऑफिस से आकर के शराब पीते, मुझे मारते पीटते। उस समय मैं चुप रही क्योंकि मुझे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं थी, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मैं अकेली थी, लेकिन अनुराधा को मैं अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसका साथ छोड़ा तो आगे आने वाली हर पीढ़ी चुपचाप ये सब सहती रहेगी और इसकी शुरुआत हमें आज करनी है, मैं अपनी बहू के साथ हमेशा रहूंगी। इसीलिए जब अनुराधा ने फैसला लिया कि वो तुम्हारे भाई के साथ नहीं रहना चाहती तो मैंने उसका साथ दिया, अपने साथ हिंसा नहीं होने देंगे और ये हमें खुद तय करना है, यही वजह थी कि मैंने उन दोनों का डिवोर्स करवाया।
3: भाभी तो बहुत हिम्मत वाली है, लेकिन आपने भाई को सिर्फ गांव वाला घर दिया और सब भाभी के नाम पे।
1: मेरी बहू ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरी बहू मेरे लिए बेटा है बेटा, और मेरी प्रॉपर्टी पे किसका क्या हक होगा ये मैं तय करूंगी। जब कानून ने हमें ये हक दिया है कि बेटी और बहू को प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए तो क्यों ना अपने इस अधिकार का मैं अपने हिसाब से पालन करूं?
3: माँ आपको भाभी को नहीं भाई को सपोर्ट करना चाहिए था।
1: ये मेरी बहू का अधिकार है और मैं ये किसी और को नहीं दूंगी, धोखा तो मेरे बेटे ने बहू को दिया है और यही बात सबको समझना पड़ेगा। और रही बात तलाक की, तो अगर तलाक नहीं होता तो भी मैं अपनी बहू को आधी प्रॉपर्टी देती, अगर बेटा पैसा कमाता है तो बहू भी तो घर चलाती है, अगर दोनों की जिम्मेदारियां बराबर हैं तो दोनों के अधिकार बराबर क्यों नहीं?
3: आपने सही कहा माँ, भाभी ने बहुत मेहनत की है तभी तो आज वो अपने घर और ऑफिस को इतने अच्छे से चला रही हैं।
1: तो दोस्तों ये थी कहानी अनुराधा की, लेकिन इस कहानी का जो हीरो है वो है अनुराधा की सास। जो उनके साथ हुआ घरेलू हिंसा, उन्होंने तय किया कि अब उस पे एक पूर्ण विराम लगेगा और हम सबको अपने आसपास या अपने घरों में होने वाली किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा पे ऐसे ही मजबूती से पूर्ण विराम लगाना है और कहना है हिंसा को नो। तो आइए सब एक साथ कहते हैं,
4: बहू हो या बेटी, बेटी हो या बेटा, सबके अधिकार समान हैं।
3: तो चलिए अब वक्त हो चला है लॉ एक्सपर्ट के पास जाने का। उनसे करते हैं बातचीत और ये जानते हैं कि अगर शादी के बाद कोई पुरुष अपनी पत्नी को प्रजनन का अधिकार, निजी स्वतंत्रता का अधिकार या ऐसे कुछ अधिकार नहीं देता है, उसे उसका हक नहीं देता है, महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसके संबंध में लॉ क्या कहता है, आइए जानते हैं सुमित्रा जी से।
5: जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के सारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करने की कोशिश करता है तो हम क्या किया करें, तो आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय संविधान 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें फंडामेंटल राइट्स में आपको बताना चाहूंगी, इक्वालिटी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट शामिल होते हैं। मुख्यतः बात तो यह है कि जब हमारा संविधान बनाया गया तो इस बात को ध्यान में रखा गया कि किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट्स को प्रिजर्व करना जो हमारा समाज है उसका दायित्व होता है। इसीलिए अगर कभी इन अधिकारों का हनन होता है तो क्या किया जाए, इस पर तो आपको बताना चाहूंगे कि आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज अ फंडामेंटल राइट, वो ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी। इसमें यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है कोर्ट्स को, और वो कहा गया है एक केस में कि इट इज अ वेरी डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर्व्स एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट प्रॉमिस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब यह है कि यह राइट अलाउ करता है सारे ही सिटीजंस को हमारे देश में कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं, और ये राइट एम्पावर करता है हायर जुडिशियरी को कि इन राइट्स का एनफोर्समेंट हो बाय इशूइंग वेरियस काइंड्स ऑफ रिट्स, और इसमें अगर व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उसको इक्वली कॉम्पेंसेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई काम करना चाहता है, उसको उसे काम करने नहीं दे रहा, उसका किसी महिला का हस्बैंड उसे काम करने नहीं दे रहा, या और भी टाइप की राइट्स जैसे मैंने आपको भी बताया उनका हनन हो रहा है, तो इक्वली उस पर्टिकुलर काम के लिए कोर्ट कॉम्पेंसेट करती है। इसीलिए बताना चाहूंगी कि आप अपने देश के कानून में विश्वास रखें। थैंक यू सो मच।
3: चलिए दोस्तों मुझे जाने की इजाजत दीजिए, और हाँ हिंसा को ना कहना ना भूलिएगा। नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कार्यक्रम हिंसा को नो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और आप लोग इसे अपने समुदाय के साथ भी साझा करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं।
6: कहो हिंसा को।
7: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। जिस विषय पर आज बात हुई, ऐसी तमाम विषय समय दर समय हम उठाते रहेंगे और आपके बीच लाते रहेंगे। इन खास जानकारियों को सुनना न भूलें। साथ ही साथ हम धन्यवाद कहना चाहेंगे रेडियो अमेठी का, जिसने हमें ये सहयोग दिया, और ये सहयोग हम भी ऐसे ही दूसरे स्टेशनों को समय दर समय दे रहे हैं क्योंकि वो भी हमारे खास कार्यक्रम अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं। तो ये खास जानकारी आपको कैसी लगी, 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
8: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: जन्मदिन मुबारक हो तारा।

0: अरे हमारे यहाँ तक तो काम वाली बाई या मम्मी उठाती है, ये अंकल कचरा क्यों उठा रहे
1: हैं? टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो हम सभी का काम है। अपा एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
3: ठीक है चलो, तो हो जाए कचरा पार।

0: अपने करेंगे कचरा पार्टी।
1: हाँ, हमें जाने की कोई भी जल्दी नहीं है।
2: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है। तो हो जाए कचरा पार्टी।
1: हो जाए।
3: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
2: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
1: सड़क पर यहाँ वहाँ कचरा फैलाओ तो कितनी बुरी बदबू आती है।
4: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
5: जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालो।
4: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
5: कचरा
4: ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा है।
2: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
5: ये सड़ सकता है, इसका मतलब ये गीला कचरा है।
4: बहुत अच्छे तरह। हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
6: इस गीले कचरे को कमरे में डाल के मिट्टी से ढक दें तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
4: तो अंकल, क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
6: नहीं चौधरी, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
5: वाह, कचरा भी आएगा तुम्हारा काम। तो ये गया गीले कचरे में।
1: और मेरे पास है सूखा कचरा।
4: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह घर पर ही सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया। और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
5: हजारों साल तक सड़ते नहीं
0: और खतरनाक भी होते हैं।
4: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह, अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो
5: या फिर कहीं शीशे के टुकड़े काम वाली दीदी या कूड़ा इकट्ठा करने वाले भैया को चुप कर दो।
6: इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल न करना पड़े।
4: और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार इसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
0: वाह, बार बार इस्तेमाल।
1: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
5: हाँ, आइडिया।
4: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है।
0: हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
7: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।
3: तो तुम सब कब कर रहे हो कचरा पार्टी?

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में।
1: और आप सबको अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी ने, और वो लिखते हैं,
1: सत्य बोलने से मन शांत रहता है और परेशानियां दूर होने लगती हैं। सत्य बोलने वाले व्यक्ति के जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर विचार के लिए। किसी ने सत्य ही कहा है, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता।
1: क्या बात, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और आइए सुनते हैं अब संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।

0: जो इस प्रकार से हैं।
1: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
0: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: छत्तीसगढ़ से योगिता टंडन। और
0: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाकसे जी।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। ये भी जाने श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक ऐसे आविष्कार के बारे में जिसे इतिहास में शायद सबसे अधिक लोकप्रियता मिली। बड़े तो क्या, बच्चे भी इसके दीवाने हैं। तो अजीत जी जरा अंदाजा तो लगाइए किसकी बात कर रही हूँ मैं।
0: विमलेश जी, मैं सोचता हूँ कि दुनिया में वैसे तो सभी आविष्कार अपनी अपनी जगह पर बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय आविष्कार है मोबाइल फोन।
1: बिल्कुल सही।
0: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन का आविष्कार किस देश में हुआ?
1: वो देश है अमेरिका। 1973 में मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने पहला मोबाइल फोन बनाया और इसका पेटेंट लेकर इतिहास में दर्ज कर दिया।
0: इसे नाम दिया गया मोटोरोला डायना TAC 8000X।
1: जी, अमेरिका के मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था।
0: श्रोताओं, अब आपको बताते हैं मोबाइल फोन द्वारा की गई पहली कॉल का किस्सा, जो इस प्रकार से है।
1: बात 3 अप्रैल 1973 की है। मार्टिन कूपर ने पहली बार मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रतिद्वंदी जोएल एंगल को फोन किया और कहा,
0: हेलो, कैन यू हियर मी?
1: श्रोताओ, मार्टिन के प्रतिद्वंदी जोएल को ये फोन सुनकर कोई जलन नहीं हुई।
0: वाह, कितनी अच्छी बात है। और जोएल ने कहा, माई फ्रेंड, यू हैव क्रिएटेड ग्रेट हिस्ट्री, ह्यूमन रेस विल रिमेम्बर यू विद थैंक्स, कांग्रेचुलेशंस।
1: मित्रों, कितनी बड़ी सीख मिलती है इस घटना से। यदि कुछ अच्छा है तो चाहे किसी ने भी किया है, हमें बिना किसी जलन के उदारता से प्रशंसा करनी चाहिए।
0: वाह, क्या बात है। यदि कुछ अच्छा है तो चाहे किसी ने भी किया है, हमें क्या करना चाहिए?
1: हमें प्रशंसा करनी चाहिए।
0: श्रोताओं, उन दिनों मोबाइल फोन द्वारा फोन किया जाना एक महान और अद्भुत चमत्कार से कम नहीं था। जरा सोचिए तो, जब पूरी दुनिया लैंडलाइन टेलीफोन्स पर निर्भर थी, उस समय एक ऐसा उपकरण तैयार करना
1: जिसे आप अपनी जेब में रख सकें, कभी भी कहीं भी कॉल कर सकें,
0: वाकई ये अविश्वसनीय था, अद्भुत था। लेकिन विमलेश जी, मोबाइल फोन के आविष्कार की मुख्य वजह क्या थी?
1: अजीत जी, मोबाइल फोन का आविष्कार करने का मुख्य उद्देश्य था लोगों को एक जगह से बंधे रहने की बाध्यता या मजबूरी से मुक्त करना, और कुछ हद तक सैनिक सुरक्षा भी।
0: श्रोताओं, लैंडलाइन फोन के कारण उस समय टेलीफोन सिर्फ एक जगह पर सीमित था।
1: जी,
0: लोग यात्रा करते थे तो संपर्क नहीं कर सकते थे।
1: बिल्कुल।
0: इसी समस्या को हल करने के लिए एक ऐसा उपकरण बनाने का विचार आया जो वायरलेस हो और पोर्टेबल हो।
1: बिल्कुल। श्रोताओं, आप ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि शुरुआत में मोबाइल फोन कैसा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1973 में बनाए गए पहले मोबाइल फोन का वजन लगभग 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम था। ये करीब 10 इंच लंबा और इसे चार्ज करने में कम से कम 10 घंटे लगते थे, जबकि बात करने का समय सिर्फ 30 मिनट था।
0: आशुताओं, एक बात और आपको बता दें, इसकी कीमत भी उन दिनों बहुत ज्यादा थी, लगभग $3,995 यानी लगभग 3.5 लाख रुपए। और ये फोन सिर्फ अमीर और बड़े व्यापारियों के लिए एक विलास की वस्तु था।
1: तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो प्रश्न है,
1: शुरुआत में मोबाइल का वजन कितना था, इसकी लंबाई कितनी थी और इसे चार्ज करने में कितना समय लगता था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं।
0: शुरुआत में मोबाइल फोन का वजन कितना था, इसकी लंबाई कितनी थी और इसे चार्ज करने में कितना समय लगता था।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं।
0: हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: और अब सुनते हैं आज का कार्यक्रम, शीर्षक है जगदीश चंद्र बसु।
0: श्रोताओं, जगदीश चंद्र बसु, इस नाम को भला कौन नहीं जानता। वे दुनिया के पहले वैज्ञानिक या जीव विज्ञानी हैं जिन्होंने शोध करके ये सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं, पीड़ा और आनंद की अनुभूति वैसी ही होती है जैसी मनुष्यों में।
1: जी, लेकिन कैसे किया उन्होंने शोध, आइए जानते हैं।
2: संध्या का समय था। एक बालक अपने बगीचे में गेंद से खेल रहा था। गेंद उछलकर लताओं में अटक गई। बालक एक लकड़ी से उसे गिराने लगा। तभी उसकी मां ने कहा, बेटा, पौधे सो गए हैं,

यही बालक जब बड़ा हुआ तब उसने पेड़ पौधों के बारे में कई विचित्र बातों का पता लगाया। उसने खोज की कि पेड़ पौधों के जीवन की बहुत सी बातें हमारे जीवन की ही तरह होती हैं। इस नई खोज से संसार आश्चर्यचकित रह गया।

जगदीश चंद्र का जन्म 30 नवंबर 1858 में ढाका जिले के मेमन सिंह नामक स्थान पर हुआ था। बालक जगदीश पहले अपने गांव की पाठशाला में पढ़ने गया। पाठशाला में किसानों और मच्छुओं के बेटे उसके साथ ही थे। किसानों के बालक खेतीबाड़ी और पौधों के बारे में बातें करते रहते थे। इससे बचपन में ही जगदीश चंद्र की रुचि पेड़ पौधों में हो गई। तेरह वर्ष की उम्र में जगदीश चंद्र को कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहां की पढ़ाई समाप्त कर वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त की। इंग्लैंड में उन्हें कुछ वैज्ञानिकों के साथ कार्य करने का अवसर मिला, जिससे नई नई खोज करने की उनकी इच्छा और भी तीव्र हो उठी। पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बसु स्वदेश लौट आए। यहां आते ही कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था। जगदीश चंद्र को अंग्रेज अध्यापकों से बहुत कम वेतन दिया गया। इससे उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने कहा, या तो मुझे पूरा वेतन दिया जाए या मैं बिना वेतन के ही काम करूंगा। 3 वर्ष तक वे बिना वेतन कार्य करते रहे। पैसे की तंगी के कारण उनका जीवन काफी कठिनाई से बीत रहा था, पर वे झुके नहीं। अंत में कॉलेज के अधिकारियों को ही झुकना पड़ा। अंग्रेज अध्यापकों के वेतन के बराबर पूरे 3 वर्ष का वेतन उन्हें सम्मान सहित दिया गया। विज्ञान ही बसु का जीवन था। ज्ञान प्राप्त करने की उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि वे इसके लिए हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने को तैयार थे। उन्होंने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया और फिर सदा उसकी ओर बढ़ते गए। धैर्य, साहस और लगन के साथ काम करना ही उनकी सफलता की कुंजी थी।

जगदीश चंद्र बसु की पहली वैज्ञानिक खोज बेतार के तार से संकेत भेजने के संबंध में थी। उन्होंने

अपने बनाए यंत्रों द्वारा रेडियो तरंगों को ईंटों की मोटी दीवार से गुजारकर दिखाया। ये तरंगें 75 फुट की दूरी तक गईं, जिससे वहां रखी घंटी बज उठी। इस प्रयोग का प्रदर्शन उन्होंने सन 1895 में बंगाल के गवर्नर के सामने किया। धातुओं के विषय में जगदीश चंद्र ने कई खोजें की। उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि निर्जीव धातु भी परिश्रम करने से थक जाती है। जगदीश चंद्र की सबसे अद्भुत खोज पेड़ पौधों के विषय में है। ये तो तुम जानते ही हो कि बचपन से ही वे पेड़ पौधों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्होंने पता लगाया कि पेड़ पौधों में प्राण होते हैं, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, परंतु लोगों ने उनकी इस बात पर विश्वास नहीं किया। उस समय ऐसे यंत्र नहीं थे जिनसे पेड़ पौधों की भीतरी क्रियाओं को दिखाया जा सके। उन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए स्वयं कुछ यंत्र बनाए। उनमें से एक यंत्र था फस्कोग्राफ, दूसरा यंत्र था रेजोनेंस रिकॉर्डर। फस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि नापने का यंत्र था, जबकि रेजोनेंस रिकॉर्डर से यह ज्ञात हो जाता था कि चोट लगने पर और मरते समय पौधे भी कांपने लगते हैं। डॉक्टर बसु ने पौधों के कष्ट और उनकी मृत्यु के दृश्य पर्दे पर दिखाए। उन्होंने जीवित पौधे में विद्युत की एक हल्की सी लहर दौड़ाई। पर्दे पर पौधे का कांपना और तड़पना साफ साफ दिखाई देने लगा। धीरे धीरे पौधा निर्जीव हो गया। ये देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनकी आश्चर्यजनक खोजों, आविष्कारों तथा प्रयोगों को देखकर यूरोप के लोग उन्हें पूर्व का जादूगर कहने लगे। तुम स्वयं भी प्रयोग द्वारा कुछ बातें जान सकते हो, जैसे छुई मुई का पौधा हाथ लगाते ही मुरझाने लगता है और फिर थोड़ी देर में पहले जैसा हो जाता है। वनस्पति जगत की इन खोजों के कारण डॉक्टर बसु सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया।

रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपनी महत्वपूर्ण खोजों का प्रदर्शन करने तथा व्याख्यान देने के लिए कई बार इंग्लैंड बुलाया। पेरिस में डॉक्टर बसु का भाषण सुनने वालों में स्वामी विवेकानंद भी थे। जब हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा तो उन्होंने डॉक्टर बसु को गले से लगा लिया और भारत का वीर पुत्र कहकर उनकी प्रशंसा की।

0: डॉक्टर बसु का विचार था कि विज्ञान को सरल भाषा में लिखा जाए। उन्होंने कई बार जन साधारण को बांग्ला भाषा में अपनी खोजों के बारे में बताया। बच्चों की सभाओं में भी उन्होंने भाषण दिए और बड़े रोचक ढंग से उन्हें विज्ञान का परिचय दिया। बीच बीच में वे हंसी मजाक भी करते जाते, जिससे बच्चों का मनोरंजन भी हो और वे कुछ सीख भी लें। पेड़ पौधों के विषय में डॉक्टर बसु की इन खोजों से जर्मन वैज्ञानिक इतने प्रभावित हुए कि वे उन्हें एक पूरा विश्वविद्यालय सौंपने को तैयार हो गए। परंतु डॉक्टर बसु ने उनसे कहा, मेरा कार्यक्षेत्र भारत ही रहेगा और मैं अपने देश के उसी महाविद्यालय में काम करता रहूंगा जिसमें मैंने उस समय काम करना शुरू किया था जब मुझे कोई जानता भी नहीं था। यह था डॉक्टर बसु का देश प्रेम। प्रेसिडेंसी कॉलेज से अवकाश प्राप्त करने पर उन्होंने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। उनकी बड़ी इच्छा थी कि भारतवर्ष में ऐसी अनेक विज्ञान संस्थाएं खुल जाएं जिससे हमारे विद्यार्थियों को विदेश जाने की जरूरत ना पड़े। सन 1937 में इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। डॉक्टर बसु की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के लिए संसार उन्हें सदा याद रखेगा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जगदीश चंद्र बोस। आशा है कि आपको इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत सारी रोचक जानकारियां प्राप्त हुई होंगी।
2: और अब सुनते हैं एक रोचक सामान्य मानसिक गणित पर आधारित कार्यक्रम, कितना हल्का कितना भारी।
3: नमस्ते बच्चों।
4: नमस्ते
5: नमस्ते।
6: अरे भाई, आज तो तुम लोग बहुत जल्दी आ गए।
4: कहानी भी तो सुननी है। हाँ। पर भैया, आज दीदी क्यों नहीं आई?
6: हाँ, ये बात है।
7: अनंत, लो मैं भी आ गई। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बच्चों?
6: बढ़िया हो ना?
7: तो अनंत, आज तुमने बच्चों को बताया कि हम इन्हें कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं?
6: बस वही तो बताने वाला था। बच्चों, आज हम सुनाएंगे एक घोड़े की कहानी।
4: घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है ना।
6: हाँ।
4: मैं एक बार घोड़े पे बैठा भी था।
7: अच्छा? अच्छा, बस एक ऐसा ही घोड़ा था जैजू और मन्नू के पास।
4: जैजू मन्नू कौन थे?
6: बच्चों, जैजू और मन्नू बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। और उनके पास था एक घोड़ा।
4: घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था।
7: बहुत तेज।
6: अरे वो तो बहुत ही ताकतवर भी था और बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा घोड़ा था। और पता है वो 700 किलोग्राम भार उठा सकता था।
8: 700 किलोग्राम?
6: हाँ, और वो भी बड़े आराम से।
4: 700 किलोग्राम?
6: हाँ।
4: इतना ज्यादा उठा लेता था वो घोड़ा?
6: हाँ श्रेया, अरे वो तो बहुत ताकतवर था,
7: लेकिन वो थोड़ा आलसी भी था। आलसी?
6: हाँ बच्चों, काम करने का उसका मन ही नहीं करता था। वो तो बस सोता रहता था घोड़े बेचकर।
4: पर वो तो खुद ही एक घोड़ा था।
6: लेकिन बच्चों, ये तो कहावत है ना, घोड़े बेच के सोना है।
4: फिर क्या हुआ?
7: फिर एक बार जैजू और मन्नू अपना मकान बदल रहे थे। वो घर का सारा सामान घोड़ा गाड़ी में लादने लगे।
6: और फिर जैजू और मन्नू के पिताजी ने कहा, हाँ,
9: सबसे पहले इस पानी की टंकी को रख देता हूँ घोड़ा गाड़ी पर।
6: फिर जैजू और मन्नू की मम्मी बोली,
3: ये रहे 5 बोरी गेहूं, इन्हें भी रख देती हूँ।
5: अरे अरे भाई, ये 3 मेज तो रह गए। अरे पापा।
9: अरे बेटा, ले आ ले आ।
6: और घोड़ा कहने लगा,
10: अरे इतना भार, अरे मैं कैसे उठाऊं,
9: पहले ही बहुत थक गया हूँ।
3: अरे रुको रुको, 4 कुर्सियाँ भी बाकी हैं।
7: और उसके बाद जैजू और मन्नू ने 4 कुर्सियाँ, 1 अलमारी, 2 गद्दे, 3 बोरी चावल और रखे।
6: तब घोड़ा बोला,
10: अरे इतना भार।
7: अरे रुको रुको रुको, अभी तो और भी सामान है। और तब जैजू और मन्नू ने 1 बांस की सीढ़ी, कुछ और बर्तन भी रख दिए।
6: और बच्चों, घोड़ा बोला,
10: अरे अरे अब मैं और नहीं उठा सकता इतना भार। अरे इतना सारा सामान, आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरे सिर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे
4: घोड़ा बोला, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है। फिर क्या हुआ?
7: और तब जैजू और मन्नू के पापा ने उनसे कहा,
9: जैजू मन्नू।
5: जी पिताजी।
11: जी पिताजी।
9: भाई लगता है घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है। अरे वो 700 किलोग्राम से ज्यादा भार नहीं उठा सकता।
4: वो बहुत भारी हो गया था।
12: क्या वो 1000 किलोग्राम हो गया था?
7: अरे रुको रुको, पहले तो जैजू और मन्नू के पापा ने उन्हें सामान के बारे में बताया, वजन के बारे में जानकारी दी, और फिर जैजू और मन्नू सामान का भार जोड़ने लगे।
6: हाँ बच्चों, तुम भी जैजू और मन्नू का साथ दो और उनके साथ मिलकर सामान का भार जोड़ो।
8: ठीक है।
6: तो 1 गेहूं की बोरी का वजन है 100 किलोग्राम। हाँ, और 1 चावल की बोरी और 1 अलमारी मिलाकर हुई 105 किलोग्राम।
8: 105 किलोग्राम।
7: तो बच्चों बताओ, कुल कितना भार हुआ? 100 और 105 किलोग्राम।
8: 205।
6: 205 क्या?
8: ग्राम।
6: सिर्फ ग्राम?
8: किलोग्राम।
6: शाबाश, ये हुई ना बात, 205 किलोग्राम। हाँ, तो अब बारी आती है कुर्सी की। 1 कुर्सी का भार है 5 किलोग्राम। कितने किलोग्राम है?
8: 5 किलोग्राम।
6: और पहले जो भार था वो था 205 किलोग्राम। तो अब हमने इसमें 5 किलोग्राम और जोड़े तो कितना भार हो गया?
8: 210 किलोग्राम।
6: शाबाश, इसी बात पे हो जाए ताली। हाँ तो भाई, अब बारी आती है पानी की टंकी की। और जानते हो पानी की टंकी का भार कितना है?
8: कितना है?
6: 50 किलोग्राम।
8: 50 किलोग्राम।
6: हाँ, तो अब बताओ कुल मिलाकर कितने किलोग्राम हुए? अभी तक भार था 210 किलोग्राम, उसमें हमने पानी की टंकी का भार जोड़ दिया, यानी कि 50 किलोग्राम जोड़ दिया। तो कुल मिलाकर कितने किलोग्राम भार हो गया?
8: 235 किलोग्राम।
6: अरे नहीं बचवा, 235 नहीं, 210 किलोग्राम और 50 किलोग्राम पानी की टंकी का भार मिलाया तो कुल मिला के कितना भार हो गया?
8: 260 किलोग्राम।
6: शाबाश, इसी बात पर बजाओ ताली। तो 260 किलोग्राम के बाद आया 10 किलोग्राम का मेज।
8: 270 ग्राम।
6: सिर्फ ग्राम?
8: किलोग्राम।
6: शाबाश, ये हुई ना बात, किलोग्राम।
7: और अब बारी आती है गद्दे की।
6: भाई एक गद्दा है 20 किलोग्राम का।
8: 290 किलोग्राम।
6: क्या बात है, बच्चे वैसे बहुत होशियार हो गए हैं।
7: बहुत होशियार।
6: अब बारी आती है बांस की सीढ़ी की, जिसका भार है 10 किलोग्राम।
7: तो बच्चों अब बताओ कुल कितना भार हुआ?
6: यानी 290 किलोग्राम पहले और अब 10 किलोग्राम मिलके हो गया
8: 300 किलोग्राम।
7: बिल्कुल ठीक बताया,
6: 300 किलोग्राम। अच्छा बर्तन तो रह गए है ना?
8: हाँ।
6: तो बर्तन हुए 10 किलोग्राम के।
8: 310 किलोग्राम।
6: हाँ, 310 किलोग्राम।
7: वाह वाह वाह। तो भाई ये तो सब बच्चों ने मिलकर बता दिया।
6: क्या बात है, क्या ताली।
7: तो बच्चों अब ये बताओ, 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कम हुआ या ज्यादा?
8: कम।
6: बच्चों जैजू और मन्नू ने कहा,
10: अरे घोड़े भाई, ये तो बस 310 किलोग्राम है, तुम तो 700 किलोग्राम भार उठा सकते हो।
6: घोड़ा शर्माने लगा और बोला,
10: अरे अरे मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ।
4: हाँ? मेरा तो सर दर्द भी नहीं हो रहा। हाँ? मेरे को टांग भी नहीं दर्द।
10: अरे अरे ये तो बहुत ही हल्का है। अरे मैं अभी ले चलता हूँ। जैजू और मनु, अरे तुम भी बैठ जाओ घोड़ा गाड़ी पर, बैठ जाओ शाबाश। और हाँ सुनो सुनो, अरे पापा को भी तो बिठाओ। हाँ
4: मम्मी को भी तो बिठाओ।
10: अरे हाँ, अरे बुलाओ भी मम्मी को भी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अब मैं सर पर दौड़ लगाता हूँ।
7: अरे अनंत रुको रुको रुको भाई, यही रोक दो अपनी घोड़ा गाड़ी को। कुछ और भी बाकी है।
6: अरे आकृति क्या बाकी है भाई?
7: आज का सवाल।
6: सही याद दिलाया तुमने। तो बच्चों आज का सवाल है, 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितना कम है, यानी कितने किलोग्राम कम है? सवाल एक बार फिर सुन लो, 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितने किलोग्राम कम है? तो घर जाकर सोचो और पता लगाओ, लेकिन जाने से पहले बजाओ ताली।
1: कितना हल्का कितना भारी, अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम। अब हम आज का अपना प्रसारण यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नाम तो सुना ही होगा।
0: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन, सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं RJ साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस RJ, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने, उनसे बात की AI के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं RJ साइमा को खुशबू के साथ।
3: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली RJ मौजूद है, RJ साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन AI के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो AI के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल है, आप इसे कैसे देखती है?
4: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
3: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है, और इसे कैसे देखते हैं
4: आप? हाँ, ये बहुत खौफनाक है, और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती, और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
3: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है, और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
4: एक इंसान को व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है, जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
3: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है, लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
4: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए, और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इंपैक्ट क्रिएट कर सके, और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
0: भाई बिल्कुल सही कहा आरजी साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
2: Hi everyone, this is Dania Doshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगे बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @ 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माँ जी, मुझे टीबी है।
1: टीबी और छुपा कर रखा?
2: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरे। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 31वीं कड़ी जलवायु। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि कृत्रिम या बनावटी बारिश कुछ रसायनों की मदद से एक निश्चित क्षेत्र में की जाती है। आज मौसम में परिवर्तन करने से ज्यादा जरूरी है महासागरों और वायुमंडल प्रणाली को दूषित होने से बचाना, क्योंकि तापमान में थोड़ी सी भी वृद्धि भयानक तबाही ला सकती है। तो लीजिए आगे सुनिए विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 31वीं कड़ी जल

0: मानव, मानव कहाँ है तू? ओहो, कहाँ गया होगा ये? यहाँ भी नहीं है, उधर देखती हूँ। अरे यहाँ भी नहीं है। मानव, ओ तू यहाँ बैठा है और मैं कहाँ कहाँ तुझे ढूंढाई, और तू यहाँ पिछवाड़े वाले बगीचे में अकेला बैठा है, यहाँ क्या कर रहा है? अरे बोलता क्यों नहीं, क्या कर रहा था? अरे बता ना क्या हुआ, कुछ बोलता क्यों नहीं?
1: कुछ नहीं दीदी।
0: अरे मानव क्या हुआ, तू तो बड़ा दुखी दिख रहा है। इधर आ, इधर आ, इधर आ मेरे प्यारे भाई, चल अब बता क्या हुआ।
1: दीदी वो जो दो पेड़ मैंने बगीचे में लगाए थे ना।
0: अच्छा अच्छा, वो ऑर्किड का पौधा और वो सेब का?
1: हाँ हाँ वही, वो दोनों मर गए।
0: ओहो तो ये बात है। अरे बुद्धू तुझे कितना मना किया था कि ये पौधे मत खरीद, ये अपने यहाँ नहीं चलेंगे, पर तूने तो वो रोना पीटना मचाया कि आखिर पापा को तुझे ये पौधे खरीद के देने ही पड़े।
1: लेकिन दीदी मैं कितनी मेहनत से उनको यहाँ तक लेके आया था और कितने प्यार से मैंने उन्हें लगाया था।
0: पर मानव सेब और ऑर्किड के पौधे हमारे यहाँ नहीं पनप सकते।
1: क्यों
0: नहीं पनप सकते, कह दिया ना।
1: लेकिन क्यों?
0: इसलिए कि अगर पनप सकते होते तो सेब दूसरे राज्यों से क्यों मंगाए जाते, अपने यहाँ क्यों ना पैदा होते और आलू के भाव बिकते।
1: मगर हमारे यहाँ सेब क्यों नहीं हो सकता?
2: क्या नहीं हो सकता मानव?
0: अरे पापा आप, आपसे इसने जिद करके वहाँ श्रीनगर में सेब का जो पौधा खरीदवाया था ना, वो यहाँ मर गया, उसी पर मुंह बनाकर बैठा है ये मानव।
2: अरे बेटा उसे तो मरना ही था, वो यहाँ कैसे पनप सकता था?
1: वो क्यों पापा?
2: बेटा क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु वैसी नहीं है जैसी कि सेब के पेड़ या ऑर्किड के पौधे को पनपने के लिए चाहिए।
1: ये जलवायु है क्या?
0: वही मौसम, जहाँ सेब होते हैं वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, हमारे यहाँ नहीं पड़ती।
3: हाँ। नहीं नहीं नहीं सृष्टि, जलवायु और मौसम दोनों एक नहीं है।
0: वो क्यों विवेक भैया?
3: अरे सृष्टि देखो, आज जैसे सर्दी है, कोहरा छाया हुआ है, कल धूप निकल आए तो मौसम बदल जाएगा, इस तरह मौसम बदलता रहता है।
0: अच्छा, हमारे देश का मौसम कुछ महीनों बाद बदल जाता है, सर्दी के बाद गर्मी फिर बरसात।
3: हाँ बिल्कुल, मौसम महीनों में क्या एक दिन में ही कई बार बदल सकता है, जबकि कहीं कहीं की जलवायु को बदलने में हजारों लाखों साल लग सकते हैं।
1: लाखों साल?
0: इसका मतलब हम जो टीवी रेडियो या समाचार पत्रों में पढ़ते सुनते हैं वो मौसम के बारे में होता है, जलवायु के बारे में नहीं।
3: हाँ क्योंकि जलवायु इतनी आसानी से परिवर्तित होती नहीं।
0: पर जलवायु से जीवों में तो परिवर्तन आ सकते हैं, है ना विवेक भैया?
3: हाँ यही तो बात है, मौसम से हम निपट सकते हैं।
1: मतलब?
3: मतलब मौसम वहाँ के जीवधारियों के रहन सहन, खान पान, प्रजनन आदि को भी प्रभावित कर सकता है।
2: और जलवायु के बारे में भी तो बताओ।
3: आप तो जानते ही हैं, जलवायु तो जीवधारियों के पूरे वंश को प्रभावित कर सकती है।
2: कौन जीवधारी कहाँ पनपेगा ये किसी जगह

0: मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, फिर तो सफाई का है कि दे रहा है। और अब आया है तो चाय पीकर तो तू जाएगा ही है।
1: अरे भाई अब तुम इतना कह रहे हो तो फिर अब पीनी ही पड़ेगी।
0: हाँ हाँ, ये एहसान भी मुझ पर ही सही है।
2: अरे वसुधा सुनती हो?
3: क्या है?
2: अरे पवन आया है, मौसम विभाग वाला अपना पड़ोसी।
3: चाय तो ये पीकर ही जाएगा है ना। इस उम्र में भी आप लोगों को एक दूसरे की टांग खींचने में बहुत मजा आता है।
1: इस उम्र में क्या कह दिया, ये तो आपने सारा कबाड़ा ही कर दिया। अरे भाई मैं और सूर्य प्रकाश तो अभी जवान है।
2: क्या बात कह दी तूने तो भाई, फिर तो पकौड़े भी खिलाएंगे।
1: क्या बात है।
3: अच्छा अच्छा चलिए जवान लोग अंदर चलिए।

0: हाँ तो सूर्य प्रकाश।
1: भवन अंकल आप भूल बहुत जल्दी जाते हैं।
0: अरे तो भाई अभी सब लोगों को बैठ तो जाने दो। मानव बेटा तू इधर आ मेरे पास, और विवेक तू उस मानव वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जा। हाँ तो सृष्टि,
1: जलवायु।
0: हाँ जलवायु, इस क्षेत्र में आम तौर पर वातावरण की क्या स्थिति रहती है, तापक्रम कैसा रहता है, पानी कितना और कब बरसता है, हवाएं कैसी और किस दिशा में चलती हैं, धूप वहाँ कितनी तेज होती है और दिन में कितने घंटे तक रहती है, बर्फ पड़ती है कि नहीं, और अगर पड़ती है तो कितने दिन तक उस क्षेत्र को ढके रहती है, इस सब को काफी लंबे समय तक देखकर उसका जो निष्कर्ष निकलता है उसे कहते हैं जलवायु।
2: पर अंकल लंबे समय तक।
0: हाँ विवेक, मानकों के आधार पर 35 वर्ष के मौसम संबंधी इन आंकड़ों का अध्ययन करके उनसे जो निष्कर्ष निकलता है उसे मानते हैं वहाँ की जलवायु।
1: 35 साल।
0: हाँ मानव, काफी लंबा समय है ये, है ना? अतः अब कुछ लोग ये भी मानने लगे हैं कि 10 साल तक के मौसम संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करके भी किसी जगह की जलवायु का निर्धारण किया जा सकता है।
1: अच्छा। मतलब ये कि किसी जगह के लंबे समय का औसत मौसम ही उस जगह की जलवायु कहलाता है।
0: अब तुम ठीक समझे सृष्टि।
3: और इसका मतलब ये कि किसी जगह की जलवायु बहुत सारे परिवर्तनों से मिलकर बनती है।
0: बिल्कुल सूर्य प्रकाश, ये बात तो है भाई, बहुत सारे कारक मिलकर किसी जगह की जलवायु का निर्धारण करते हैं।
2: अंकल बहुत सारे कारक, जैसे
0: तुम्हारे पापा, मतलब कि सूर्य को ही ले लो।
4: नहीं पवन जी, सूर्य को नहीं, अभी तो इस चाय को ही ले लीजिए।
0: अरे वाह वसुधा भाभी, वाह, यू आर ग्रेट भाभी।
3: देखा देखा देखा बच्चों, वसुधा की चाय ने कैसे बदल दिया पवन की बातों का मौसम।
0: अरे भाई मौसम ही तो बदला है ना सूर्य प्रकाश, जलवायु नहीं।
3: अरे जलवायु भी बदल जाएगी जब वसुधा पकौड़ियाँ खिलाएगी।
0: नहीं, नहीं नहीं नहीं, तब भी नहीं, क्योंकि मौसम में जल्दी जल्दी होने वाले इन परिवर्तनों का जलवायु पर कोई असर नहीं पड़ता भाई, रोजमर्रा की घटनाओं से मौसम बदलते हैं जलवायु नहीं। अभी चाय पी जाए।
3: तुम भी लो, लो, लो, लो, लो, लो।
0: हाँ तो भाई क्या कह रहा था मैं?
1: सूर्य।
0: सूर्य सूर्य ही सारी पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।
3: हाँ इसीलिए किसी जगह की जलवायु के निर्माण में सूर्य प्रकाश, नहीं क्या, सूर्य, सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है।
0: सूर्य प्रकाश, सूर्य अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है भाई, हमें तो उसका 1/2 अरबवां भाग ही मिल पाता है, फिर भी बच्चों जानते हो ये कितनी होती है?
1: कितनी?
0: 230 खरब अश्व शक्ति प्रति मिनट।
1: 230 खरब अश्व शक्ति।
0: हाँ अगर हम इस सारी ऊर्जा को प्रयोग कर सकें तो 1 मिनट में सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा से पृथ्वी वासियों का 2 बरस तक का काम चल सकता है।
2: अंकल मैंने भी कहीं पढ़ा है कि सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली इस ऊर्जा में अगर 13% की भी कमी हो जाए तो सारी पृथ्वी करीब 1 मील मोटी बर्फ की तह के नीचे दब सकती है।
1: और अगर इस ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाए तो
2: सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा में 30% की बढ़त से ही पृथ्वी पर हर जीवित वस्तु जलकर राख बन सकती है।
0: करीब करीब ठीक ही कह रहे हो तुम विवेक, ये सूर्य पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में और इसे हमारे रहने लायक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
3: भाई, तभी तो लोग हमें देवता, मतलब सूर्य को देवता मानते हैं।
1: पर अंकल सूर्य से तो ये गर्मी, मेरा मतलब ऊर्जा, हमें धूप के रूप में मिलती है ना?
0: हाँ मानव बेटा, अगर वैज्ञानिक भाषा

0: कहें तो सूर्य से ये ऊर्जा हमें तीन प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मिलती है। विवेक, तुम जानते हो कि कौन सी?
1: हाँ हाँ अंकल, जानता हूँ। एक तो पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट तरंगे, दूसरे दिखाई देने वाले प्रकाश की तरंगों के रूप में, और तीसरे अवरक्त या इंफ्रारेड तरंगों के रूप में।
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने विवेक। पर जैसे ही ये तरंगे वायुमंडल की ऊपरी सतह तक पहुंचती हैं, तो इनका लगभग एक तिहाई हिस्सा बादलों, सूक्ष्म धूल कणों और गैसों के अणुओं द्वारा वापस परावर्तित कर दिया जाता है।
2: सत्यानाश, कितनी सारी ऊर्जा बेकार में गई। नहीं तो
3: नहीं मानव, अगर ये ऊर्जा वापस परावर्तित ना होती तो पृथ्वी पर जीवन का हर रूप जलकर राख हो गया होता।
2: तुम्हें कैसे मालूम दीदी?
3: अरे बुद्धू, अभी विवेक भैया ने नहीं बताया था कि पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली ऊर्जा में अगर 30% की भी बढ़ोतरी हो जाए तो पृथ्वी का हर जीवित प्राणी जलकर राख हो जाएगा।
4: देखा पवन, सृष्टि बेटी की याददाश्त।
0: सृष्टि बेटा, जितनी भी ऊर्जा अब वायुमंडल से गुजरती है उसका करीब 15% हिस्सा वायुमंडल की ओजोन, धूल कणों, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों द्वारा सोख लिया जाता है।
4: हाँ, और इसका मतलब है कि सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच पाने वाली ऊर्जा का आधा हिस्सा ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है।
0: क्या खूब कही भाई, हिसाब ही तो तुम पक्के।
4: वो तो
0: करीब 51% ऊर्जा ही इस तरह धरती की सतह तक पहुंच पाती है।
1: और यही ऊर्जा प्रभावित करती है जलवायु को, है ना?
0: हाँ विवेक, जब सौर ऊर्जा की ये किरणें पृथ्वी की सतह पर चट्टान, रेत, मिट्टी और पानी आदि से टकराती है ना, तो ये उस पदार्थ के अणुओं को गतिशील कर देती हैं, जिससे हमें मिलती है गर्मी या ऊष्मा।
3: और इस ऊष्मा से नियंत्रित होती है पृथ्वी के किसी भी हिस्से की जलवायु, है ना पवन अंकल?
2: अंकल, आपकी बातों से तो ये अनुमान लगता है कि सूरज धरती को हर जगह एक सी ऊर्जा देता है, तब धरती के अलग अलग हिस्सों की जलवायु अलग अलग कैसे हो जाती है?
0: दरअसल बेटा, ऐसा धरती की अपनी खूबियों की वजह से होता है।
3: धरती की खूबियां, वो कौन सी?
0: अच्छा बेटा, एक बात बताओ, हमारी धरती का आकार कैसा है?
2: गोल, पर ध्रुवों पर थोड़ा चपटा।
0: अरे, इसीलिए धरती की आकृति नाशपाती जैसी हो जाती है। इस आकृति के कारण सूरज की किरणें उसके हर क्षेत्र पर एक समान तीव्रता से नहीं पड़ती।
2: वो कैसे अंकल?
0: देखो सृष्टि, पृथ्वी की आकृति के कारण भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, जिससे वहां पर पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा सबसे अधिक होती है,
1: और इससे भूमध्य रेखा पर तापमान सर्वाधिक होता है।
0: हाँ विवेक, अब हम जैसे जैसे मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उस जगह पर पड़ने वाली किरणों का कोण कम होता जाता है,
1: जिससे उस जगह पर इन किरणों की तीव्रता भी कम होती है।
0: बिल्कुल ठीक, अब ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते तो सूर्य की किरणों का कोण इतना कम हो जाता है कि वहां पर तापमान शून्य के आसपास हो जाता है।
1: वहां पर कम दबाव का क्षेत्र बनते ही ठंडे क्षेत्रों की हवाएं उस जगह को भरने के लिए चल पड़ती हैं, जिससे बीच के क्षेत्रों में भी हवाएं बहने लगती हैं।
3: इस प्रकार तो हवाएं भी किसी जगह की जलवायु को निर्धारित करती होंगी।
0: भाई वाह, बिल्कुल ठीक कहा तुमने सृष्टि, पर पृथ्वी का घूमना भी हवाओं की दिशा को बदल देता है। इसीलिए आमतौर पर ये भूमंडलीय हवाएं पूर्व पश्चिम दिशा में बहती हैं, ना कि उत्तर दक्षिण दिशा में।
3: अच्छा। पवन अंकल, एक बार हम लोग चेन्नई गए थे, भयंकर गर्मी थी वहाँ, फिर हम लोग वहाँ से ऊटी गए, वहाँ का मौसम इतना अच्छा था कि बस मजा आ गया। अब ये दोनों जगह तो भूमध्य रेखा से करीब करीब एक सी ही दूरी पर है।
4: पवन, सृष्टि शायद ये पूछना चाहती है कि एक ही जगह पर पहाड़ी भाग की जलवायु अलग हो जाती है और मैदानी भाग की अलग, वो कैसे?
0: देखो सृष्टि, सूर्य की ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह पर पड़ती है उसका काफी भाग पृथ्वी की सतह से परावर्तित होकर सतह के पास के वायुमंडल में जाकर उसे गर्म रखता है। पहाड़ों की ऊंचाई के कारण ये ऊर्जा वहां तक नहीं पहुंच पाती।
2: वो क्यों अंकल?
0: देखो मानव, बादल और धूल कण जो कि वायुमंडल में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर होते हैं, वो वायुमंडल में ऊपर की ओर जाती इस ऊर्जा को फिर धरती पर परावर्तित कर देते हैं,
1: और इससे सौर ऊर्जा की ये मात्रा पर्वतों की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती और वहां का वातावरण ठंडा रहता है।
0: भाई पहाड़ों पर जब बर्फ जम जाती है ना, तो ये भी अपने ऊपर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का 70-90% भाग वापस वायुमंडल में परावर्तित कर देती है।
1: और पहाड़ों पर वायु काफी विरल होती है, इसमें उन धूल कणों की मात्रा भी काफी कम होती है जो इस बाहर जाती सौर ऊर्जा को पुनः वापस पृथ्वी की सतह की तरफ परावर्तित करते हैं।
0: सो इन सब घटनाओं के सम्मिलित असर की वजह से पहाड़ों पर मैदानी भागों की अपेक्षा तापमान काफी कम रहता है। समझ गए ना बच्चों?
2: जी।
0: अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ।
4: अरे अरे बैठो ना पवन, जल्दी क्या है?
0: अरे नहीं नहीं सूर्य प्रकाश, दरअसल मैं तुम्हारी भाभी से कहकर आया था कि मैं बस 2 मिनट तुमसे बात करके यूं आया। वो मेरे साथ बाजार जाने के लिए तैयार होकर बैठी होगी और मैं यहाँ बातों बातों में सब भूल गया।
2: पर पवन अंकल वो...
0: ना बेटा, अब कुछ नहीं, मैं चलूं वरना तुम्हारी आंटी मेरे घर पहुँचते मुझे कच्चा चबा जाएंगी।
4: अरे क्यों भाई, क्या घर में कुकिंग गैस खत्म हो गई है?
0: गगन,
4: हाँ?
0: आज के डेटा देख लिया तुमने?
4: हाँ पवन, पर क्यों डेटा के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो?
0: वो इसलिए गगन कि आज शर्मा जी नहीं आए हैं, आज के मौसम का पूर्वानुमान हमें ही फीड करना है।
4: ओ, अच्छा।
1: नमस्ते पवन अंकल।
0: अरे विवेक, आज ऑफिस में कैसे?
2: बस अंकल। नमस्ते अंकल।
0: अरे सृष्टि, मानव तुम भी? नमस्ते नमस्ते।
4: आओ भैया आओ, कैसे हैं तुम लोग?
2: उस दिन हम लोग जलवायु की बात ही कर रहे थे कि कल मुझे स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला करने को, जानते हैं किस विषय पर?
0: क्या, जलवायु पर?
2: हाँ, मैंने भी जानबूझकर ले लिया, सोचा आप तो हैं ही, सो मदद कर देंगे, और गगन अंकल भी। इसीलिए तो मैं विवेक भैया के साथ यहाँ पर आई हूँ। और रहा मानव का सवाल, तो जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर मानव चिपक ही जाता है।
0: अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, आओ बैठो तो सही, खड़े क्यों?
4: अब बताओ तुम्हें जानना क्या है जलवायु के बारे में?
2: ये तो ठीक से नहीं पता गगन अंकल कि क्या जानना है, पर पवन अंकल ने हमें बताया था कि पृथ्वी की जलवायु के निर्धारण में सूर्य और खुद पृथ्वी का क्या योगदान है।
1: हाँ अंकल, बाकी और भी तो बहुत से कारण होंगे जो किसी जगह की जलवायु को नियंत्रित करते होंगे।
4: हाँ विवेक, है ना, सूर्य और धरती की विशेषताओं के अलावा सागर और पहाड़ भी पृथ्वी की जलवायु के निर्धारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों पवन?
0: हाँ गगन, क्योंकि पृथ्वी के लगभग 71% भाग में तो सागर ही है। धरती पर पाए जाने वाले पानी का 97% पानी तो इन्हीं सागरों में भरा है।
1: सागरों से ही तो वो जलवाष्प बनती है जो जमीन पर जाकर बारिश करती है ना।
4: क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल का 3/4 भाग तो सागरों के ऊपर ही स्थित है, अतः इसका जलवायु के निर्धारण में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है।
0: देखो बेटा, सौर ऊर्जा के प्रभाव से समुद्र के पानी को गर्म होने में भी काफी समय लगता है,
4: और इसीलिए समुद्र के तटों पर बसे क्षेत्रों में जलवायु के परिवर्तन काफी हल्के होते हैं।
2: मतलब?
0: देखो बेटा, यहाँ दिन रात और गर्मी सर्दी के तापक्रमों में काफी कम अंतर होता है।
2: हाँ, जैसे मुंबई में ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा सर्दी, बस थोड़ी बारिश ज्यादा होती है।
4: बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और वो भी इन्हीं सागरों के कारण।
0: इसके अलावा समुद्र के अंदर ठंडी और गर्म पानी की जलधाराएं बहती हैं। ध्रुवीय समुद्रों से ठंडे पानी की जलधाराएं सागर की तली के निकट बहती हुई इस ठंडे पानी को हजारों किलोमीटर दूर ले जाती हैं।
1: अंकल, अटलांटिक महासागर की तरफ से गर्म पानी की एक धारा उत्तर की ओर भी तो बहती है।
4: हाँ विवेक, इसमें मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी की धारा भी मिलती है, तब इसे खाड़ी प्रवाह कहते हैं।
1: अच्छा।
0: देखो विवेक, गर्म पानी की इस समुद्री धारा के चलते पश्चिमी यूरोप के सागर तट पर बसे इलाके जिन्हें भूमध्य रेखा की दूरी के चलते एकदम ठंडा होना चाहिए था, उनकी जलवायु थोड़ी गर्म होकर अविश्वसनीय रूप से सुहावनी हो जाती है।
2: अच्छा। मतलब ये कि समुद्र के अंदर बहने वाली ये गर्म और ठंडे पानी की धाराएं भी समुद्र तटीय इलाकों की जलवायु को बदल देती हैं।
4: और सागरों के अलावा पहाड़ भी किसी जगह की जलवायु को गंभीरता से प्रभावित करते हैं।
2: हाँ, उस दिन पवन अंकल ने बताया था कि क्यों पहाड़ों पर मौसम ठंडा रहता है।
4: हाँ मानव, इसके अलावा पर्वत जलवायु विभाजक का काम भी करते हैं।
2: जलवायु विभाजक? वो कैसे पवन अंकल?
0: देखो सृष्टि, मान लो हम किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़े हो जाएं, तो इसके दोनों तरफ ढलान होगी, है ना? एक तरफ की ढलान की तरफ से हवा आती है, इसे विंडवर्ड ढाल कहते हैं,
4: और इसके दूसरी ओर की ढलान को प्रतिपवन या लीवर ढाल कहते हैं।
0: जब समुद्री तल से ठंडी और नम हवा बहते बहते इन पर्वतों तक पहुंचती है ना, तो रास्ते में पर्वत पर जाने पर ये उससे टकराकर और ऊपर उठती है, जिससे ठंडी होकर यह पर्वत के इसी तरफ अपने जलवाष्प का खजाना खाली कर जाती है,
2: यानी कि बरस जाती है।
0: हाँ मानव, जब पर्वत की चोटी के ऊपर से होकर ये प्रतिपवन ढाल की ओर पहुंचती है, तो इसमें नमी बची ही नहीं होती, इसलिए प्रतिपवन ढाल पर बसे इलाके सूखे रह जाते हैं।
3: मतलब पर्वत के एक तरफ खूब बारिश होती है और दूसरी तरफ सूखा।
0: हाँ सृष्टि, इसीलिए तो गगन कह रहा था कि पर्वत जलवायु विभाजक का काम करते हैं।
5: अब हमारे हिमालय को ही ले लो, इसके कारण गंगा यमुना के कछार में खूब बारिश होती है, उत्तर की नदियों को पानी मिलता है, खुद हिमालय की चोटियों पर बर्फ जमने के लिए नमी मिलती है।
0: और इसकी प्रतिपवन ढाल पर है तिब्बत, जहाँ काफी कम ही बारिश हो पाती है।
5: दूसरे, ये ठंडी साइबेरियाई हवाओं को भारत में घुसने नहीं देता, जिससे हमारे यहाँ की पहाड़ी जलवायु सुखद हो जाती है और तिब्बत की इतनी कठिन।
1: अच्छा गगन अंकल, वनों की भी तो किसी जगह की जलवायु के निर्धारण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
5: हाँ विवेक, वनों की ही क्या, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सारी वनस्पतियों की पूरे विश्व की जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका है।
3: अच्छा। वो कैसे गगन अंकल?
5: देखो सृष्टि, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाते हैं। जानते हो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या असर डालती है?
3: हाँ, ये तो ग्रीन हाउस गैसों में से एक है।
5: बिल्कुल ठीक कहा तुमने सृष्टि, ये उन ग्रीन हाउस गैसों में से एक है जो सूर्य के विकिरण को पृथ्वी पर आने तो देती है, पर पृथ्वी की सतह से परावर्तित अवरक्त विकिरण को वायुमंडल से निकलने से रोक देती है।
3: और इससे वायुमंडल का तापक्रम बढ़ जाता है, इसे ही तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
0: शाबाश मानव, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब सोचो सोचो, अगर वन इस कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी खपत ना करें तो
3: वातावरण का तापक्रम बढ़ जाएगा,
5: और वो भी इतना कि रहना मुश्किल हो जाए, पहाड़ों पर की बर्फ पिघल जाए, सागरों का स्तर बढ़ जाए, तट पर बसे शहर सागर में डूब जाएं, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़े कि सांस लेना कठिन हो जाए।
0: इसके अलावा जंगल एक और परिवर्तन लाते हैं अपने आसपास की जलवायु में।
3: वो क्या पवन अंकल?
1: मैं बताऊं अंकल, पौधे और अन्य वनस्पतियां भूमि से पानी खींचकर वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में छोड़ते रहते हैं, जिससे वनों की जलवायु आर्द्र या नम होती है। दूसरे, ये उस स्थान की बारिश को भी तो प्रभावित करते हैं।
5: और जलवायु के दृष्टिकोण से ऐसे क्षेत्र को वुडलैंड एरिया कहते हैं।
3: वुडलैंड एरिया?
5: हाँ, इन क्षेत्रों की एक विशेष प्रकार की जलवायु होती है।
3: विशेष प्रकार की क्यों?
0: वो इसलिए मानव कि इस प्रकार के वनों में प्रकाश की, खासकर पराबैंगनी विकिरण की बहुत कम मात्रा जमीन तक पहुंच पाती है। बहुत घने जंगलों में तो सौर ऊर्जा का 1/10,000 हिस्सा ही वनों की भूमि तक पहुंच पाता है।
5: हवाएं भी इन घने वनों में तेजी से नहीं बहती। दूसरे, ऐसे जंगलों की वनस्पतियों से इतनी नमी पैदा होती है जिससे वहाँ स्थानीय क्षेत्र में बारिश होती है।
0: पर ये बारिश भी पूरी की पूरी वनों की जमीन तक कहाँ पहुँच पाती है?
5: हाँ, बहुत सारी बारिश की बूंदें पत्तियों से टकराती हैं और ये पानी वहाँ पत्तियों के ऊपर छितरा कर ऊपर ही रह जाता है, जहाँ से ये सूरज की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है। इस तरह बहुत सारा पानी तो सूरज की गर्मी से ऊपर ही ऊपर उड़ जाता है।
0: भाई, थोड़ा बहुत बारिश का पानी जो जमीन तक पहुंचता भी है, वो भी जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां बहाकर नहीं ले जा पाता, वो वहीं पड़ी सड़ती रहती हैं,
5: जिनसे कभी कभी मीथेन भी बन जाती है।
1: और मीथेन भी तो एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है।
5: इसीलिए वनों की जलवायु अलग तरह की होती है।
3: अलग तरह की कैसे गगन अंकल?
5: यहाँ दिन तो काफी ठंडा रहता है, पर रातें गर्म हो जाती हैं।
0: हेलो, हाँ हाँ भेज रहा हूँ। अरे अभी कुछ गेस्ट आ गए थे इसीलिए। अरे पता है शर्मा जी आज नहीं है, मौसम की सूचना हमें ही फीड करनी है। ओके ओके ठीक है।
3: तो पवन अंकल अब हम चलते हैं।
1: हाँ अंकल, काफी समय ले लिया आपने।
3: हाँ, और इस चक्कर में आप अपना काम भी नहीं कर पाए।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अरे बस अभी बनाए देते हैं वेदर रिपोर्ट। और हाँ सृष्टि बेटा, प्रोजेक्ट में अगर कोई और दिक्कत हो तो फिर आ जाना।
3: जी
1: थैंक यू अंकल।
3: अच्छा अंकल
1: बाय।
6: विवेक बेटा, देखो दरवाजे पर कौन है इस समय रात को।
1: हाँ जी बाबा, देखता हूँ। अरे ताऊ जी आप आइए। प्रणाम। पापा ताऊ जी आए।
6: अरे दादा आप पाव लागू।
7: अरे खुश रहो सूरज, खुश रहो। कैसे हो?
6: बस बिल्कुल ठीक हूँ। अब बहुत लेट पहुँचे दादा, गांव से लेट चले थे क्या?
7: क्या करें, चले तो टेम्पर ही थे और रास्ते में मोटर खराब हुई।
8: अरे दद्दा हाँ? ऐसा करो, थक गए होगे, हाथ पांव धो के खाना पीना खा लो फिर आराम करो।
7: अरे नहीं सूरज, अब खाना नहीं खाएंगे।
8: हाँ?
7: हाँ, अब तो हम आराम करेंगे। हाँ, ऐसा करो हमारी खटिया बाहर बिछवाए दो।
8: अरे बाहर दद्दा?
7: अरे गांव के आदमी हैं, अरे बाहर ही सोएंगे।
8: अच्छा, जैसी मर्जी है आपकी दद्दा, ठीक है, सुबह बात करेंगे दद्दा।
2: ताऊ जी, आप ब्रश कर रहे हैं?
7: हाँ हाँ हाँ, मालूम बिटुआ।
2: तो आपने अपने सामने नल क्यों खुला छोड़ रखा है?
7: ओ बिटुआ, ब्रश के बाद खुला भी तो करना पड़ेगा ना।
2: अरे ताऊ जी, तो तभी नल खोलिए ना, पहले से क्यों खोल रखा है?
7: हैं?
2: ताऊ जी, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इस तरह आप हर रोज करीब एक बाल्टी पानी बिना बात के नाले में बहा देते हैं। यानी कि एक महीने में 30 बाल्टी और एक साल में 365 बाल्टी, और शहर का हर आदमी यही तो कर रहा है। इस तरह लाखों बाल्टी पानी हर साल आप लोग बेकार ही नाली में बहा देते हैं।
7: ये बात तो है माना बिटुआ,
2: और वो भी तब जब दुनिया की आधी आबादी को आज तक पीने का साफ पानी नसीब नहीं है, फिर तो ये अपराध हुआ ना ताऊ जी।
7: अरे हाँ माना बिटुआ। अरे बिटुआ, तू कितना समझदार हो गया है रे। तो ले, मैं आज से प्रण करता हूँ कि पानी की इस तरह की बर्बादी कभी नहीं करूंगा।
2: ये हुई ना बात हमारे
8: ताऊ जी।
9: धरती मेरी धरती, अभिया विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 31वीं कड़ी सुन रहे थे जलवायु।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 31वीं कड़ी जलवायु। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि कृत्रिम या बनावटी बारिश कुछ रसायनों की मदद से एक निश्चित क्षेत्र में की जाती है। आज मौसम में परिवर्तन करने से ज्यादा जरूरी है महासागरों और वायुमंडल प्रणाली को दूषित होने से बचाना, क्योंकि तापमान में थोड़ी सी भी वृद्धि भयानक तबाही ला सकती है। तो लीजिए आगे सुनिए विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 31वीं कड़ी जलवायु।

0: हो, कहाँ गया होगा ये? यहाँ भी नहीं है, उधर देखती हूँ। अरे यहाँ भी नहीं है। मानव, ओ तू यहाँ बैठा है और मैं कहाँ कहाँ तुझे ढूंढाई, और तू यहाँ पिछवाड़े वाले बगीचे में अकेला बैठा है, यहाँ क्या कर रहा है? अरे बोलता क्यों नहीं, क्या कर रहा था? अरे बता ना क्या हुआ, कुछ बोलता क्यों नहीं?
1: कुछ नहीं दीदी।
0: अरे मानव क्या हुआ, तू तो बड़ा दुखी दिख रहा है। इधर आ, इधर आ, इधर आ मेरे प्यारे भाई, चल अब बता क्या हुआ।
1: दीदी वो जो दो पेड़ मैंने बगीचे में लगाए थे ना।
0: अच्छा अच्छा, वो ऑर्किड का पौधा और वो सेब का?
1: हाँ हाँ वही, वो दोनों मर गए।
0: ओहो तो ये बात है। अरे बुद्धू तुझे कितना मना किया था कि ये पौधे मत खरीद, ये अपने यहाँ नहीं चलेंगे, पर तूने तो वो रोना पीटना मचाया कि आखिर पापा को तुझे ये पौधे खरीद के देने ही पड़े।
1: लेकिन दीदी मैं कितनी मेहनत से उनको यहाँ तक लेके आया था और कितने प्यार से मैंने उन्हें लगाया था।
0: पर मानव सेब और ऑर्किड के पौधे हमारे यहाँ नहीं पनप सकते।
1: क्यों
0: नहीं पनप सकते, कह दिया ना।
1: लेकिन क्यों?
0: इसलिए कि अगर पनप सकते होते तो सेब दूसरे राज्यों से क्यों मंगाए जाते, अपने यहाँ क्यों ना पैदा होते और आलू के भाव बिकते।
1: मगर हमारे यहाँ सेब क्यों नहीं हो सकता?
2: क्या नहीं हो सकता माना?
0: अरे पापा आप, आपसे इसने जिद करके वहाँ श्रीनगर में सेब का जो पौधा खरीदवाया था ना, वो यहाँ मर गया, उसी पर मुंह बनाकर बैठा है ये मानव।
2: अरे बेटा उसे तो मरना ही था, वो यहाँ कैसे पनप सकता था?
1: वो क्यों पापा?
2: बेटा क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु वैसी नहीं है जैसी कि सेब के पेड़ या ऑर्किड के पौधे को पनपने के लिए चाहिए।
1: ये जलवायु है क्या?
0: वही मौसम, जहाँ सेब होते हैं वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, हमारे यहाँ नहीं पड़ती।
3: हाँ। नहीं नहीं नहीं सृष्टि, जलवायु और मौसम दोनों एक नहीं है।
0: वो क्यों विवेक भैया?
3: अरे सृष्टि देखो, आज जैसे सर्दी है, कोहरा छाया हुआ है, कल धूप निकल आए तो मौसम बदल जाएगा, इस तरह मौसम बदलता रहता है।
0: अच्छा, हमारे देश का मौसम कुछ महीनों बाद बदल जाता है, सर्दी के बाद गर्मी फिर बरसात।
3: हाँ बिल्कुल, मौसम महीनों में क्या, एक दिन में ही कई बार बदल सकता है, जबकि कहीं कहीं की जलवायु को बदलने में हजारों लाखों साल लग सकते हैं।
1: लाखों साल?
0: इसका मतलब हम जो टीवी रेडियो या समाचार पत्रों में पढ़ते सुनते हैं वो मौसम के बारे में होता है, जलवायु के बारे में नहीं।
3: हाँ क्योंकि जलवायु इतनी आसानी से परिवर्तित होती ही नहीं।
0: पर जलवायु से जीवों में तो परिवर्तन आ सकते हैं, है ना विवेक भैया?
3: हाँ यही तो बात है, मौसम से हम निपट सकते हैं।
1: मतलब?
3: मतलब मौसम वहाँ के जीवधारियों के रहन सहन, खान पान, प्रजनन आदि को भी प्रभावित कर सकता है।
2: और जलवायु के बारे में भी तो बताओ।
3: आप तो जानते ही हैं, जलवायु तो जीवधारियों के पूरे वंश को प्रभावित कर सकती है।
2: कौन जीवधारी कहाँ पनपेगा ये किसी जगह की जलवायु ही निर्धारित करती है।
3: अब मानव तुम डायनासोरों को तो जानते ही हो,
1: वही भारी भरकम शरीरों वाले दानव जैसे जी।
3: हाँ, वो एक समय धरती पर राज किया करते थे और आज उनका नामो निशान तक नहीं बचा है। जानते हो क्यों?
1: क्यों?
3: किसी बड़ी घटना से पृथ्वी की जलवायु में अचानक परिवर्तन आया, डायनासोर जलवायु के इस परिवर्तन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और मिट गए।
0: तब फिर ये जलवायु है क्या?
4: ये तो सबसे अच्छी तरह तुम्हें बेमौसम आया ये मौसमी व्यक्ति ही बता सकता है। हाँ भाई मैं, देखो सूर्य प्रकाश आज तो मेरा दूध वाला भी आया है और मेरा मेरी पत्नी से झगड़ा भी नहीं हुआ। मैं तो बस
2: देख देख देख देख पवन, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, फिर तो सफाई का है कि दे रहा है। और अब आया है तो चाय पीकर तो तू जाएगा ही है।
4: अरे भाई अब तुम इतना कह रहे हो तो फिर अब पीनी ही पड़ेगी।
2: हाँ हाँ ये एहसान भी मुझ पर ही सही है। अरे वसुधा सुनती हो?
5: क्या है?
2: अरे पवन आया है, मौसम विभाग वाला अपना पड़ोसी।
5: चाय तो ये पीकर ही जाएगा है ना। इस उम्र में भी आप लोगों को एक दूसरे की टांग खींचने में बहुत मजा आता है।
4: इस उम्र में क्या कह दिया, ये तो आपने सारा कबाड़ा ही कर दिया। अरे भाई मैं और सूर्य प्रकाश तो अभी जवान है।
2: क्या बात कही तूने तो भाई, फिर तो पकौड़े भी खिलाएंगे।
4: क्या बात है, तो भाभी
5: अच्छे अच्छे चलिए जवान लोग अंदर चलिए।

0: हाँ तो सूर्य प्रकाश।
1: भवन अंकल आप भूल बहुत जल्दी जाते हैं।
0: अरे तो भाई अभी सब लोगों को बैठ तो जाने दो। मानव बेटा तू इधर आ मेरे पास, और विवेक तू उस मानव वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जा। हाँ तो सृष्टि,
1: जलवायु।
0: हाँ जलवायु, इस क्षेत्र में आम तौर पर वातावरण की क्या स्थिति रहती है, तापक्रम कैसा रहता है, पानी कितना और कब बरसता है, हवाएं कैसी और किस दिशा में चलती हैं, धूप वहाँ कितनी तेज होती है और दिन में कितने घंटे तक रहती है, बर्फ पड़ती है कि नहीं, और अगर पड़ती है तो कितने दिन तक उस क्षेत्र को ढके रहती है, इस सब को काफी लंबे समय तक देखकर उसका जो निष्कर्ष निकलता है उसे कहते हैं जलवायु।
2: पर अंकल लंबे समय तक।
0: हाँ विवेक, मानकों के आधार पर 35 वर्ष के मौसम संबंधी इन आंकड़ों का अध्ययन करके उनसे जो निष्कर्ष निकलता है उसे मानते हैं वहाँ की जलवायु।
1: 35 साल।
0: हाँ मानव, काफी लंबा समय है ये, है ना। अच्छा अब कुछ लोग ये भी मानने लगे हैं कि 10 साल तक के मौसम संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करके भी किसी जगह की जलवायु का निर्धारण किया जा सकता है।
1: अच्छा। मतलब ये कि किसी जगह के लंबे समय का औसत मौसम ही उस जगह की जलवायु कहलाता है।
0: अब तुम ठीक समझे सृष्टि।
3: और इसका मतलब ये कि किसी जगह की जलवायु बहुत सारे परिवर्तनों से मिलकर बनती है।
0: बिल्कुल सूर्य प्रकाश, ये बात तो है भाई, बहुत सारे कारक मिलकर किसी जगह की जलवायु का निर्धारण करते हैं।
2: अंकल बहुत सारे कारक, जैसे
0: जैसे तुम्हारे पापा, मतलब कि सूर्य को ही ले लो।
4: नहीं पवन जी, सूर्य को नहीं, अभी तो इस चाय को ही ले लीजिए।
0: अरे वाह वसुधा भाभी, वाह यू आर ग्रेट भाभी।
3: देखा देखा देखा बच्चों, वसुधा की चाय ने कैसे बदल दिया पवन की बातों का मौसम।
0: अरे भाई मौसम ही तो बदला है ना सूर्य प्रकाश, जलवायु नहीं।
3: अरे जलवायु भी बदल जाएगी जब वसुधा पकौड़ियाँ खिलाएगी।
0: नहीं, नहीं नहीं नहीं, तब भी नहीं, क्योंकि मौसम में जल्दी जल्दी होने वाले इन परिवर्तनों का जलवायु पर कोई असर नहीं पड़ता भाई, रोजमर्रा की घटनाओं से मौसम बदलते हैं जलवायु नहीं। अभी चाय पी जाए।
3: तुम भी लो, लो, लो, लो, लो, लो।
0: हाँ तो भाई क्या कह रहा था मैं,
1: सूर्य।
0: सूर्य सूर्य ही सारी पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।
3: हाँ इसीलिए किसी जगह की जलवायु के निर्माण में सूर्य प्रकाश, नहीं क्या, सूर्य सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है।
0: सूर्य प्रकाश, सूर्य अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है भाई, हमें तो उसका 1/2 अरबवां भाग ही मिल पाता है, फिर भी बच्चों जानते हो ये कितनी होती है?
1: कितनी?
0: 230 खरब अश्व शक्ति प्रति मिनट।
1: 230 खरब अश्व शक्ति।
0: हाँ अगर हम इस सारी ऊर्जा को प्रयोग कर सकें तो 1 मिनट में सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा से पृथ्वी वासियों का 2 बरस तक का काम चल सकता है।
2: अंकल मैंने भी कहीं पढ़ा है कि सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली इस ऊर्जा में अगर 13% की भी कमी हो जाए तो सारी पृथ्वी करीब 1 मील मोटी बर्फ की तह के नीचे दब सकती है।
1: और अगर इस ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाए तो
2: सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा में 30% की बढ़त से ही पृथ्वी पर हर जीवित वस्तु जलकर राख बन सकती है।
0: करीब करीब ठीक ही कह रहे हो तुम विवेक, ये सूर्य पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में और इसे हमारे रहने लायक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
3: भाई, तभी तो लोग हमें देवता, मतलब सूर्य को देवता मानते हैं।
1: पर अंकल सूर्य से तो ये गर्मी, मेरा मतलब ऊर्जा, हमें धूप के रूप में मिलती है ना।
0: हाँ मानव बेटा, अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो सूर्य से ये ऊर्जा हमें 3 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मिलती है। विवेक तुम जानते हो कि कौन सी?
2: हाँ हाँ अंकल जानता हूँ, एक तो पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट तरंगे, दूसरे दिखाई देने वाले प्रकाश की तरंगों के रूप में, और तीसरे अवरक्त या इंफ्रारेड तरंगों के रूप में।
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने विवेक, पर जैसे ही ये तरंगे वायुमंडल की ऊपरी सतह तक पहुंचती हैं तो इनका लगभग 1/3 हिस्सा बादलों, सूक्ष्म धूल कणों और गैसों के अणुओं द्वारा वापस परावर्तित कर दिया जाता है।
1: सत्यानाश, कितनी सारी ऊर्जा बेकार में गई। नहीं तो
5: नहीं मानव, अगर ये ऊर्जा वापस परावर्तित ना होती तो पृथ्वी पर जीवन का हर रूप जलकर राख हो गया होता।
1: तुम्हें कैसे मालूम दीदी?
5: अरे बुद्धू, अभी विवेक भैया ने नहीं बताया था कि पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली ऊर्जा में अगर 30% की भी बढ़ोतरी हो जाए तो पृथ्वी का हर जीवित प्राणी जलकर राख हो जाएगा।
3: देखा पवन, सृष्टि बेटी की याददाश्त।
0: सृष्टि बेटा, जितनी भी ऊर्जा अब वायुमंडल से गुजरती है उसका करीब 15% हिस्सा वायुमंडल की ओजोन, धूल कणों, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों द्वारा सोख लिया जाता है।
3: हाँ, और इसका मतलब है कि सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच पाने वाली ऊर्जा का आधा हिस्सा ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है।
0: क्या खूब कही भाई, हिसाब ही तो तुम पक्के।
3: वो तो
0: करीब 51% ऊर्जा ही इस तरह धरती की सतह तक पहुंच पाती है।
2: और यही ऊर्जा प्रभावित करती है जलवायु को, है ना?
0: हाँ विवेक, जब सौर ऊर्जा की ये किरणें पृथ्वी की सतह पर चट्टान, रेत, मिट्टी और पानी आदि से टकराती है ना, तो ये उस पदार्थ के अणुओं को गतिशील कर देती है जिससे हमें मिलती है गर्मी या ऊष्मा।
5: और इस ऊष्मा से नियंत्रित होती है पृथ्वी के किसी भी हिस्से की जलवायु, है ना पवन अंकल?
6: अंकल, आपकी बातों से तो ये अनुमान लगता है कि सूरज धरती को हर जगह एक सी ऊर्जा देता है, तब धरती के अलग अलग हिस्सों की जलवायु अलग अलग कैसे हो जाती है?
0: दरअसल बेटा, ऐसा धरती की अपनी खूबियों की वजह से होता है।
5: धरती की खूबियां, वो कौन सी?
0: अच्छा बेटा, एक बात बताओ, हमारी धरती का आकार कैसा है?
5: गोल, पर ध्रुवों पर थोड़ा चपटा।
0: अरे, इसीलिए धरती की आकृति नाशपाती जैसी हो जाती है। इस आकृति के कारण सूरज की किरणें उसके हर क्षेत्र पर एक समान तीव्रता से नहीं पड़ती।
5: वो कैसे अंकल?
0: देखो सृष्टि, पृथ्वी की आकृति के कारण भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, जिससे वहां पर पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा सबसे अधिक होती है
2: और इससे भूमध्य रेखा पर तापमान सर्वाधिक होता है।
0: हाँ विवेक, अब हम जैसे जैसे मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उस जगह पर पड़ने वाली किरणों का कोण कम होता जाता है,
2: जिससे उस जगह पर इन किरणों की तीव्रता भी कम होती है।
0: बिल्कुल ठीक, अब ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते तो सूर्य की किरणों का कोण इतना कम हो जाता है कि वहां पर तापमान शून्य के आसपास हो जाता है।
2: वहां पर कम दबाव का क्षेत्र बनते ही ठंडे क्षेत्रों की हवाएं उस जगह को भरने के लिए चल पड़ती हैं, जिससे बीच के क्षेत्रों में भी हवाएं बहने लगती हैं।
5: इस प्रकार तो हवाएं भी किसी जगह की जलवायु को निर्धारित करती होंगी।
0: भाई वाह, बिल्कुल ठीक कहा तुमने सृष्टि, पर पृथ्वी का घूमना भी हवाओं की दिशा को बदल देता है। इसीलिए आमतौर पर ये भूमंडलीय हवाएं पूरब पश्चिम दिशा में बहती हैं, ना कि उत्तर दक्षिण दिशा में।
5: अच्छा पवन अंकल, एक बार हम लोग चेन्नई गए थे, भयंकर गर्मी थी वहाँ, फिर हम लोग वहाँ से ऊटी गए, वहाँ का मौसम इतना अच्छा था कि बस मजा आ गया। अब ये दोनों जगह तो भूमध्य रेखा से करीब करीब एक सी ही दूरी पर है।
3: पवन, सृष्टि शायद ये पूछना चाहती है कि एक ही जगह पर पहाड़ी भाग की जलवायु अलग हो जाती है और मैदानी भाग की अलग, वो कैसे?
0: देखो सृष्टि, सूर्य की ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह पर पड़ती है उसका काफी भाग पृथ्वी की सतह से परावर्तित होकर सतह के पास के वायुमंडल में जाकर उसे गर्म रखता है। पहाड़ों की ऊंचाई के कारण ये ऊर्जा वहां तक नहीं पहुंच पाती।
5: वो क्यों अंकल?
0: देखो मानव, बादल और धूल कण जो कि वायुमंडल में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर होते हैं, वो वायुमंडल में ऊपर की ओर जाती इस ऊर्जा को फिर धरती पर परावर्तित कर देते हैं
2: और इससे सौर ऊर्जा की ये मात्रा पर्वतों की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती और वहां का वातावरण ठंडा रहता है।
0: भाई पहाड़ों पर जब बर्फ जम जाती है ना, तो ये भी अपने ऊपर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का 70-90% भाग वापस वायुमंडल में परावर्तित कर देती है।
2: और पहाड़ों पर वायु काफी विरल होती है, इसमें उन धूल कणों की मात्रा भी काफी कम होती है जो इस बाहर जाती सौर ऊर्जा को पुनः वापस पृथ्वी की सतह की तरफ परावर्तित करते हैं।
0: सो इन सब घटनाओं के सम्मिलित असर की वजह से पहाड़ों पर मैदानी भागों की अपेक्षा तापमान काफी कम रहता है। समझ गए ना बच्चों?
5: जी।
0: अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ।
3: अरे अरे बैठो ना पवन, जल्दी क्या है?
0: अरे नहीं, सूर्यप्रकाश, दरअसल मैं तुम्हारी भाभी से कहकर आया था कि मैं बस 2 मिनट तुमसे बात करके यूं आया। वो मेरे साथ बाजार जाने के लिए तैयार होकर बैठी होगी और मैं यहाँ बातों में सब भूल गया।
5: पर पवन अंकल, वो
0: ना बेटा, अब कुछ नहीं, मैं चलूं वरना तुम्हारी आंटी मेरे घर पहुँचते ही मुझे कच्चा चबा जाएंगी।
3: अरे क्यों भाई, क्या घर में कुकिंग गैस खत्म हो गई है?
0: गगन,
7: हाँ?
0: आज के डेटा देख लिया तुमने?
7: हाँ पवन, पर क्यों, डेटा के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो?
0: वो इसलिए गगन कि आज शर्मा जी नहीं आए हैं, आज के मौसम का पूर्वानुमान हमें ही फीड करना है।
7: ओ, अच्छा।
2: नमस्ते पवन अंकल।
0: अरे विवेक, आज ऑफिस में कैसे?
8: बस अंकल। नमस्ते, नमस्ते अंकल।
0: अरे सृष्टि, मानव, तुम भी? नमस्ते नमस्ते।
7: आओ भैया, कैसे हैं तुम लोग?
1: उस दिन हम लोग जलवायु की बात ही कर रहे थे कि कल मुझे स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला करने को। जानते हैं किस विषय पर?
0: क्या, जलवायु पर?
1: हाँ, मैंने भी जानबूझकर ले लिया, सोचा आप तो हैं ही, सो मदद कर देंगे, और गगन अंकल भी।
7: क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई।
1: इसीलिए तो मैं विवेक भैया के साथ यहाँ पर आई हूँ। और रहा मानव का सवाल, तो जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर मानव चिपक ही जाता है।
0: अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, आओ बैठो तो सही, खड़े क्यों?
7: अब बताओ, तुम्हें जानना क्या है जलवायु के बारे में?
1: ये तो ठीक से नहीं पता गगन अंकल कि क्या जानना है, पर पवन अंकल ने हमें बताया था कि पृथ्वी की जलवायु के निर्धारण में सूर्य और खुद पृथ्वी का क्या योगदान है।
2: हाँ अंकल, बाकी और भी तो बहुत से कारण होंगे जो किसी जगह की जलवायु को नियंत्रित करते होंगे।
7: हाँ विवेक, है ना, सूर्य और धरती की विशेषताओं के अलावा सागर और पहाड़ भी पृथ्वी की जलवायु के निर्धारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों पवन?
0: हाँ गगन, क्योंकि पृथ्वी के लगभग 71% भाग में तो सागर ही है। धरती पर पाए जाने वाले पानी का 97% पानी तो इन्हीं सागरों में भरा है।
2: सागरों से ही तो वो जलवाष्प बनती है जो जमीन पर जाकर बारिश करती है ना।
7: क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल का 3/4 भाग तो सागरों के ऊपर ही स्थित है, अतः इसका जलवायु के निर्धारण में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है।
0: देखो बेटा, सौर ऊर्जा के प्रभाव से समुद्र के पानी को गर्म होने में भी काफी समय लगता है,
7: और इसीलिए समुद्र के तटों पर बसे क्षेत्रों में जलवायु के परिवर्तन काफी हल्के होते हैं।
1: मतलब?
0: देखो बेटा, यहाँ दिन रात और गर्मी सर्दी के तापक्रमों में काफी कम अंतर होता है।
6: हाँ, जैसे मुंबई में ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा सर्दी, बस थोड़ी बारिश ज्यादा होती है।
7: बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और वो भी इन्हीं सागरों के कारण।
0: इसके अलावा समुद्र के अंदर ठंडी और गर्म पानी की जलधाराएं बहती हैं। ध्रुवीय समुद्रों से ठंडे पानी की जलधाराएं सागर की तली के निकट बहती हुई इस ठंडे पानी को हजारों किलोमीटर दूर ले जाती हैं।
2: अंकल, अटलांटिक महासागर की तरफ से गर्म पानी की एक धारा उत्तर की ओर भी तो बहती है।
7: हाँ विवेक, इसमें मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी की धारा भी मिलती है, तब इसे खाड़ी प्रवाह कहते हैं।
2: अच्छा।
0: देखो विवेक, गर्म पानी की इस समुद्री धारा के चलते पश्चिमी यूरोप के सागर तट पर बसे इलाके जिन्हें भूमध्य रेखा की दूरी के चलते एकदम ठंडा होना चाहिए था, उनकी जलवायु थोड़ी गर्म होकर अविश्वसनीय रूप से सुहावनी हो जाती है।
6: अच्छा। मतलब ये कि समुद्र के अंदर बहने वाली ये गर्म और ठंडे पानी की धाराएं भी समुद्र तटीय इलाकों की जलवायु को बदल देती हैं।
7: और सागरों के अलावा पहाड़ भी किसी जगह की जलवायु को गंभीरता से प्रभावित करते हैं।
6: हाँ, उस दिन पवन अंकल ने बताया था कि क्यों पहाड़ों पर मौसम ठंडा रहता है।
7: हाँ मानव, इसके अलावा पर्वत जलवायु विभाजक का काम भी करते हैं।
1: जलवायु विभाजक, वो कैसे पवन अंकल?
0: देखो सृष्टि, मान लो हम किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़े हो जाएं, तो इसके दोनों तरफ ढलान होगी, है ना? एक तरफ की ढलान की तरफ से हवा आती है, इसे विंडवर्ड ढाल कहते हैं,
7: और इसके दूसरी ओर की ढलान को प्रतिपवन या लीवर ढाल कहते हैं।
0: जब समुद्री तल से ठंडी और नम हवा बहते बहते इन पर्वतों तक पहुंचती है ना, तो रास्ते में पर्वत पर जाने पर ये उससे टकराकर और ऊपर उठती है, जिससे ठंडी होकर यह पर्वत के इसी तरफ अपने जलवाष्प का खजाना खाली कर जाती है,
6: यानी कि बरस जाती है।
0: हाँ मानव, जब पर्वत की चोटी के ऊपर से होकर ये प्रतिपवन ढाल की ओर पहुंचती है, तो इसमें नमी बची ही नहीं होती, इसलिए प्रतिपवन ढाल पर बसे इलाके सूखे रह जाते हैं।
1: मतलब पर्वत के एक तरफ खूब बारिश होती है और दूसरी तरफ सूखा।
0: हाँ सृष्टि, इसीलिए तो गगन कह रहा था कि पर्वत जलवायु विभाजक का काम करते हैं।
7: अब हमारे हिमालय को ही ले लो, इसके कारण गंगा यमुना के कछार में खूब बारिश होती है, उत्तर की नदियों को पानी मिलता है, खुद हिमालय की चोटियों पर बर्फ जमने के लिए नमी मिलती है,
0: और इसकी प्रतिपवन ढाल पर है तिब्बत, जहाँ काफी कम ही बारिश हो पाती है।
7: दूसरे, ये ठंडी साइबेरियाई हवाओं को भारत में घुसने नहीं देता, जिससे हमारे यहाँ की पहाड़ी जलवायु सुखद हो जाती है और तिब्बत की इतनी कठिन।
2: अच्छा गगन अंकल, वनों की भी तो किसी जगह की जलवायु के निर्धारण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
7: हाँ विवेक, वनों की ही क्या, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सारी वनस्पतियों की पूरे विश्व की जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका है।
6: अच्छा। वो कैसे गगन अंकल?
7: देखो सृष्टि, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाते हैं। जानते हो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या असर डालती है?
6: हाँ, ये तो ग्रीन हाउस गैसों में से एक है।
7: बिल्कुल ठीक कहा तुमने सृष्टि, ये उन ग्रीन हाउस गैसों में से एक है जो सूर्य के विकिरण को पृथ्वी पर आने तो देती है पर पृथ्वी की सतह से परावर्तित अवरक्त विकिरण को वायुमंडल से निकलने से रोक देती है
6: और इससे वायुमंडल का तापक्रम बढ़ जाता है। इसे ही तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
0: शाबाश मानव, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब सोचो सोचो, अगर वन इस कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी खपत ना करें तो
6: वातावरण का तापक्रम बढ़ जाएगा
7: और वो भी इतना कि रहना मुश्किल हो जाए, पहाड़ों पर की बर्फ पिघल जाए, सागरों का स्तर बढ़ जाए, तट पर बसे शहर सागर में डूब जाएं, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़े कि सांस लेना कठिन हो जाए।
0: इसके अलावा जंगल एक और परिवर्तन लाते हैं अपने आसपास की जलवायु में।
6: वो क्या पवन अंकल?
2: मैं बताऊं अंकल, पौधे और अन्य वनस्पतियां भूमि से पानी खींचकर वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में छोड़ते रहते हैं जिससे वनों की जलवायु आर्द्र या नम होती है। दूसरे ये उस स्थान की बारिश को भी तो प्रभावित करते हैं।
7: और जलवायु के दृष्टिकोण से ऐसे क्षेत्र को वुडलैंड एरिया कहते हैं।
6: वुडलैंड एरिया?
7: हाँ, इन क्षेत्रों की एक विशेष प्रकार की जलवायु होती है।
6: विशेष प्रकार की क्यों?
0: वो इसलिए मानव कि इस प्रकार के वनों में प्रकाश की, खासकर पराबैंगनी विकिरण की बहुत कम मात्रा जमीन तक पहुंच पाती है। बहुत घने जंगलों में तो सौर ऊर्जा का 1/10,000वां हिस्सा ही वनों की भूमि तक पहुँच पाता है।
7: हवाएं भी इन घने वनों में तेजी से नहीं बहती। दूसरे ऐसे जंगलों की

0: वनस्पतियों से इतनी नमी पैदा होती है जिससे वहाँ स्थानीय क्षेत्र में बारिश होती है।
1: पर ये बारिश भी पूरी की पूरी वनों की जमीन तक कहाँ पहुँच पाती है?
0: हाँ, बहुत सारी बारिश की बूंदें पत्तियों से टकराती हैं और ये पानी वहाँ पत्तियों के ऊपर छितरा कर ऊपर ही रह जाता है, जहाँ से ये सूरज की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है। इस तरह बहुत सारा पानी तो सूरज की गर्मी से ऊपर ही ऊपर उड़ जाता है।
1: भाई, थोड़ा बहुत बारिश का पानी जो जमीन तक पहुंचता भी है, वो भी जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां बहाकर नहीं ले जा पाता, वो वहीं पड़ी सड़ती रहती हैं,
0: जिनसे कभी कभी मीथेन भी बन जाती है।
2: और मीथेन भी तो एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है।
0: इसीलिए वनों की जलवायु अलग तरह की होती है।
3: अलग तरह की कैसे गगन अंकल?
0: यहाँ दिन तो काफी ठंडा रहता है पर रातें गर्म हो जाती है।
1: हेलो, हाँ हाँ भेज रहा हूँ। अरे अभी कुछ गेस्ट आ गए थे इसीलिए। अरे पता है शर्मा जी आज नहीं है, मौसम की सूचना हमें ही फीड करनी है। ओके ओके ठीक है।
3: तो पवन अंकल अब हम चलते हैं।
2: हाँ अंकल, काफी समय ले लिया आपने।
3: हाँ, और इस चक्कर में आप अपना काम भी नहीं कर पाए।
1: अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे बस अभी बनाए देते हैं वेदर रिपोर्ट। और हाँ सृष्टि बेटा, प्रोजेक्ट में अगर कोई और दिक्कत हो तो फिर आ जाना।
3: ठीक है,
2: थैंक यू अंकल।
3: अच्छा अंकल,
2: बाय।
4: विवेक बेटा, देखो दरवाजे पर कौन है इस समय रात को।
2: हाँ जी बाबा, देखता हूँ। अरे ताऊ जी आप आइए।
5: प्रणाम।
2: पापा ताऊ जी आए।
5: अरे
4: दादा आप पाव लागू।
5: अरे खुश रहो सूरज, खुश रहो। कैसे हो?
4: बस बिल्कुल ठीक हूँ। अब बहुत लेट पहुंचे दादा, गांव से लेट चले थे क्या?
5: क्या करें, चले तो टाइम पर ही थे और रास्ते में मोटर खराब हुई।
4: अरे दादा अब ऐसा करो, थक गए होगे, हाथ पांव धो के खाना पीना खा लो फिर आराम करो।
5: अरे नहीं सूरज, अब खाना नहीं खाएंगे।
4: हाँ
5: अब तो हम आराम करेंगे। हाँ ऐसा करो, हमारी खटिया बाहर बिछवाए दो।
4: अरे बाहर दादा?
5: अरे गांव के आदमी हैं, अरे बाहर ही सोएंगे।
4: अच्छा जैसी मर्जी है आपकी दादा, ठीक है सुबह बात करेंगे दादा।
3: ताऊ जी आप ब्रश कर रहे हैं?
5: हाँ, मालूम बिटुआ।
3: तो आपने अपने सामने नल क्यों खुला छोड़ रखा है?
5: ओ बिटुआ, ब्रश के बाद खुला भी तो करना पड़ेगा ना।
3: अरे ताऊ जी, तो तभी नल खोलिए ना, पहले से क्यों खोल रखा है?
5: हैं?
3: ताऊ जी आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इस तरह आप हर रोज करीब एक बाल्टी पानी बिना बात के नाले में बहा देते हैं। यानी कि एक महीने में 30 बाल्टी और एक साल में 365 बाल्टी, और शहर का हर आदमी यही तो कर रहा है। इस तरह लाखों बाल्टी पानी हर साल आप लोग बेकार ही नाली में बहा देते हैं।
5: ये बात तो है माना बिटुआ,
3: और वो भी तब जब दुनिया की आधी आबादी को आज तक पीने का साफ पानी नसीब नहीं है, फिर तो ये अपराध हुआ ना ताऊ जी।
5: अरे हाँ माना बिटुआ। अरे बिटुआ तू कितना समझदार हो गया है रे। तो ले, मैं आज से प्रण करता हूँ कि पानी की इस तरह की बर्बादी कभी नहीं करूंगा।
3: ये हुई ना बात हमारे
4: ताऊ जैसी। अरे तैपा।
6: धरती मेरी धरती, अभिया विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 31वीं कड़ी सुन रहे थे जलवायु।
7: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
8: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की।

0: बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले एक से दो उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @ 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: Chill, I should drop it low, man.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: यू गॉट अ।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: एक तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सरपट भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हर दम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
3: थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
2: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
4: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूँ कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जाँच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जाँच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रैनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रियान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाए और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
1: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं, तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: ओले ओले ओले, सोनत। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है,
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या आपको बुखार आ रहा है?
0: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
1: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
0: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
1: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
0: हल्के सूती कपड़े पहने और कमरे को ठंडा रखें।
1: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
0: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
0: याद रखना, बुखार में देरी पड़ेगी भारी। यूनिसेफ के सहयोग से सुरू शारदा 90.8 FM द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।